एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल

0: प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, जब तक जीवन है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

0: इस समूह गान के साथ ही आज का वंदनवार यहीं संपन्न होता है।
1: अब आज का वंदनवार कार्यक्रम संपन्न होता है।

यह है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। झरोखा मिली जी सुनिए आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:35 से आप सुनेंगे रामचरितमानस का भाग 214। 6:45 से संगीत सरिता में आप सुनेंगे श्रृंखला सीने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला का 9वां भाग आज आप सुनेंगे। कलाकार तबला वादक रविंद्र खासनीस, प्रस्तुति मनीषा जैन। सात बजे से भूले बिसरे गीत और 7:30 से हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 और दोपहर 2 से त्रिवेणी लेकर आएंगे। सुबह व रात्रि 8:30 से, माफ कीजिए, सुबह 8:30 से और रात्रि 8:15 से चित्रलोक। सुबह 9:30 से लेकर आएंगे आज के फनकार। आज ये प्रोग्राम केंद्रित होगा फिल्मकार राज खोसला पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। दस बजे से पिटारा में सुनिए मधुमेह कारण और बचाव, डॉक्टर कुणाल मेहता से बातचीत आप सुनेंगे। 11 से रंग तरंग और 12:05 से यादों की महफिल। दिन में 1 से कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। 2:30 से सदाबहार नगमे और 3 लेकर आएंगे प्रोग्राम सखी सहेली।

सात बजे से लेकर आएंगे फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला। सात बजकर 45 मिनट से इंद्रधनुष में पॉप एक्सप्रेस।

रात 8 बजे हवा महल में सुनिएगा झलकी, मैं मछली तो नहीं। लेखक केपी सक्सेना, निर्देशक पुरुषोत्तम द्वारवेकर। रात 9 बजे से आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 से आज के फनकार केंद्रित होगा गीतकार असद भोपाली पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात 10 बजे समय होगा छायागीत का, ढलती जाए रात 10:30 से, और रंग तरंग का वक्त होगा रात 11 बजे से। झरोका में अभी आप सुन रहे थे आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का भाग 214।

चित्रकूट में माताओं से श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के साक्षात्कार और चारों भाइयों के परस्पर मिलन का दृश्य जहां एक ओर स्नेह सिंचित था, वहां दूसरी ओर अयोध्या पति के निधन के समाचार ने एक बार फिर सभी को शोक के सागर में डुबो दिया। दूसरे दिन कुलगुरु के आदेशानुसार वैदिक रीति से श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्राद्ध संपन्न करके वैसे ही शुद्ध हुए जिस प्रकार तीर्थों के आवाहन से पतित पावनी गंगा शुद्ध होती हैं। अद्भुत दृश्य उपस्थित है चित्रकूट में, जहां दुखी अयोध्यावासी कंदमूल और फल का आहार करते हैं। भरत, शत्रुघ्न, मंत्रियों तथा माताओं को व्याकुल देख श्री राम को एक एक पल भारी हो रहा है। अतः उन्होंने वशिष्ठ जी से सबको लेकर अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: नमस्कार रविंद्र जी, ताल वाद्यों की फिल्म संगीत में जो उपयोगिता है और जिस तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग तालों की चर्चा भी हम कर रहे हैं।
2: हाँ।
1: ताल कहरवा जितना एक और ताल है दादरा।
2: हाँ।
1: वो भी बहुत प्रचलित है।
2: बिल्कुल है।
1: और बहुत से ऐसे गाने हैं जिनमें ताल दादरा का उपयोग हुआ है। तो मूल रूप से ये दादरा ताल कैसे बजाया जाता है?
2: जैसे केरवा हमें कई सारे गीतों में सुनने को मिलता है
1: जी,
2: वैसे दादरा है, दादरा भी हमें कई सारे गीतों में सुनने को मिलता है
1: जी।
2: तो दादरा जो है वो तो मूलतः दादरा तो केवल धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना, ये तो दादरा ताल है
1: जी।
2: लेकिन ये जो ताल है ये ताल कई सारे गीतों में आया है। तो इसको जब गीतों में ढाला जाता है इस ताल को, तो उसमें जो है वो एक नजारा

0: धा धीना धा तीना जो है उसका ये परिवर्तित रूप है
1: जी।
0: लेकिन परिवर्तित रूप जो गीतों में बहुत सटीक होता है, सटीक बैठता है, और वहां से फिर गीत का जो प्रभाव है वो भी बढ़ता है
1: जी।
0: तो दादरे में तो वैसे कई सारे गीत बने हुए हैं
1: जी।
0: तो दादरा जैसे हमने कहा था कि अलग अलग पैटर्न होते हैं, तो वैसे दादरा के भी कई सारे पैटर्न इस्तेमाल किए गए हैं, और वो पैटर्न ही एक वजह है कि जिसकी वजह से हर गाना हमको सुनने में अलग लगता है। एक गाने की दूसरे गाने में समानता नहीं लगती, हर गाना अपना अपना एक खुद का अस्तित्व लेके आता है।
1: जी जी जी।
0: तो ये जो है ये चमत्कार उस पैटर्न का है, जो पैटर्न वो गीत को सजाता है।
1: और हर संगीतकार अपने ढंग से अपनी संगीत रचना में इस ताल का उपयोग करते हैं।
0: बिल्कुल करते हैं।
1: तो अब बात वही है कि फिर हमें किसी फिल्मी गीत का उदाहरण लेना होगा।
0: हाँ, मेरा बहुत पसंदीदा गीत है
1: जी,
0: जिसमें दादरा का बहुत प्रभावी उपयोग किया गया है।
1: हाँ।
0: वो है वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते।
1: बड़ा सुंदर गाना है, जहां आरा फिल्म का ये गीत है।
0: हाँ।
1: और संगीतकार हैं मदन मोहन साहब, आवाज लता मंगेशकर की।

0: रविंद्र जी, जिस प्रकार कहरवा ताल के प्रकार आपने बताए,
1: हाँ,
0: वैसे ही दादरा ताल के भी कुछ प्रकार हैं, वो कौन से हैं?
1: दादरा ताल के भी प्रकार हैं। अभी मैंने बताया

0: अभी ये इसी रूप को और थोड़ा सा बदला है, उसको कहते हैं खेमटा।
1: अच्छा,
0: ये खेमटा जो है गरबा नृत्य के लिए, मतलब गरबा नृत्य के जो असंख्य गीत है
1: जी जी,
0: तो उसमें हम लोग हमेशा सुनते हैं और उस पे गरबा नृत्य गुजरात में होता है।
1: नवरात्रि के दौरान लगभग सभी भारतीय जानते हैं कि डांडिया खेला जाता है, रास गरबा होता है, तो गरबा में जो गीत बजते हैं वो इस खेमटा ताल
0: में है। तो वो खेमटा कैसे है,

0: वाह क्या बात है।
1: इसमें मैंने दो प्रकार भी किए हैं
0: जी।
1: अभी खेमटा जो है वो खेमटा का आगे थोड़ा सा रूप बदला है, मतलब लय बढ़ती है या उसके बाद में जो उसका जिस तरह से उसको बजाया जाता है उसको कई जगह पर हिंच भी कहते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, तो वो जो हिंच है वो इसी मतलब खेमटा के साथ में ही वो जुड़ी हुई है। अक्सर ढोलक के साथ में जब तबला ये दादरा का ये प्रकार बजाया जाता है तो ढोलक के साथ में फिर वो उसकी नज़ाकत और भी अच्छी लगती है और खूबसूरत लगता है वो
0: जी।
1: और उसी के लिए वो उस तरह से उस अंदाज में बजाया जाता है

0: वाह, तो अब फिल्म संगीत में हमें खेमटा ताल कहां सुनने को मिलता है, या ताल हिंच की आप बात कर रहे थे,
1: हाँ,
0: इसे अगर फिल्म संगीत में ढूंढने जाए तो कौन से गीत याद आ रहे हैं?
1: फिल्म सरस्वती चंद्र में मैं तो भूल चली बाबुल का,
0: जी जी जी, इसमें खेमटा ताल का बहुत सुंदर इस्तेमाल हुआ है,
1: बिल्कुल।
0: और हिंच हमें कहां सुनने को मिलती है?
1: दिल अपना और प्रीत पराई, ये जो गाना है
0: जी,
1: उसमें वो ढोलक के साथ में
0: शीर्षक गीत की आप बात कर रहे
1: हैं, शीर्षक गीत।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आइए इन दोनों गीतों की झलक अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

श्रोताओं, लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में ताल खेमटा पर आधारित इस गीत की झलक आप सुन रहे थे, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और अब सुनते हैं दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म के शीर्षक गीत की झलक, जिसमें ताल हिंच हमें सुनने को मिलता है। संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: काल हिंच में निबद्ध ये गीत था दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म से लता मंगेशकर के स्वर में, संगीत शंकर जयकिशन का। इसी के साथ हमें अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

मस्त कलंदर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में। असद भोपाली ने इसे लिखा था, हंसराज बहल का संगीत था। आज गीतकार असद भोपाली जी की पुण्यतिथि है। आज भूले बिसरे गीत में उन्हीं के लिखे गीत आपको सुनवा रहे हैं और आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार, जो कि केंद्रित होगा गीतकार असद भोपाली पर।

सुमन हिमाड़ी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मिस्टर क्यू से। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा था और मनोहर ने संगीत दिया था। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत विविध भारती से।

0: प्यार से। तू नहीं तो और सही, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रवि ने संगीत दिया था और असित भोपाली ने इस गीत को लिखा था।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

रंगीय राजा, ये था फिल्म का नाम। तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। शिवराम ने संगीत दिया था और इस गीत को लिखा था असद भोपाली ने।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अली बाबा और 40 चोर फिल्म से। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा था, उषा खन्ना का संगीत था। आज का ये कार्यक्रम गीतकार असद भोपाली जी पर आधारित है। आज उनकी पुण्यतिथि है और आज रात 9:30 पर आज के फनकार उन्हीं पर केंद्रित होगा।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे अफसाना फिल्म से। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा था, हुस्नलाल भगतराम का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यहीं संपन्न होता है।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के इस सुविचार से, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो।

और अब जानकारी लेते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की जो आज ही के दिन यानी 9 जून को इतिहास में घटित हुए। कुली ओडैजो माउंट एवरेस्ट पर दक्षिण तथा उत्तर दोनों छोर से चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी। आज ही के दिन 1999 में इन्होंने चढ़ाई की। 2006 में आज ही के दिन म्यूनिक में विश्व कप फुटबॉल की रंगारंग शुरुआत हुई। 2008 में आज ही के दिन केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन ने चंडीगढ़ को तंबाकू मुक्त घोषित किया। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने 9वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी पुरस्कार समारोह में फिल्म चक दे इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आज ही के दिन जीता।

और अब जान लेते हैं उन महापुरुषों को जो आज ही के दिन जन्मे। बच्चों के चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर किरण मार्टिन का जन्म आज ही के दिन 1959 में हुआ। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी का जन्म आज ही के दिन 1949 में हुआ। हिंदी चलचित्र अभिनेत्री अमीषा पटेल का जन्म आज ही के दिन 1975 में हुआ।

और अब जान लेते हैं उन विभूतियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। भारत के प्रसिद्ध शहीद स्वतंत्रता सेनानी हरि किशन सरहदी का निधन आज ही के दिन 1931 में हुआ। प्रसिद्ध गीतकार और शायर असद भोपाली का निधन आज ही के दिन 1990 में हुआ। हिंदी फिल्मों में शीर्ष निर्देशक, निर्माणकर्ता और पटकथाकारों में से एक राज खोसला का निधन आज ही के दिन 1991 में हुआ। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के बाद रुख करते हैं गीत संगीत की ओर। सुनते हैं फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का ये गाना।

और अब जानकारी लेते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की। रोहतास जिले में इस साल मॉनसून शुरू होते ही बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। जिले में 10 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान की शुरुआत 7 जुलाई को वन महोत्सव के साथ होगी। वन एवं पर्यावरण विभाग ने इस बार लक्ष्य में कृषि वानिकी को भी जोड़ा है। इसी वजह से इस साल का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में करीब 1 लाख ज्यादा है। विभाग को मुख्यालय से अब तक 2,20,000 पौधे लगाने की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा 1,05,000 अतिरिक्त पौधों का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है। भभुआ शहर के वैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया जाएगा जहां प्रतिदिन 100 किलो या इससे अधिक कचरा निकलता हो। इसके प्रसंस्करण का दायित्व भी उन्हीं प्रतिष्ठानों का होगा। इसे लेकर विगत दिनों नगर परिषद कार्यालय सभागार में विशेष बैठक की गई है। इसे लेकर आवश्यक तैयारियां और हिदायतें भी दी गई हैं।

कार्य पदाधिकारी ने रोहतास सहित सभी जिलों के डीएम को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। बताया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय की ओर से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत पंचायती राज विभाग को योग दिवस पर विशेष भूमिका निभाने को कहा गया है। मंत्रालय की ओर से ग्राम पंचायतों को व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसे लेकर जिले में भी इसकी तैयारी शुरू की जा रही है। ग्राम पंचायत के सहयोग से गाँव गांव में योग दिवस पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें योग के महत्व और इससे होने वाले लाभ की जानकारी देने के साथ योग भी कराया जाएगा। सासाराम में जिला पदाधिकारी रोहतास उदिता सिंह द्वारा सबका सम्मान जीवन आसान के तहत जिला पदाधिकारी की कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला जनता दरबार का आयोजन किया गया। उक्त जिला जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए कुल 7 व्यक्तियों द्वारा शिकायत पत्र दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा है कि जनता दरबार में आए मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। ससमय शिकायतों पत्रों का किया जाए निष्पादन।

भभुआ में कृषि विभाग कैमूर द्वारा शारदीय खरीफ महाभियान के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से लिच्छवी भवन भभुआ में सोमवार को जिला स्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी नितिन कुमार सिंह तथा उप विकास आयुक्त दिव्या शक्ति ने किया। जिला पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित तथा अत्यधिक प्रयोग से मृदा की उर्वरक शक्ति और जैविक गुणवत्ता प्रभावित होती है। उन्होंने किसानों को मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों के उपयोग की सलाह दी। उन्होंने जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया। कैमूर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड 132,150 किसानों में अब तक 98,010 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की गई है। बता दें कि फार्मर रजिस्ट्री में कैमूर राज्य में 7वें स्थान पर है। भभुआ जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैमूर जिले के सभी कार्यालयों में सोमवार को जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बता दें कि इन कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायतों तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भभुआ में आज यानी मंगलवार को जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस वर्ष अभियान की थीम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष सुरक्षित गर्भावस्था, स्वस्थ मां, सशक्त भारत निर्धारित की गई है। इस अवसर पर राज्य भर में विशेष जागरूकता एवं स्वास्थ्य जाँच गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

और अब एक नज़र समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होगी लागू, दोगुना होगा भूमि मापी शुल्क, इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की स्वीकृति मिल गई है। यह योजना खरीफ 2018 से लागू बिहार राज्य फसल सहायता योजना का स्थान लेगी। बीमित किसानों को कृषि लागत के समतुल्य फसल क्षति का भुगतान मिल सकेगा। बीमित भूमि की कोई अधिकतम सीमा नहीं होने से बड़े जोत वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार की हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में निर्णयों की जानकारी दी। आगे दैनिक जागरण की सुर्खी है, उज्ज्वला के तहत 9 की जगह 4 सिलेंडर पर ही सब्सिडी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को अब साल में सिर्फ 4 सिलेंडर ही मिलेंगे। पश्चिम एशिया संकट की वजह से देश में एलपीजी की बढ़ती लागत और इसकी वजह से तेल मार्केटिंग कंपनियों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार का तर्क है कि अभी भी उज्ज्वला और गैर उज्ज्वला एलपीजी ग्राहकों को 700 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिल रही है। ऐसे में पेट्रोलियम सब्सिडी के समग्र तौर पर बढ़ते बोझ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, यानी 4 सिलेंडर 740 और बाकी के 1040 रुपए पर मिलेंगे। 10 सीटों पर 10 नामांकन, सभी का चुना जाना तय। मंत्री दीपक प्रकाश रहे बेटिकट, इस खबर को प्रभात खबर ने अपने पहले पेज पर जगह देते हुए लिखा है। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन सोमवार को 10 दलीय उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। राजद ने अंतिम दिन सुनील कुमार सिंह को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया। श्री सिंह के नामांकन के साथ ही सभी 10 सीटों के लिए 10 नामांकन हुए। खास बात यह कि पंचायती राज मंत्री और एनडीए के घटक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने नामांकन नहीं किया। ऐसे में 11 जून को नाम वापसी के निर्धारित समय खत्म हो जाने के बाद सभी उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी जाएगी। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। आगे प्रभात खबर की सुर्खी है, गया कियूल रेलखंड नवादा तिलिया स्टेशन के बीच ट्रैक के रखरखाव और तकनीकी कार्यों को लेकर गया कियूल रेलखंड पर मंगलवार को 8 घंटे का मेगा ब्लॉक रहेगा। रेलवे के अनुसार यह ब्लॉक सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक प्रभावी रहेगा। इसके कारण 4 मेमू पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, जबकि कई एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। ईरान इसराइल में 2 माह बाद फिर छिड़ी जंग, इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान लिखता है, इसराइल और ईरान के बीच 8 अप्रैल को हुए संघर्ष विराम के 2 माह बाद एक बार फिर जंग छिड़ गई। दोनों देशों ने सोमवार तड़के एक दूसरे पर हमले किए। इससे पूरे पश्चिम एशिया में एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध छिड़ने का खतरा मंडराने लगा है। आगे हिंदुस्तान की सुर्खी है, OSM मार्किंग पर केंद्र CBSE से मांगा जवाब। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार और CBSE से जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 जून के लिए तय किया। और अब एक नज़र आर्थिक एवं खेलकूद जगत पर। रुपया 95.74 प्रति डॉलर पर पहुँचा। कच्चे तेल के दाम चढ़ने से बाजार फिर फिसला। सेंसेक्स 719.08 अंक टूटकर 73,524.26 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 924.4 अंक तक लुढ़क गया। निफ्टी 243.70 अंक की गिरावट के साथ 23,123 अंक पर बंद हुआ। और अब मौसम की जानकारी। भारत मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अवधि 6 से 10 जून के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की वर्षा होने का

अनुमान है। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत तथा दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अगले दो दिनों तक 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का अनुमान है। और आज के इस अंक में यहीं तक। कल नए खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त अपने रेडियो दोस्त संगीता को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। समाचार प्रभात सुनने के लिए चलते आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित

0: करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
2: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
3: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
5: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
3: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष

0: और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के डाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, TMC में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट NDA के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी

0: भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए। 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गंगा जमुना फिल्म का गाना।

देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गंगा जमुना फिल्म का गाना, आवाज़ें थी हेमंत कुमार और साथियों की। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गंगा जमुना फिल्म का गाना, आवाज़ें थी हेमंत कुमार और साथियों की। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं निकाह फिल्म के इस गाने से, जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने। रचना हसन कमल की है, धुन बनाई है रवि ने। इस गाने को सुनना चाहा है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राधिका गजभिये बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी।
1: अभी अलविदा मत कहो।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
6: So easy.
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दहलीज फिल्म का गाना भी आपने सुना, आवाज़ें थी महेंद्र कपूर और भूपिंदर की, हसन कमल की रचना थी, धुन बनाई थी रवि ने। इस गाने को सुनना चाहा था ग्राम धुरवा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू। इसी गाने की फरमाइश की थी मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाड़कर राही श्रीमती सरिता ग्वाड़कर, प्रिंस एकांश ग्वाड़कर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वाड़कर, प्रणीता ग्वाड़कर, अर्जुन ग्वाड़कर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश ग्वाड़कर, सुमित ग्वाड़कर और कुमारी ध्वनि ग्वाड़कर। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दोस्ताना से, आवाज़ किशोर कुमार की, आनंद बख्शी की रचना है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हाँ, इस गाने को सुनना चाहा है गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी साक्षी, बुलकी वाली झलना झा नयानगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू रजनीश, आनंद कुमार और गजेंद्र कुमार निराला। इसी गाने की फरमाइश की है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम पसंद आपकी अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत अपनी रेडियो सखी संगीता को। नमस्कार।

0: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
1: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
0: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: बाढ़ से बचने के उपाय। आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

AIR at 90. नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत जी राम जी योजना बिहार 2026 प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होगी, राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। लोक भवन ने नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। वैश्विक बिहारी समुदाय को निवेश और नवाचार से जोड़ने के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की आज होगी शुरुआत। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित।

0: मौसम विभाग ने कहा अगले दो दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से लागू होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने विकसित भारत जी राम जी योजना बिहार 2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की विस्तारित रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी।
1: ग्रामीण विकास विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण योजना 2026 की स्वीकृति दी गई और इस योजना को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की स्वीकृति दी गई। आप अवगत हैं कि मनरेगा के स्थान पर अब यह योजना विकसित भारत जी राम जी योजना लाई गई है। इसे लागू करने के लिए ही मंत्रिपरिषद द्वारा यह स्वीकृति दी गई।
0: राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की भी मंजूरी दे दी है। यह योजना राज्य फसल सहायता योजना के स्थान पर लागू होगी। अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने बताया कि राज्य में रबी फसल 2026-27 सत्र के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है।
1: सहकारिता विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 26-27 के रबी मौसम से राज्य में पुनः कार्यान्वयन किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
0: इधर कैबिनेट ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन मापी के शुल्क को दोगुना कर दिया है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित रैयती भूमि की मापी के लिए प्रति खेसरा न्यूनतम 2,000 रूपये और अधिकतम 8,000 रूपये लगेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति खेसरा न्यूनतम 1,000 रूपये और अधिकतम 4,000 रूपये लगेंगे। कैबिनेट में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य में नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। लोक भवन से जारी आदेश में कहा गया है कि नए दिशा निर्देश तय होने तक प्रखंडों में स्थापित होने वाले डिग्री कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों के चयन अथवा नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। राज्यपाल सचिवालय के अपर सचिव संजय कुमार की ओर से जारी पत्र के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई प्रक्रिया की रूपरेखा विभागीय स्तर पर विचाराधीन है। गौरतलब है कि प्रदेश के 211 डिग्री महाविद्यालयों में इस वर्ष 1 जुलाई से सत्र की शुरुआत होगी। वहीं राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा और मदरसा बोर्ड में भी नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। विधानसभा में दलों के संख्या बल के अनुसार सभी प्रत्याशियों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। 11 जून को नाम वापसी के दिन सभी प्रत्याशियों की जीत की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। वर्तमान विधान परिषद चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को जीत के लिए 25-25 मत की आवश्यकता है। एनडीए के पास 201 मत हैं, जिससे उनके 8 प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है, जबकि महागठबंधन के पास 36 मत उपलब्ध हैं, जिससे 1 सीट पर उसकी जीत निश्चित है। एक अन्य सीट पर उपचुनाव होना है जिसमें एनडीए की जीत तय है। राज्य सरकार वैश्विक बिहारी समुदाय को प्रदेश के विकास, निवेश और नवाचार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा आज पटना स्थित टेक्नोलॉजी भवन में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार यह प्लेटफॉर्म देश विदेश में बसे बिहार मूल के लोगों को राज्य की विकास यात्रा, निवेश अवसरों और ज्ञान साझाकरण की पहलों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। राज्य में शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश सीएल के साथ साथ महिलाओं के विशेष आकस्मिक अवकाश एसएल के आवेदन पर अधिकारी 1 दिन में निर्णय लेंगे। अन्य अवकाशों के आवेदन पर 7 दिनों में निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों, सहायक शिक्षकों, विशेष शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों के अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कटिहार सदर अस्पताल में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड डीएनबी पाठ्यक्रम

0: पढ़ाई होगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने सदर अस्पताल के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में डीएनबी की 2 सीटों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 2 मेडिकल स्नातक के छात्र यहां दाखिला लेकर विशेषज्ञ चिकित्सक बनने की दिशा में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। श्री सिंह ने बताया कि दिसंबर माह से इस पाठ्यक्रम में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की वार्षिक सीमा 9 से घटाकर 4 कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण मन खनुजा ने बताया कि वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 12 रसोई गैस सिलेंडर दिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि संशोधित सीमा लाभार्थियों की औसत वार्षिक गैस खपत के करीब है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने मुंगेर में आयोजित कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। श्री भागवत ने बौद्धिक सत्र के दौरान कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सीवान और गोपालगंज जिले के 118 प्रखंड और पंचायत शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें सेवा से हटाने के निर्देश पर रोक लगा दी है। इन शिक्षकों में सीवान के 83 और गोपालगंज के 35 शिक्षक शामिल हैं। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने इन शिक्षकों के नियोजन को निरस्त करते हुए उन्हें सेवा से हटाने का निर्देश दिया था। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
3: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रहता हूँ।
2: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक

0: चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। अधिकतर स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। बक्सर का अधिकतम तापमान 42.7, कैमूर के भभुआ का 42.4, गया जी का 41.4 और पटना का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।
2: दिनांक 9 जून राज्य के समस्त उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
1: सीतामढ़ी जिले के रेवासी पंचायत के धनुषी टोला में कल देर रात एक पीपल का पेड़ गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के वक्त पूरा परिवार घर में सो रहा था। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में कटरिया पिकेट के पास पुलिस ने छापेमारी में घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग तथा कालाबाजारी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के पुलिस अधीक्षक ने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के मामले में 14 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया, जबकि 26 अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली स्थित एचपीसीएल बायोफ्यूएल लिमिटेड इकाई के आरक्षित क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास परिषद की ओर से गन्ना ग्राम गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। पटना जिले की एक अदालत ने डकैती के मामले में 6 दोषियों को 7-7 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की खबर है, विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बनाने पर राजद नेता शिवचंदर ने पार्टी पद से दिया इस्तीफा। दैनिक जागरण नीट यूजी पुनर्परीक्षा पर लिखता है, इस बार वायुसेना और डाक विभाग पहुंचाएंगे प्रश्न पत्र। दैनिक भास्कर की खास खबर है, सीबीएसई आंसर शीट मांगने वाले हर 10 में 4 छात्र कॉपी जचवा रहे। प्रभात खबर ने खेल की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, भारत की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत, तीसरे दिन ही अफगानिस्तान का सरेंडर, पारी और 300 रन से गंवाया मैच। आज अखबार की सुर्खी है, सासा मूसा शुगर मिल फिर से चालू होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत जी राम जी योजना बिहार 2026 प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होगी, राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। लोक भवन ने नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। वैश्विक बिहारी समुदाय को निवेश और नवाचार से जोड़ने के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की आज होगी शुरुआत। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

0: AIR at 90.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। अगला प्रसारण अब से थोड़ी ही देर में। FM बैंड के 103.4 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। पेश है शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 9:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतमालिका। कार्यक्रम आवाज़ आपको सुनवाएंगे सुबह 10:05 पर। भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी लेकर हम हाजिर होंगे सुबह 10:30 पर। भोजपुरी एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसधार सुनिएगा सुबह 10:45 पर।

गीत के साथ कार्यक्रम वंदन से समय होगा शाम 5:10 पर। युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी लेकर हम हाजिर होंगे शाम 5:30 पर। इस कार्यक्रम में आज बातें होंगी विविधता में एकता का संदेश, भोजपुरी लोकगीत सुनिएगा शाम 6:00 से। भोजपुरी समाचार बुलेटिन आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से, समय होगा शाम 6:05 पर। किसान भाइयों का प्रसारण किसानवाणी का समय होगा शाम 6:10 पर। इस कार्यक्रम में आज बातें होंगी गृह वाटिका कितना लाभप्रद, वार्ताकार होंगे डॉक्टर रीता सिंह।

भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत हम पेश करेंगे शाम 6:40 पर। गुड इवनिंग रोहता सुनिएगा शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से, समय होगा शाम 7:25 पर। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद सुनिएगा शाम 7:50 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा हम पेश करेंगे रात्रि 9:00 से। गजलों की महफिल सजेगी रात्रि 9:15 पर। रस रंग कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:00 से। और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 10:30 पर। अभी आप जानकारी ले रहे थे शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म कयामत से कयामत तक। आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की। मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

बेटा फिल्म का गाना भी आपने सुना। आवाज़ें थी उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की, समीर की रचना थी, धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आशिकी से, आवाज़ें हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं, लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है। दोस्तों, फिल्में जो भी हो लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री गर्ल कहा गया था।

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

0: 1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।
1: मैं

विराज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।

0: 1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश।
1: सो

राज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्ताना।

0: चली है चोरी हो चोरी काली पलक पिया मोरी।
1: राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई में ली।

वो तो यकीनन इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताजा बनाए रखेगा।

0: क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम। आज के फनकार केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली।

0: ली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
3: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। पुदुचेरी में मंत्रिमंडल विस्तार के तहत राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री की सलाह पर 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति की है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेलु और वीपी शिवा कोलुंधु तथा भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन को पुदुचेरी सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति शपथ ग्रहण के बाद प्रभावी होगी। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का भी आभार व्यक्त किया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। यह शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर में कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भगवान

0: कोई दिक्कत नहीं है?
1: नहीं,
0: कितनी बार पानी आता है?
1: तीन बार।
0: तीन बार आता है। पीने के काम में लेते हैं आप लोग पानी को? पीते हैं,
1: वही पानी पीते हैं हम लोग,
0: वही पानी पीते हैं।
1: हाँ।
0: जरूरत के हिसाब से मिल जाता है पानी?
1: हाँ,
0: कोई दिक्कत नहीं होती?
1: कोई दिक्कत नहीं।
0: आपके यहाँ कोई सरकारी विद्यालय है?
1: एक को नहीं,
0: नहीं है। तो आप लोग अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं?
1: करसेरुआ।
0: करसेरुआ भेजते हैं? आपके यहाँ से करसेरुआ जाने के लिए पक्की सड़क है?
1: नहीं, कच्ची है।
0: तो बरसात के मौसम में बच्चे कैसे जाते हैं?
1: हाँ, किसी में
0: वैसे ही जाना पड़ता है।
1: हाँ,
0: चला जाता है लोग?
1: हाँ, तो जो जाएगा, जो बच्चा छोटा है वो कहाँ से जाएगा।
0: आंगनबाड़ी केंद्र है कि नहीं आपके?
1: नहीं है।
0: आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है?
1: नहीं है।
0: तो छोटे बच्चे कहाँ जाते हैं?
1: छोटा नहीं, थोड़ा सयान हो जाता है तब जाता है।
0: और मान लेते हैं करसेरुआ में चूंकि 1 से 8 तक स्कूल है, मध्य विद्यालय है, मिडिल स्कूल है, तो 1 से 8 तक पढ़ने के बाद उसके बाद आगे पढ़ाई के लिए कहाँ भेजते हैं आप लोग?
1: दरगाँव चल जाइए, नहीं कहीं दूसरों जगह एडमिशन हो गई था।
0: आपके यहाँ अगर कोई बीमार हो जाता है तो इलाज कहाँ आप लोग कराते हैं?
1: इलाज दरगाँव कराते हैं, न तो सासाराम।
0: आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं?
1: नहीं है।
0: रंगपुर में है, वहाँ आप लोग नहीं जाते हैं?
1: जाते हैं।
0: खुला मिलता है?
1: खुला मिलता है,
0: दवा मिलती है?
1: हाँ, दवा मिलती है।

0: परेशानी है।
1: तो बिया जब डालते हैं, धान का बीज डालते हैं, अभी तो टाइम हो रहा है, लोग कुछ डाल भी रहे हैं और आगे डालेंगे भी, तो धान के बीज का पटवन कैसे कर?
0: और हाई जगदीवा लाइन से पाइप बिछा करके,
1: नहर से आता है? ये नहर बगल में है?
0: हाँ, डीजल पंप या मोटर लगा के 1000 फीट पाइप बिछी तो पार्टी।
1: तो जगजीवन नहर का पानी डायरेक्ट नहीं आता है?
0: नहीं, डायरेक्ट नहीं आता,
1: इधर आता ही नहीं है। आपके गांव की गलियों में लाइट लगाई गई है? नहीं है।
0: नहीं।
1: खैरी गांव के एक और व्यक्ति से बात कर रहे हैं। खैरी गांव सासाराम प्रखंड में पड़ता है और करसरुआ पंचायत में पड़ता है। अपना नाम बता दीजिए।
2: राम प्रवेशा।
1: गांव का नाम?
2: खैरी।
1: पंचायत भी बता दीजिए।
2: करसरुआ पंचायत, ग्राम खैरी।
1: आप अपने गांव के गली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी गलियों का पक्कीकरण हो चुका है या कुछ गली बनानी अभी बाकी है?
2: गली का तो व्यवस्था खैर सही है, और कुछ रह गया है बनाने के लिए।
1: जो गली बनाने के लिए रह गई है उसमें परेशानी होती है कि नहीं?
2: बरसात के मौसम में होती है।
1: बरसात में होती है, पर जो बन चुकी है उसमें परेशानी होती
2: नहीं
1: है?
2: नहीं, वो तो सही है,
1: वो ठीक है। नाली बनाई गई है आपके यहाँ की गलियों में?
2: नाली बनी है लेकिन पक्कीकरण उसका नहीं हुआ है।
1: पक्कीकरण नहीं हुआ तो बनी कैसे?
2: वो ईंटा से जुड़ाई हुआ है, अभी नाली का ढलाई वलाई नहीं हुआ है, उसे पक्की नहीं बनी।
1: पानी निकल जाता है?
2: पानी निकलता है।
1: कि गली में जमा रहता है?
2: नहीं, गली में नहीं रहता है,
1: निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। सारी गलियों में नाली बन चुकी है?
2: सारी गली में।
1: बिजली रहती है कि नहीं?
2: बिजली तो यहाँ अच्छा खासा रहता है।
1: बिजली में कोई दिक्कत नहीं है
2: ना?
1: बिजली बिल के बारे में?
2: बिजली बिल वही अपना यूनिट से बेसी चलाइएगा तो पैसा देना पड़ता है।
1: जो लाभ मिल रहा है वो मिल रहा है?
2: मिल रहा है।
1: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोगों को मिल रहा है?
2: हाँ, वो पानी मिल रहा है।
1: कितने बार आता है?
2: 3 बार आता है, सुबह शाम दोपहर।
1: पीने के काम में आप लोग लेते हैं?
2: हाँ, पानी वहीं पीते हैं, फ्रेश रहता है।
1: अच्छा, फ्रेश पानी है। आपके यहाँ कौन सी सरकारी विद्यालय है? कोई विद्यालय है?
2: कोई सुविधा सरकारी पढ़ाई वाला नहीं है।
1: मतलब स्कूल नहीं है आपके यहाँ? आंगनबाड़ी केंद्र?
2: आंगनबाड़ी भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, सामुदायिक भवन भी नहीं है।
1: आप लोग अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए?
2: करसरुआ।
1: करसरुआ जाना पड़ता है? कितनी दूरी पर है करसरुआ?
2: 1 किलोमीटर।
1: 1 किलोमीटर। आने जाने के लिए रोड है?
2: ना, रोड ना है।
1: कैसे बच्चे जाते हैं?
2: वैसे ही पैंट कुर्ता पहन कर मोड़ कर जाते हैं हाथ खींच में।
1: बरसात के मौसम में कैसे जाएंगे?
2: वैसा ही जाते हैं, छोटे बच्चे नहीं सक्सेस होते हैं, बड़े बच्चे जाते हैं।
1: छोटे बच्चे नहीं जाते हैं?
2: नहीं जाते।
1: तो छोटे बच्चे को आप लोग कैसे पढ़ाते हैं?
2: अब बरसात के मौसम में पढ़ने नहीं जाता है,
1: घर ही पर रहता है।
2: घर ही पर रहता है, वो सक्सेस नहीं होता है जाने में।
1: आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है?
2: नहीं है।
1: नल जल योजना

0: इधर पानी नहीं चढ़ता है,
1: मतलब इस साइड पानी नहीं आ पाता
0: नहीं,
1: है,
0: नहीं आता है।
1: बारिश के पानी पर आप लोग निर्भर हैं,
0: बारिश के प्रकृति का पानी से निर्भर है।
1: बारिश नहीं हुई तो,
0: नहीं हुई तो वही अपना मोटर मशीन लगा कर किसी तरह से जियाते रह,
1: फसल नहीं होती है।
0: हाँ, मार कर जाती है बारिश, समय से नहीं होता है तो
1: ख़त्म हो जाती है। और कुछ कहना चाहेंगे?
0: अब क्या, वही सरकारी स्कूल का थोड़ा यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, इस सब पढ़ाई वढ़ाई के बारे में, और क्या,
1: बाकी ठीक है,
0: सब लगभग सही है।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सासाराम प्रखंड के खैरी गांव के लोगों से की गई बातचीत। खैरी गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत सुनने से पहले आइए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है जीने की राह।

0: धान और गेहूँ। पटवन कैसे करते हैं?
1: पटवन वही बरसात भगवान की कृपा से होता है, नहीं तो अपने साधन है, नहर से पटाई करते हैं।
0: आपके बगल से जगजीवन नहर गुजर रही है, हाँ। इसका पानी नहीं आता है?
1: ना, ये हम लोग के गांव में नहीं लगता है।
0: क्यों नहीं आता है?
1: ऊंचा पर है ना,
0: एकदम नज़दीक है।
1: नज़दीक है।

0: दोस्तों, अभी आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म जीने की राह का ये गीत सुन रहे थे। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं सासाराम प्रखंड के खैरी गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत। परिचय दे दीजिए अपना।
1: हमारा नाम रामा शंकर सिंह पड़ेगा, यादव।
0: गांव का नाम बता दीजिए।
1: खैरी।
0: पंचायत भी बता दीजिए।
1: करसरुआ।
0: करसरुआ पंचायत में पड़ता है। आपके गाँव में कितना वार्ड है?
1: वार्ड तो एक है, तो सात में पड़ता है। हम लोग कुसुड़ी में जाते हैं वोट देने के लिए, नहीं तो घर बैर में।
0: मतलब आपके गांव में एक ही वार्ड है? मतलब कितना फुट लगभग होगा आपके गांव में?
1: यहाँ 30-40-50 फुट होगा।
0: अच्छा, छोटा गांव है।
1: छोटा
0: टोला टाइप का है
1: जी।
0: सबसे पहले आप अपने गांव के गली के बारे में बताइए कि गली बन गई है या कुछ बाकी भी रखी?
1: गली तो कुछ बाकी है, कुछ बन गया है सर।
0: जो बनी है उसमें परेशानी होती है कि नहीं?
1: नहीं, परेशानी नहीं है। जो बन गया है तो ठीक है।
0: जो नहीं बनी है
1: उनको परेशानी है।
0: नाली बनाई गई है आपके यहाँ?

0: पानी कैसे निकालते हैं?
1: अब उसी तरह से बह रहा है मुझ पर, जिधर बरसात का पानी है तो न तो गोइंडा खार कर रोकते हैं।
0: गली में भी बहता रहता है?
1: जी
0: गली में बहता रहता है। बिजली रहती है कि नहीं आपके यहाँ?
1: लाइन तो मिला जुला के ठीक है।
0: बिजली बिल के बारे में बताइए।

0: है
1: 125 यूनिट फ्री का लाभ मिल रहा है।
0: फ्री वाला में
1: लाभ मिल रहा है।
0: हाँ, लाभ मिल रहा है।
1: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोगों को मिल रहा है?
0: हाँ
1: मिल रहा है। हाँ। कोई दिक्कत

0: स्थिति ठीक नहीं है,
1: उसमें पानी है या सूख चुका है,
0: कम हो गया है, कम से कम 30 फीट नीचे पानी चला गया है,
1: उसका पानी यूज नहीं होता
0: ना।
1: आपके यहाँ कोई विद्यालय है कि नहीं?
0: ना सर, यहाँ तो कोई नहीं है,
1: कोई विद्यालय नहीं,
0: कोई विद्यालय नहीं, आंगनबाड़ी भी बन जाता है यहाँ तो, नन्हे नन्हे बच्चा लोग है, दूर जाने में सक्षम नहीं है,
1: आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है,
0: ना कुछ नहीं है।
1: आप लोग कहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए बच्चों को?
0: अरे बच्चा को तो अब सर के कारा के सियान होता है तो जिकरा जितना समर्थ है वहाँ भेजेगा, वहाँ भेजेगा तो जाता है दरगाँव का, तो रोड बंद हो जाएगा, इधर से निकासी है अब।

0: बताएगा।
1: खेती करते हैं?
0: खेती तो करते हैं सर।
1: कौन कौन सी फसल लगाते हैं?
0: बस वही धान गेहूँ।
1: धान गेहूँ।
0: पानी का स्थिति जो है यहाँ गड़बड़ है।
1: पटवन कैसे करते हैं?
0: पटवन तो मान लीजिए कि तो वही है, नहर के पानी आ गया चाहे इधर से आ गया, जहाँ पानी नहीं चलेगा तो पंप से व्यवस्था करते हैं। डीजल इंजन अपना रखे हैं, डीजल वजह से सिंचाई होता है।
1: डीजल वजह से आपके बगल से नहर गुजर रही है
0: वहाँ
1: का, बहुत नज़दीक।
0: ये माइनर है सर, है ना? बाकी माइनर ही कभी ठीक से बन ही नहीं पड़ता है।
1: जगजीवन नहर है ना?
0: जगजीवन लाइन है, वहाँ वहीं टूट जाएगा। वहाँ मिट्टी डालते हैं ना, पाइप बनाते हैं ना, कन्वर्ट बनाते हैं, पानी कैसे आएगा? खाला से तो वहाँ टाइट रहेगा तब ना ऊपर पानी आएगा।
1: जगजीवन नहर का पानी आप लोगों के खेतों में नहीं आ पाता
0: ना
1: है? क्या दिक्कत होती है?
0: वही कंडाले भ्रष्ट कर जाता है,
1: इधर ऊंचा पड़ता है।
0: ऊंचा पड़ता है।
1: तो आप लोग पटवन कैसे करते हैं?
0: तो वही है, वर्षा का पानी हुआ तो हुआ, और नहीं तो मैंने फिर वही अपना जुगाड़ लगाइए।
1: बारिश का पानी नहीं हुआ तो फसल नहीं हो पाती है?
0: नहीं, कमज़ोर हो जाएगी।
1: एक चीज़ और बताइए, आपके यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाता है
0: जी
1: तो इलाज कैसे कराते हैं, कहाँ ले जाते हैं?
0: अब तो वहाँ ले जाने के बाद में टांग टूंग को ले जाएंगे दरगाह, उनका ससराम। अब रोड पर ले जाएंगे तब ना गाड़ी बस मिलेगा।
1: आपके पंचायत में रोंगपुर में है उप स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ जाते हैं कि नहीं आप?
0: जाते हैं हम लोग।
1: इलाज हो जाता है?
0: हाँ हाँ।
1: दवा मिलती है?
0: हाँ दवा मिलती है।
1: अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती?
0: ना दिक्कत।
1: कोई गंभीर रूप से अगर बीमार हो जाता है तो कहाँ ले जाते हैं?
0: वहाँ ससराम।
1: ससराम जाना पड़ता है। आने जाने में कोई परेशानी?
0: परेशानी वही है कि अब यदि गाड़ी मिल गया समय से, रात को तबीयत खराब हो गया तब, यहाँ कमजोर आदमी है तो कैसे ले जाएंगे?
1: आपके गांव से सासाराम जाने

0: बच्चों को पढ़ने के लिए जाता है ऐसे तिरछा स्कूल अच्छा, करसरुआ है
1: अच्छा इधर जाना
0: हाँ इधर जाना पड़ता है
1: तो उसमें बीच में कच्ची पड़ती है
0: कच्ची है
1: इसीलिए परेशानी
0: जी।
1: खैरी गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं, आइए एक महिला है इनसे भी जान लेते हैं, महिला से बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए।
2: सिपातो देवी।
1: गांव का नाम
2: खैरी।
1: पंचायत मालूम है?
2: परसेरुआ।
1: आप अपने गांव के गली के बारे में बताइए, गली बन गई है या बाकी भी रह गई है?
2: गली बन गई बा और बाकी भी बा।
1: जो बनी है उसमें परेशानी होती है कि नहीं?
2: नहीं होती है।
1: और जो नहीं बनी है
2: वो में तो परेशानी बढ़ने न बा।
1: परेशानी होती है, बरसात के मौसम में कीचड़ हो जाता है,
2: बहुत होता है।
1: नाली बनेगी है?
2: हाँ बनेगी है।
1: नाली बनी है, पानी निकल जाता है नाली से?
2: पानी निकल जाता है,
1: कोई दिक्कत नहीं है?
2: नहीं।
1: बिजली रहती है कि नहीं?
2: रहती
1: है। बिजली रहती है, बिजली का वोल्टेज
2: ठीक हो?
1: ठीक है। नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए मिल रहा है आप लोगों को?
2: हाँ मिलता है।
1: पीने के काम में लेते हैं?
2: हाँ हाँ सब कुछ में लेते हैं।
1: कितनी बार आता है पानी?
2: तीन बार।
1: आपके यहाँ कोई विद्यालय है?
2: नहीं,
1: स्कूल
2: नहीं।
1: नहीं है? आंगनबाड़ी केंद्र
2: नहीं? बड़ी दिक्कत है लड़कन के पढ़े के।
1: कहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने?
2: बड़ा बच्चा माने 5 साल 6 साल के जाता है, छोटा बच्चा 3 साल के नहीं जाता है, 4 साल के नहीं जाता है, जाइए ना पता है उतना दूर।
1: पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है?
2: हाँ दूसरे गाँव में जाना ही है, आंगनबाड़ी कुछ नहीं के।
1: अगर कोई बीमार हो जाता है तो आप लोग कहाँ जाते हैं इलाज कराने के लिए?
2: इलाज कर दरगाँव जाता है।
1: आपके पंचायत में रोंगपुर है, वहाँ नहीं जाते हैं?
2: कभी कभार स्कूल जाते हैं, बच्चन के दवाई लेवे, सुई उई दिलावे।
1: खुला रहता है?
2: खुला रहता है।
1: आपके यहाँ खेती होती है?
2: हाँ।
1: कौन कौन सी फसल लगाई जाती है?
2: धान गेहूँ ये ना दू गो।
1: पटवन कैसे होता है?
2: पटवन तो नहर ऐबे ना करे ऊँचा पड़े ना तो मिले अथु मशीने तसीन से होना या नहीं तो भगवान बरसेन होना
1: बारिश के पानी से,
2: आ नहीं तो मरियो जाई ना बारिश हुई तो, आ ना साधन रही तो मरियो जाई।
1: और कुछ कहना चाहेंगे?
2: अब क्या कहना चाहते हैं, तो आगन अगन बाड़ी नहीं खेल लेकिन के पढ़े के बड़ी दिक्कत होता है, ये तो दिक्कत बा।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड के करसेरुआ पंचायत के खैरी गांव के लोगों से की गई बातचीत। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं दोस्तों एक और प्यारा सा गीत। ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दोस्तों, इसे हमने लिया है फिल्म एक बार फिर से। इसके गीतकार हैं विनोद पांडे, संगीतकार रघुनाथ सेठ और आवाज़ है अनुराधा पौडवाल।

दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए सरकारी मशीनरी के साथ साथ जनता की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। आशा है सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक मदद के साथ साथ जनता का सहयोग भी मिलता रहेगा। दोस्तों, अब घड़ी इशारा कर रही है हमारे इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए, यानी साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज़ को समाप्त करने के लिए। तो साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज़ का ये अंक आपको कैसा लगा, आप पत्र द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपने लिखा द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। इसी के साथ आप अपने रेडियो दोस्त मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। स्वर एवं संकलन मुमताज़ अहमद और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज। पेश है भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भरत शर्मा व्यास के इस गाने से। एल्बम का नाम है राजा पिया जानी।

आवाज है भरत शर्मा व्यास की। एल्बम का नाम बहे पुरवैया सिरवन लागे जी।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी रसधार कार्यक्रम के अंतर्गत। लीजिए सुनिए भोजपुरी एल्बम गीत।

ओडिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

रसधार कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम गीत एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए आरंभ करते हैं कार्यक्रम रंग तरंग इस भक्ति गीत के साथ, जिसे लिखा है तुलसीदास ने, केदार पंडित ने इसे संगीतबद्ध किया है और अपने सुरों से सजाया है साधना सरगम ने।

हम सुन रहे थे अनफॉरगेटेबल ट्रीट आशा भोसले के इस एल्बम से, आशा भोसले की आवाज़ में मीरा भजन और जयदेव की इस कृति को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत, जो कि है शंकर शंभू कव्वाल और साथियों की इस एल्बम से, जिसे गाया है शंकर शंभू कव्वाल और साथियों ने। एल्बम का नाम है जिम्बो फाइंड्स अ सन, अनजान के बोल हैं और सरदार सिंह का संगीत।

सितम एल्बम से यह नगमा हम सुन रहे थे चंदन दास की आवाज में। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल्स एल्बम से, चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज में, जिसे लिखा सुदर्शन फाकिर ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। सुन रहे हैं रंग तरंग। आइए सुनते हैं मीरा भजन्स बाय लता मंगेशकर। इस एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में गीत के बोल मीराबाई के हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे एल्बम मनमस्त कबीरा से बैजू मंगेशकर की आवाज़ में, कबीर के बोल और बैजू मंगेशकर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे वडाली ब्रदर्स की आवाज़ में याद पिया की आए। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में जिगर मुरादाबादी के बोलों से सजे हुए इस नगमे को, जिसे महेश चेदर ने संगीतबद्ध किया है और इस एल्बम का नाम है जिगर से जिगर तक।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अंतिम नगमा, जिसे गाया है लता मंगेशकर जगजीत सिंह ने, शाहिद कबीर ने इसे लिखा है, जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया है और हमने लिया है द बेस्ट ऑफ सजदा सजदा एल्बम से।

0: और इसी के साथ कार्यक्रम रंग तरंग समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार

0: व्यापार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमरीका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे दो आंखें बारह हाथ फिल्म से यह गीत, जिसे साथियों ने गाया भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आज दिनांक है 9 जून और आज ही के दिन यानी 9 जून 1912 को सोनावड़े विलेज यानी सोनावड़े गांव में सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में जन्म लिया था वसंत देसाई ने, यानी आज उनका जन्मदिवस है। तो चलिए उनके ही गीतों के साथ यानी वसंत देसाई के गीतों के साथ हम उन्हें याद करते हैं।

0: हम सुन रहे थे दो बहनें फिल्म से प्रदीप की आवाज में प्रदीप के ही बोलों को वसंत देसाई ने जिसे संगीतबद्ध किया है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए लेते हैं यादों की महफिल में एक छोटा सा विराम, उसके बाद पुनः हाजिर होते हैं हम आपके बीच में बहुत सुंदर से नगमों को लेकर जिसे सजाया है हमने संगीतकार वसंत देसाई की यादों के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में गुड्डी फिल्म का यह गीत। वाणी जयराम की आवाज में गुलजार की बोल हैं और संगीतकार वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं वसंत देसाई को। गूंज उठी शहनाई, इस फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने गाया है। भरत ब्यास के बोल हैं और वसंत देसाई का है संगीत। आइए सुनते हैं।

हम सुन रहे थे गीत तूफान और दिया फिल्म से मन्ना डे की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं फिल्म प्यार की प्यास से लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज में भरत व्यास के बोल हैं और वसंत देसाई का है संगीत।

हम सुन रहे थे अमर ज्योति फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म से। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। अनंत श्याम ने इसे लिखा है और वसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया है।

0: गए हैं जहां उनके किनारे उनका घर था। तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं,
1: क्या
0: जैसे
1: बात है।
0: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार
1: वो
0: था।
1: हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं अगला गीत, जो कि है फिल्म यादें से। लता मंगेशकर की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और वसंत देसाई का संगीत।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की

हम सुन रहे थे आशीर्वाद फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में गुलजार के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में, जहां हम याद कर रहे हैं वसंत देसाई को उनके सुंदर गीतों के लिए। गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज है, भरत व्यास के हैं बोल और वसंत देसाई का है संगीत।

और इसी के साथ समाप्त होता है आज का यह कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें याद कर रहे थे हम संगीतकार वसंत देसाई को। आज उनका जन्मदिवस है और उनको याद करते हुए हमने उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए गीतों को सुना। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस प्रस्तुत होगा थोड़ी ही देर के बाद।

चलिए, स्वागत है आप सभी का विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में, और स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में। अब ये सुरीला सफर शुरू हो रहा है और आज की जो इबारत है वो हम आपके बीच में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कुछ मित्र हैं जो सोशल मीडिया पर हमें नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए इबारत हम जरूर पढ़ेंगे। इबारत थोड़ी बड़ी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारी पहेलियां हैं, तो हम प्रत्येक गीत के पहले आपको ये पहेली सुनाते जाएंगे। हम कुछ पहेलियां दे रहे हैं, उसके साथ आज के शब्दों को ढूंढना है और बताना है, और पहेली प्रत्येक गीत के पहले आपके बीच में रखी जाएगी। और अभी अब हम जो चल रहे हैं इस इबारत के साथ में, हमने एक और बात आपसे कही है कि अगर आपके पास में कुछ पहेलियां हैं जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो जरूर करें। हो सकता है उससे जुड़ा हुआ कोई गीत हम आपको सुनवा दें कार्यक्रम के होने होने तक। तो चलिए चलते हैं, आज के कुछ संदेश हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे भेजे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर को शब्द संगीत पहेली का रूप दिया गया है। हम श्रोताओं को दिमागी कसरत और कुछ नवीन प्रयोग अच्छा लगा और सराहनीय भी। धन्यवाद कुछ नई सोच के लिए। और उन्होंने सारे उत्तर दिए हैं एक के बाद एक। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि कार्यक्रमों में विविधता ही विविध भारती की पहचान है। पहेलियों का सुंदर प्रयोग कुछ अलग हटकर करने की प्रामाणिकता है। समरसता अक्सर मनोरंजन बाधित होती है, अतः यह विविधता स्वागत योग्य है। और इसके साथ ही उन्होंने भी हर पहेली का उत्तर दिया है। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है एक और संदेश, जहां हमारे मित्र लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज पहेलियां पूछते हैं। कभी कक्षा के खाली समय में दो चार लोग यह खेल खेला करते थे, या किसी शादी के फंक्शन में रिश्तेदारों का जमघट होता था तो लोग मनोरंजन के लिए पहेलियां बुझाने का काम करते थे और सही जवाब पर ठहाके लगाते थे। हमारे एक श्रोता ने तो बड़ी गंभीर बात लिखी है। वो लिखते हैं, पहेलियों की विषय वस्तु में वैदिक, पौराणिक, प्राकृतिक और लोक जीवन के प्रसंग प्रचुर मात्रा में देखने सुनने को मिलते हैं। पहेलियां ज्ञानवर्धक और स्मरण शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से कही और सीखी जाती हैं। पहेलियां प्रायः व्यंजना शैली में रची जाती हैं। इनकी भाषा में विशिष्ट भंगिमा होती है, रचना में बाकपन होता है। इस कारण इसका अर्थ लगाने में दिमागी कसरत तो होती ही है, भाषा भी निखरती है और विषय वस्तु के प्रति जिज्ञासा और हाजिर जवाबी भी बढ़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कुछ तो कह रहे हैं कि वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं इन पहेलियों के साथ में, तो वह भी बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि पहेलियां दिमाग की कसरत नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं, धैर्य और दृष्टिकोण का एक खूबसूरत दर्पण है। वे सिखाती हैं कि जीवन की उलझन में गहरा अर्थ छिपा है। यह जीवन के उस फलसफे को दर्शाती हैं जहां हर सवाल का जवाब हमारे अपने भीतर मौजूद होता है, और शब्दों और छवियों का यह खेल हमें अपनों के साथ जोड़ता है, संवाद बढ़ाता है और कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चाहे वह जीवन की जटिलता हो या शब्दों का कोई मनमोहक खेल, हर पहेली हमें बेहतर और समझदार बनाती है। तो चलिए हम चल रहे हैं उन्हीं पहेलियों की तरफ। हमारे श्रोता ने एक और बात लिखी है कि ये पहेली वाला विषय नहीं है, इन्होंने अपने किसी दूसरे पहेली विषय से जोड़कर लिखा है। तब हम जब वह गीत हम सुनाएंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे, परंतु अब हम चलते हैं इस पहले गीत की तरफ। और ये पहला गीत जो है वो बड़ा सुंदर सा है। आपको पहचानना है कि इसके ये जो गायक कलाकार हैं वो कौन है, और अगर आपके मन में कोई पहेली है तो उस पहेली को हम तक पहुँचाना है और उस पहेली का उत्तर भी पहुँचाइएगा। हमारे श्रोताओं जितने समझदार नहीं हैं, तो हम चाहते हैं आप उत्तर सहित पहुंचाएं और हम अगला गीत आपको पहुंचा दें, सौंप दें।

हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत जो हमने लिया था फिल्म पहेली से। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और रविंद्र जैन ने ही इसे संगीतबद्ध किया। अब हमने आपसे पूछा था कि इसके जो गायक कलाकार हैं उनका नाम आप हमें सुझा दें, बता दें। तो आपने हमें उन गायक कलाकारों के नाम बताने के साथ साथ बड़ी सुंदर तरीके से बता दिया इस पूरे गीत के बारे में। हमारे श्रोता लिखते हैं, सुरेश वाडकर हेमलता और चंद्रानी मुखर्जी की आवाज़ में 1977 के दशक के कुछ सबसे खूबसूरत और यादगार गानों का आनंद लें। ये गाने केवल मधुर हैं और सहेली हो पहेली पूछो जैसे गानों के दौर सुंदर दौर है। और इन्होंने इसी फिल्म के इस फिल्म के नाम के बारे में भी जिक्र किया है कि ये फिल्म है पहेली। और इसके साथ ही हमारे कई सारे और श्रोताओं ने भी ये उत्तर दिया है, उसके लिए भी हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं। और इस सुंदर आगाज के साथ में अब हम आज की पहली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। और आज की पहली पहेली है, जो जन्म से भी पहले पहचान लेती है, जो जन्म से पहले भी पहचान लेती है और मृत्यु के बाद भी स्मृति बनकर साथ चलती है, जिसे खोकर लोग बड़े तो हो जाते हैं पर कभी सचमुच बड़े नहीं हो पाते हैं। और इसका उत्तर हमारे श्रोताओं ने सही दिया और उत्तर दिया माँ। बिल्कुल सही बात है, माँ ही है ना जो हमारे जन्म के पहले, यानी हर कोई हमारे जन्म के बाद हमें प्रेम करता है, लेकिन माँ होती है जो हमारे गर्भ में आने के बाद ही वह हमें प्रेम करने लग जाती है और उसी प्रेम के लिए हम उसे याद करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सभी सांस्कृतिक प्रश्नों पर गीतों पर चर्चा का समन्वय रहेगा। जन्म लेने से पहले माँ का साथ रहता है, किंतु जब वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। बिल्कुल सही कहा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वो माँ है, अपने बच्चों को के बारे में कितना कुछ सोचती है, कितना करती है। उस आंगन में नन्ही सी चिड़िया की तरह फुदकते हम कब बड़े हो जाते पता नहीं चलता। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहो, लाख पैसा कमा लो, पर अपना घर अपनी माँ हमेशा दिल में रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने भी। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, पर मैं आपको अगला गीत

सौंपना चाहती हूँ। ये बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा गीत है। बस बता दीजिए, माँ के लिए इतना प्यारा लिखने वाले गीतकार कौन है, इस गीत को लिखने वाले गीतकार कौन है, ये नाम बस बता दीजिए। और अगर आपके मन में कोई पहेली आ रही है तो वो हमसे जरूर साझा कीजिएगा।

अपनी माँ के साथ जाते हुए बच्चों को एक सुंदर सी घोड़े की टाप के संगीत के साथ रोशन ने संगीतबद्ध किया इस गीत को। मन्ना डे और महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज के साथ इसे गाया। दादी माँ फिल्म से लिया गया यह गीत है। और हमने आपसे पूछा था कि इतना सुंदर गीत रचा किसने, यह जरूर बताएं उस गीतकार का नाम। तो सच में इतने सुंदर गीत को रचने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को धन्यवाद बनता है।

माँ के प्रति समर्पित हमारी भावनाओं को हम तक, हमारा वहां तक पहुंचाना। अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है कि इस गाने की शूटिंग उदयपुर में हुई थी, हमने वो रास्ता देखा है। अरे वाह, इसके साथ ही हमने आपसे जो प्रश्न पूछे उसमें हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि फिल्म दादी माँ का गीत है और मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है। बिल्कुल सही, हमारे श्रोता ने लिखा है, कहते हैं तेरी शान से ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। बिल्कुल, माँ का, माँ के बिना तो ईश्वर भी स्वयं को ईश्वर कहलाने के लिए इस धरती पर नहीं आ सकते, उन्हें भी उनकी आवश्यकता होती है। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि हाथ दुआ वाले सदा रहते हैं सदा सर पर, तू है तो अंधेरे पथ में भी, सूरज की जरूरत क्या होगी। बहुत खूबसूरत गीत हम सब ने अभी सुना और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने कुछ बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हमारे बीच में लिखी हैं और कुछ पहेलियां लिखी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, उन्होंने बताया तीन तीतर, चलो बढ़िया बात है। पर हमारे एक श्रोता ने एक और प्रश्न छोड़ दिया है, अब उसका उत्तर मुझे भी नहीं पता, शायद आपको पता हो, और अगर सही होगा तो हमारी ये श्रोता आपके उस पर जाकर अवश्य बता देंगी कि आपने सही उत्तर दिया या नहीं इस पहेली का। काले रंग का प्राणी हूँ, उजाले के साथ में रहता हूँ, रात के अंधेरे में छुप जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। अब ये प्रश्न आपके बीच में हमने हमारी श्रोता का रख दिया है कि काले रंग का प्राणी हूँ, उजाले के साथ में रहता हूँ, रात के अंधेरे छुप जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। चलिए इसका उत्तर आप ढूंढिए। इसके साथ ही हम चलते हैं अगली पहेली की तरफ। फूलों की गलियों का मैं मुसाफिर अनजाना, आज की इबारत में हमने लिखा है कि फूलों की गलियों का मैं मुसाफिर अनजाना, गुनगुन मेरा गीत ना कोई शब्द पुराना, श्याम वसन ओढ़े फिरूं मधु की खोज में, बताओ कौन हूं मैं जिसका घर है हर बाग में। हम जानते हैं आप सही उत्तर दे चुके हैं और इसका उत्तर आपने दिया है बहुत अच्छे से, भंवरा। और जब भंवरे की बात चल रही है तो हमने हमारी श्रोता की वो पंक्तियां भी आपको सौंपी हैं और ये गीत भी हम आपको सौंप रहे हैं। बस इतना बता दीजिए इस गीत के संगीतकार कौन है, और अगर आपकी कोई पहेली है जो बड़ी सुंदर सी है तो हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा।

0: देखिए, हम सुन रहे थे ये बढ़िया सा गीत, और इस बढ़िया से गीत में हमने आपसे पूछा था कि बताइएगा इसके बारे में, और आपने बड़े अच्छे से उत्तर हमें दिए हैं। हमारे श्रोताओं के उत्तर सुनते सुनते बड़ा आनंद आ रहा है, पढ़ते पढ़ते बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत सारी पहेलियाँ हमारे बीच में आ रही हैं और उन पहेलियों के साथ बड़े प्यारे जज्बात भी आ रहे हैं। और हम ये जो गीत सुन रहे थे वह आज और कल, आज और कल फिल्म से सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल, और जो प्रश्न है वो शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। इसके साथ ही हमने आपसे पूछा था तो हम आपका उत्तर काले रंग की परछाई है, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए देखते हैं उत्तर सही है या नहीं, आप अवश्य देख लीजिए। अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, लेकिन उस गीत के पहले हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से लिखा है कि फिल्म कल आज और कल का सदाबहार गीत भंवरे की गुंजन, हसरत जयपुरी के द्वारा रचित, किशोर कुमार द्वारा गाया गया एक मधुर रोमांटिक गीत है। बिल्कुल सही बात है, आपकी प्लेलिस्ट से भी गाने बच जाते हैं, इस बात की हमें बड़ी खुशी होती है, उसका भी आपको बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता ने लिखा है, दो लड़के लड़ते जाएं, उनका खेल बढ़ते जाए। इसका उत्तर उन्होंने बताया, स्वेटर बुनने वाली दो सलाइयाँ। हाँ, माँ जब स्वेटर बुनती थी तो कुछ ऐसे ही बुनती थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से उसका उत्तर भी दिया है, हमने जो आपसे पूछा था। हमारे एक और श्रोता ने बोला है कि एक गुफा में 32 चोर हमेशा करते आपस में शोर, बताइए इस पहेली का उत्तर। तो इस पहेली को उत्तर सहित हमारे एक और श्रोता पहले ही बता चुके हैं, इसका 32 चोर होते हैं हमारे दांत। इसका उत्तर हमको पता है। इसके साथ ही हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसका उत्तर सहित बता दें, क्योंकि हम तो बड़े अनभिज्ञ व्यक्तित्व हैं, तो अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, वो कौन है जिसकी परछाई नहीं होती रास्ता। अच्छी बात है, ये भी बढ़िया बात आपने कही है। इसके साथ जब हम आगे बढ़ें तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पहेली पूछना और समझना एक दिमागी विकल्प है, आज के समय में हर इंसान पहेलियों में उलझा हुआ है। बहुत बढ़िया, हमारे एक श्रोता की एक संवेदना हम आपके साथ साझा नहीं कर पाए जो पिछले गीत के लिए उन्होंने की थी, कि हजारों गम हो मेरी जिंदगी में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां माँ साथ हो वहां कोई भी दुख ठहर नहीं सकता, लिखूं जो माँ पे तो स्याही कम पड़ जाए, वो एक हस्ती है जिसके आगे सारा जहान भी झुक जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे श्रोता ने एक बढ़िया सी पहेली लिखी है कि वो कौन है जो पूरे गाँव में घूमती है पर मंदिर नहीं जाती। उन्होंने लिखा, चरण पादुका। कटोरी के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, कौन होता है? बताइएगा जरूर। इस पहेली का अर्थ आपको बताना है, उत्तर बताना है। बचपन की पहेली है जो हम सुनते आए हैं, कटोरे के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। इस पहेली का उत्तर आप बताइए। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, ये गीत के साथ इसकी पहेली भी हम आपको सुनवा देते हैं। तो ये पहेली है कि नन्ही सी मैं उड़ती जाऊं, चीची करके गीत सुनाऊं, पेड़ों पर मैं घर बनाती, पूछो कौन कहलाती। और इसका उत्तर है चिड़िया। जब चिड़िया पर मैं आपको ये सुंदर सा गीत सुनवा रही हूँ, और इसके पहले मैंने भंवरे पर आपको गीत सुनवाया, हम मान लें तो मधुमक्खियाँ और जो भी फूलों का रस चखती हैं उन सबको अगर इसमें हम जोड़ लें तो ये सब जीव खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, इनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं विचार कीजिएगा। और गर्मियों के दिन है, चिड़ियों के लिए दाना पानी तो ज़रूर डालिएगा। गायक का नाम बताइएगा।
1: सुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

हाथी मुन्ने का हाथी मुन्ने का हाथी सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा मोर भी आया कौवा भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया

चुन चुन करती आई चिड़िया, ये गीत तो बड़ा सुंदर सा है जो हम सुन रहे थे। ये फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, दत्ताराम का संगीत है। और हमने पूछा था कि आवाज़ किस गायक की है, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे हैं, इस गीत के साथ एक शिक्षा तो मिलती है कि ये छोटे छोटे जीव हैं और हम इतने बड़े बड़े मनुष्य, छोटे जीवों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर विचार करते हैं और उन जीवों को बचाते हैं। क्योंकि अगर ये जीव नहीं होंगे तो ये बड़े बड़े मनुष्य भी समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये प्रकृति ये विज्ञान कहता है। तो चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारी पहेलियां भेजी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता ने पंजाबी कहावत पहेली भेजी है कि गुड़िया विच तकतेनी परने सड़ गए थे कुंवारे अखतेनी, शादी की इच्छा रखने वाले ऐसा कुछ कहते हैं। और एक बहुत अच्छा उन्होंने पहेली भेजी है, बूझ मेरा बुझक का सुंदर लाल मेरा सक का सुंदर लाल मेरा भाई मैं सदा कुछड़ पाई। इसका उत्तर उन्होंने घड़ा या मटका दिया है। हर भाषा में अपने अपने अलग अलग बात आ जाती है ना। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लिखा नहीं जाता पर पढ़ा जाता है, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कहा जाता है, आंखें इसे देखकर नम हो जाती हैं, बताओ वो क्या है जो दिल को छू जाता है। तो उन्होंने इसके दो उत्तर दिए हैं, पुरानी यादें या एक भावुक पत्र। बहुत बढ़िया, बड़ी मजेदार सी बातें भी आई हैं। ना खून का रिश्ता है ना घर का नाम, फिर भी रहता हरदम साथ। और इसका उत्तर उन्होंने दिया है, सोशल मीडिया। जी, इसके बिना तो जीवन चल ही नहीं रही है, इसके साथ ही जीवन चलता नहीं है, जीवन रुक जाता है, ऐसा हम मान के चलते हैं, पर चल सकता है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, ये जो जेब में रहता है काम में आता है, बाजार जाके शॉपिंग भी करवाता है, आजकल वो स्मार्टफोन भी है, फोन भी हो सकता है, भाई इसके बिना कहाँ रहा जाता है। जी, आपकी इस बात को भी हम मान लेते हैं। एक पहेली है जो हम आपको सौंप रहे हैं, और हमने इसके पहले आपको सौंपी थी कि कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, तो आपने सही उत्तर दिया नारियल। अब एक पहेली सौंप कर मैं बस आपको एक संदेश सुनवाने वाली हूँ। वो पहेली है, हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। इसका एक हिंट दे देती हूँ, अरे बड़े शौक से इसे कोयले पर सेक कर उसमें नींबू और दही घी लगाकर नमक लगाकर हम बड़े चाव से खाते हैं। बताइएगा, तब तक सुनिए ये संदेश।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर, और सुरीला सफर कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं बहुत सारी पहेलियां। और अगली पहेली आपको सौंपने से पहले, पिछली पहेली जो हमने यूं ही बूझी थी, उस पहेली का हरी थी मन भरी थी। इस पहेली का जो उत्तर हमने आपसे पूछा था, उसका उत्तर आपने दिया है भुट्टा। बिल्कुल सही बताया आपने। और इसके साथ ही हम कई सारे और प्रश्नों के साथ चल रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न दिया, मुझे पहेली बस का उत्तर पता नहीं होता है, तो मैं पहेली बताती नहीं हूँ, मैं भी थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ। जी चलिए, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जहाँ जितने ज़्यादा पेड़ पौधे फूल होते हैं वहाँ चिड़िया पंछी भंवरे तितलियाँ दिखते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना सारी समस्याओं, बहुत सारी समस्याओं का हल है। आपने बहुत अच्छा हल बताया है और हम सबको ये हल मानना चाहिए। और अभी मौसम भी आ रहा है, जैसे ही बरसात का मौसम आता है, ऐसा कहा जाता है कि बरसात के मौसम के कुछ 10-15 दिन पहले गड्ढा खोद देना चाहिए ताकि ज़मीन जो है वो सूख जाए, एक कीट रहित हो जाए, और उसके बाद जब वह गड्ढा सूख जाता है 10-15 दिन में, तो फिर उसमें पेड़ लगा देना चाहिए और पानी डाल देना चाहिए, और धीरे धीरे बारिश आएगी, बरसात स्वयं उसको पानी देती रहेगी और 4 महीने में वो हरा भरा हो जाएगा। तो अभी ये काम कर सकते हैं, मौसम आ गया है, गड्ढा खोदने की शुरुआत कर दीजिए। हमारे श्रोता ने लिखा है, हवा में उड़कर आती हूँ, बिना छुए दिल को छू जाती हूँ, मेरी हर सुर में कहानी है, विविध भारती की मैं रानी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। और उन्होंने उत्तर दिया है, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का सुरीला सफर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में हम सब छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, तो रात को सब अपने बिस्तर पर लेटे लेटे पहेलियाँ बुझा करते थे, और हमारे बड़े भी हिस्सा लेते थे, और उनमें से एक पहेली, पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ। हाँ, इसका उत्तर उन्होंने बहुत अच्छे से दिया, पानी में रहता है मगर। पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ, तो मगर रहता है पानी में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खामोशी और मौन दोनों ही, एक श्रोता ने पूछा कि अच्छा आपने इसका उत्तर दे दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि बोलते ही क्या टूट जाता है, तो उन्होंने कहा खामोशी और मौन टूट जाता है। बिल्कुल सही। चलिए अब हम चल रहे हैं कि अब बड़ी खूबसूरती के साथ में अगले गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगली जो इबारत में से जो कवि पहेली है वो हम आपको सौंप रहे हैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू सपनों का स्वर, बताओ कौन हूं मैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू सपनों का स्वर, बताओ कौन हूं मैं। और इसका उत्तर है घर। और सुनते हैं ये घर का गीत, बस बता दीजिए कौन सी फिल्म का गाना है। और इसके साथ ही आपके जो पहेलियों के किस्से हैं, या किसी ने आपसे कोई पहेली पूछी है, या आपके परिवार में सबसे बढ़िया पहेलीकार था कौन, जो बड़ा सताता था, जरूर बताइएगा।

हम सुन रहे थे ये गीत जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल और कुलदीप सिंह के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि ये गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। बिल्कुल सही उत्तर आपने यहाँ पर दिया है। और इसके साथ ही अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले, जो आपने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, सुझाई हैं, संदेश भेजे हैं, वह तो हमें आपको सुनवाने ही हैं। तो हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी है, दीप्ति नवल, फारूक शेख, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, फिल्म साथ साथ, बहुत बढ़िया।

हमारे श्रोता लिखते हैं, घर वो जगह है जहां आकर हमें सबसे ज्यादा सुकून और शांति मिलती है, सुरक्षित महसूस करते हैं और घर चाहे बड़ा हो या छोटा हमें आश्रय देता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज भी लोग रिश्ता करने जाते हैं तो घर देखते हैं, कैसी बड़ी बिल्डिंग हवेली, वर नहीं देखते पर वर के खूबसूरत बलवान कितना कमाता है, विचार क्या है ये देखना चाहिए। बिल्कुल सही संदेश आपने दिया। और हमारे श्रोता ने, हमने भुट्टे के बारे में पूछा था, उसे छल्ली भी कहते हैं, मक्की भी कहते हैं। अरे वाह, इतने सारे नाम हैं भुट्टे के, हमें भी पता पड़ गए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से चिड़िया या गौरैया को कम देखा जा रहा है। हमारे घर में चिड़िया का एक जोड़ा जहां हम दाना डालते हैं आता है, पिछले कुछ महीनों से दो जोड़े आने लगे हैं। उनके लिए मिट्टी का घर टाका है छज्जे पर और आज ही एक चिड़िया का जोड़ा उसका मुआयना कर रहा था। आशा है कि घर में घोंसला बनाए और उनकी संख्या बढ़ जाए, फिर से उनकी चहचहाट से मेरी आँख खुले और मेरा दिल दिन खुशनुमा हो जाए। कितनी बढ़िया बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि बिहार में जब लड़की की शादी होती है तो मायके में ही लड़का लड़की कोहबर में बैठने के लिए लाया जाता है। तब घर की सालियां दरवाजे से को घेरती हैं और दूल्हे राजा से गाने की कुछ लाइनें या कुछ पहेलियां पूछती हैं। पहले तो दूल्हे राजा गड़बड़ाते हैं, गाने की दो लाइन गा देते हैं, फिर उन्हें शगुन भी देना पड़ता है। ये सब प्रेम की बातें हैं ना। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में रीत के बहुत से घर बनाते थे, जब दो मंजिला घर बन जाता था तो बहुत खुश हो जाते थे, और वो दो मंजिला घर भी हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं होता था, और टूट भी जाता था तो हम फिर से बनाते थे, टूटते नहीं थे, है ना। अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जितना पास आए उतना कम दिखाई दे, और इसका उत्तर उन्होंने बताया, अंधेरा। आहा, क्या बात है। एक बचपन वाली पहेली भी हमारे पास में आई है, एक खड़ी एक पड़ी एक चमाचम नाच रही, बताओ कौन, और उसका उत्तर है रोटी, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। ये हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं, और इसके साथ ही हम चलते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। और वो जो पहेली है बड़ी सुंदर सी है, और इन पहेलियों के स्मृति दौर में हम चल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि हम अपना कहीं ना कहीं बचपन या हम अपने वो दिन जी रहे हैं जो हमने आज की तकनीकी युग में कहीं छोड़ दिए हैं। तो चलिए हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं, और हमने हमारी जो इबारत है उस इबारत में अगली पहेली लिखी है, जेब में रहता काम में आता, बाजार जाकर चीज दिलाता, सबको मेरी होती चाह है, बताओ मेरा नाम क्या है। और इसका उत्तर है पैसा या रुपया या धन। जी बिल्कुल, सबको चाहिए होता है, इसके अलावा इसके बिना कुछ काम होता नहीं है, लेकिन जब यही पैसा लालच बन जाता है तो इस लालच के कारण बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो पैसा जो है वह एक सोच और समझ के साथ आना चाहिए, और सोच और समझ के साथ संभालना भी चाहिए, है ना। चलिए मैं आपको अगला गीत सौंप रही हूं, आप बताइएगा कि आपको लालच आया था कभी पैसा देखकर। किसी उम्र में तो आया होगा, किसी के पर्स में रखा पैसा देखकर लगा होगा, काश इतना मेरे पास होता। अरे मैं अपना बता देती हूं, मैं तो बचपन में सोचा करती थी कि काश कोई बड़ा रईस आदमी आए, वो हमसे कहे चलो हम तुम्हें इस शहर में ले चलते हैं, बड़ा बना देते हैं। बैठे बैठे बड़े बनने के ख्वाब सबके होते हैं, है ना, आपके भी होंगे, मेरे भी थे, पर बाद में सत्य का पता चला। चलते हैं अगले गीत की तरफ, बताइएगा ये गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे पापा कहते हैं फिल्म का यह गीत, और हमने पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया है, परंतु हम गीतकार जावेद अख्तर इसके हैं और राकेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हमारे श्रोताओं ने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही दिया कि कुमार सानू की इस आवाज़ को हम सुन रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था कि आप बताइए कि आपको लालच किस चीज़ का है, तो हमारी श्रोता लिखती हैं, मुझे तो पति के पॉकेट से मिलने वाले पैसे का लालच आज भी है। जब भी उनके कपड़े धोती हूँ मेरी नज़र पॉकेट पर ही रहती है, कुछ सिक्के भी मिल जाए तो खुशी होती है, वो नोटों की गड्डी से भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही है, और ये तो हमारा अधिकार में भी आता है ना जी। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक ना गिरे। इसका उत्तर मुझे पता है, आपने उत्तर नहीं दिया था लेकिन मुझे पता है, आसमान। और मैं आपको अगली पहेली सुनाने से पहले एक पहेली दे रही हूँ। मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे, मैं हरी मेरे बच्चे काले है ना, और मुझे छोड़ मेरे बच्चे खाले, बताइएगा ये कौन है। मैं हरी हूँ मेरे बच्चे काले हैं, मुझे छोड़ दे और मेरे बच्चों को खा ले, ये उत्तर है, इसका उत्तर आपको देना है। और इसके साथ ही अगली पहेली हम आपके बीच में पढ़ने वाले हैं, और अगली पहेली के साथ में जो अगला गीत है उस अगले गीत के गायक कलाकार का नाम भी आप बता दीजिएगा। हम आपके बीच में बस इस पहेली को पढ़ देते हैं। न खून का रिश्ता है न घर का नाम, फिर भी रहता हरदम साथ, हंसाए खिलाए दुख भी बांटे, बताओ कौन है इतना खास, और वो होता है दोस्त। चलिए इस दोस्ती के नाम ये गीत, बताइए गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का मैं था यह गीत। और आपने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उन सब संदेशों को हम पढ़ देते हैं जल्दी से। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे, पांच भाई एक साथ, घूसा मारता है भात भी खाता है, पांच उसके साथ हैं दोनों मिलकर करते हैं नमस्कार, बिल्कुल सही, और दोनों हाथ का पंजा इसका इन्होंने कहा है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाइए, इनकी भावना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं जब भी लॉटरी वॉटरी की टिकट रखती है तो उनको लगता है कि विदेश यात्रा मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। देखिए लालच तो सबको होता है, पर ये लालच कोई थोड़ी सी भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को अपन देख सकते हैं। अब मैं अंतिम पहली की तरफ जा रही हूं। सागर जिसके चरण पखारे, हिमालय जिसका ताज कहाए, अनेक भाषाएं अनेक रंग, बताओ वह देश कौन सा कहलाए। और हमारे देश का नाम है भारत, भारत, भारत। यह अद्भुत देश जो बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, और जिसका ताज, जिसके सर पर मुकुट है हिमालय जैसा, और जिसके चरण प्रतिदिन पखारे जाते हैं समंदर से, ऐसा देश माँ के अलावा और क्या हो सकता है। ये गीत मैं आपको सौंपती हूँ, और बताइएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, और पहेली वाला कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। बड़ा मजा आया होगा मुझे ऐसा लगता है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है। पिछले एक वर्ष में विकास को गति देने और नागरिकों के जीवन को अधिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहले की गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने अथक प्रयासों से राष्ट्र और नागरिकों की सेवा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 सालों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। राज्य में नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बिहार लोक भवन से जारी आदेश में कहा गया है कि नए दिशा निर्देश तय होने तक प्रखंडों में स्थापित होने वाले डिग्री कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों के चयन अथवा नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। राज्य सरकार वैश्विक बिहारी समुदाय को प्रदेश के विकास, निवेश और नवाचार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा आज पटना स्थित टेक्नोलॉजी भवन में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार यह प्लेटफॉर्म

देश विदेश में बसे बिहार मूल के लोगों को राज्य की विकास यात्रा, निवेश अवसरों और ज्ञान साझाकरण की पहलों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। एशिया कप अंडर 18 हॉकी ट्रॉफी की विजेता भारतीय टीम के गोलकीपर सावन कुमार का आज पटना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सावन कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिहार का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि सावन कुमार पटना स्थित आरके राय अकादमी में प्रशिक्षण लेते हैं। प्रदेश का अधिकतर हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 45.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डिहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना, गयाची और औरंगाबाद का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भौंड बालू टोल स्थित चालान सेंटर पर अपराधियों ने हथियार के बल पर 8 लाख रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने 2 कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। सहरसा के जिला शिक्षा विभाग कार्यालय भवन के 3रे मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। सुपौल के भपटियाही थाना क्षेत्र के बनेनिया कोसी घाट पर एक नाव असंतुलित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी नौ सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। शेखपुरा उपभोक्ता संरक्षण फोरम के जज रमन कुमार ने इंडियन बैंक शेखपुरा के शाखा प्रबंधक और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोलकाता के शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। मेडिकल क्लेम नहीं देने के मामले में दायर याचिका पर फोरम ने यह आदेश सुनाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: बसे बिहारी नजात के लोगों को रियासत के तरक्याती सफर, सरमायाकारी के मौके और नॉलेज शेयरिंग की पहल से जोड़ने का मजबूत जरिया बनेगा। मरकजी हुकूमत ने वज़ीर आज़म उज्ज्वला मनसूबा के तहत सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की सालाना हद 9 से घटाकर 4 कर दी है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी परवीन मन खनूजा ने बताया कि साल 2016 में शुरू किए गए इस मंसूबे के तहत मुस्तफिदीन को हर साल 12 रसोई गैस सिलेंडर दिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि तरमीम शुदा हद मुस्तफिदीन की औसत सालाना गैस खपत के करीब है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी ट्रॉफी की फातह भारतीय टीम के गोलकीपर सावन कुमार का आज पटना पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। वजीर खेल शरेसी सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि सावन कुमार ने बैनुल-अक़वामी स्टेज पर बिहार का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि सावन कुमार पटना वाक़े आरके अकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं। रियासत के बेशतर खित्ते शिद्दत की गर्मी की जद में हैं। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 43.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत के साथ रोहतास का डेहरी रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा। पटना, गयाजी और औरंगाबाद का दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान दर्ज हरारत में कोई खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। वहीं रियासत के शुमाली और जुनूबी हिस्सों में कुछ मकामात पर बारिश की पेशगोई की गई है। जमुई जिला के खैरा थाना इलाके के तहत भोंड बालू घाट वाके चालान सेंटर से जराइमकारों ने असलहे की जद पर 8 लाख रुपये लूट लिए। लूट की मुखालिफत करने पर जरायमकारों ने दो मुलाजमीन पर हमला करके उन्हें संगीन तौर पर जख्मी कर दिया। सहरसा के जिला एजुकेशन महकमा दफ्तर इमारत की तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आतिशजदगी के वाकये में लाखों रुपए कीमत की इमलाक खाकिस्तर हो गई। सुपौल के भपटियाही थाना इलाके के बनेनिया कोसी घाट पर एक कश्ती बेकाबू होकर पलट गई। मकामी लोगों की मदद से कश्ती पर सवार सभी लोगों को महफूज तौर पर निकाल लिया गया है। शेखपुरा सारफीन तहफ़ फोरम के जज रमन कुमार ने इंडियन बैंक शेखपुरा के ब्रांच मैनेजर और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोलकाता के ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया है। मेडिकल क्लेम नहीं देने के मामले में दायर अर्जी पर फोरम ने ये हुक्म सुनाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा हो या ओ लेवल या सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित

विस्तृत जानकारी के लिए www.indianrailways.gov.in से जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC CGL 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक अप्रेंटिस के कुल 7,150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। रोजगार सूचना समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में दोपहर समाचार का प्रसारण होगा, प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ

0: एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क योजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे
2: स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है।

0: योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का और 5 रुपए का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा

0: उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12 लाख हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम

0: मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहाँ पहुँचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे बड़ा आदमी फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं डाक फिल्म से यह गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल है, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो

0: चिंतामणि जैसा पत्रकार
1: वो
0: था।
1: हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम सुन रहे हैं।

0: हम हिंदुस्तानी फिल्म से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोलों से सजे हुए उषा खन्ना के संगीत के साथ संगीतबद्ध इस गीत को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: आपके जीवन में।

0: घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। मॉडर्न गर्ल इस फिल्म का यह गीत सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में गुलशन बावरा के बोल और रवि के संगीत के साथ आइए सुनते हैं।

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है घराना फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और रवि का है संगीत।

हम सुन रहे थे भाभी की चूड़ियां फिल्म का यह गीत आशा भोसले, मुकेश की आवाज में महेंद्र नरेंद्र शर्मा के बोल और सुधीर फड़के ने इसे संगीतबद्ध किया। इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली।

0: सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी बहुत सारी सखियों सहेलियों और अन्य सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार
2: और मेरा भी अपने सभी जो भी सखियां हैं जो भी सखा हैं सभी सभी को सभी श्रोताओं को और चंचल जी आपको नमस्कार
1: आरती नमस्कार। हमारे सभी सुनने वाले बड़ी बेताबी से इंतजार करते हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम का और बहुत सारे श्रोता हैं जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं।

0: लेकिन कुछ होता है जो नहीं जुड़े
1: जी
0: हैं। तो आज किन विषयों पर हम बात करेंगे ये बता देते हैं। तो गर्मियों का समय है और पानी का बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे लोग अनायास ही
1: बिल्कुल
0: बहुत सारा पानी खर्च कर देते हैं, तो किस तरह से इस पानी की बचत बहुत महत्वपूर्ण है, करनी चाहिए, क्यों जरूरी है, इन सब बातों पर हम
1: बिल्कुल।
0: चर्चा
1: और
0: करेंगे।
1: मौसम कोई भी हो, पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और पानी के बारे में आप हमें भी बताइए, आप किस तरीके से पानी की बचत करते हैं आप खुद,
0: जी
1: और लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं इस चीज़ के लिए।
0: जी
1: और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत जीनिया पर्सी मास्टर जी की, जो कि हैं संस्थापक हैं जीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस की। और साथ ही हम हल्की फुल्की बातों में करेंगे बहाना ऐसा कौन सा है जो अक्सर काम कर जाता है।
0: बिल्कुल, ये बात तो बड़ी कहते हैं ना कि एक रोचक भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए या सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई बहाना उनके पास में तैयार होता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और बहुत सारे लोग बहाने तो बनाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं कि नहीं ये
0: हाँ
1: झूठ बोल रहा है, बहाना बना रहा है।
0: जी,
1: लेकिन आप कैसे, कौन सा बहाना बनाते हैं जो कभी पकड़ा नहीं जाता है?
0: और कौन सा ऐसा बहाना है जो अक्सर काम आता है आपके, आपको सुरक्षित रखने के लिए?
1: बिल्कुल।
0: बहाने क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। और मुहावरे की आज हम एक बात करते हैं, तो आज हमने जो मुहावरा चुना है वो है आम के आम,
1: गुठलियों के दाम, क्योंकि वैसे भी
0: यानी
1: आम का मौसम है ना, आम
0: कि
1: खाए जा रहे हैं।
0: हाँ, तो दोहरा जो फायदा है उसकी बात होगी। लेकिन भाई, अब आम के आम गुठलियों के दाम तो जानकारी होगी, मनोरंजन होगा और
1: बिल्कुल
0: गीत भी होंगे।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, मैं ये कहूंगी अपने जो भी श्रोताएं, सखियां हैं, जो भी सखा हैं, कि आप उसमें आम के आम जो गुठलियों के दाम मुहावरा है ना, खाली इसका अर्थ ही मत लिख के भेजिए,
0: जी
1: क्योंकि अर्थ तो चलिए हमने समझा, आप थोड़ा सा उसके बारे में और रोचक बना के भेजिए उसको।
0: बिल्कुल, सुनने से ही पता लगता है कि दोहरे फायदे की बात हो रही है, तो उसका अर्थ तो सभी जानते हैं, लेकिन आपके जीवन में दोहरा फायदा किस तरह हुआ? मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम।
1: और आपने किसी को ऐसा
0: जी
1: दोहरा फायदा पहुंचाया हो तो वो भी बताइए,
0: तो भाई, कार्यक्रम में कैसे होते हैं आम के आम गुठलियों के दाम?
1: गीत सुनने से।
0: जी।

0: तो कोरा कागज यानी कि बहुत सारी चिट्ठियां पहले हमें मिला करती थी, लेकिन अब हमें संदेश मिलते हैं हमारे सुनने वालों के।
1: और अभी हम जो सेगमेंट सबसे पहले लेने वाले हैं वो है हमारा सखी विशेष, यानी अपने सखी विशेष के बारे में कुछ बातें बता,
0: हम बात करेंगे ज़ीनिया पर्सी मास्टर के बारे में।
1: जी, तो ज़ीनिया पर्सी मास्टर भारत की एक जानी मानी महिला उद्यमी हैं जो बिजनेस और फाइनेंशियल रणनीतिकार हैं। और ज़ीनिया एक व्यवसायिक परिवार से आती हैं, उनके परिवार का लॉजिस्टिक्स और बिजनेस क्षेत्र में लंबे समय से संबंध रहा है।
0: ज़ीनिया पर्सी ने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध गिलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और रेवेन्यू मैनेजमेंट में पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने लंदन में फिट्ज़ी विलियम इंस्टीट्यूट से इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया हुआ है।
1: और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुबई और अन्य स्थानों पर होटल इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने प्री ओपनिंग टीमों में भी काम किया जिससे उन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का व्यवहारिक अनुभव मिला। और साल 2013 में उन्होंने अपना फ्रीलांस इवेंट से शुरुआत की।
0: और इसे पहले ज़ीनिया इवेंट्स कहा जाता था। बाद में 1 अगस्त 2014 को उन्होंने अपनी कंपनी ज़ीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को आधिकारिक रूप में स्थापित किया। और ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और रणनीति साझेदारियों के क्षेत्र में कार्य करती है।
1: जी, उन्हें विशेष रूप से लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, कॉरपोरेट गवर्नेंस और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कामों के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी मुख्यतः वेडिंग प्लानिंग, कॉरपोरेट इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और डेस्टिनेशन इवेंट्स, लग्जरी गेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सेवाएं प्रदान करती है।
0: और उनका काम वी इन्वाइट यू, यू ओन इवेंट इस विचारधारा पर आधारित है, यानी ग्राहक अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद लें और बाकी व्यवस्था सब कंपनी संभाल लेगी। हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी सक्रिय हैं।
1: जी, वो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉमेडी क्लब और लाइव इवेंट्स में काम करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय की प्रेरणा मिली थी। और इसके बाद उन्होंने स्वयं का ब्रांड भी शुरू किया। ज़ीनिया सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं और पर्यावरण तथा CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें गतिविधियों में वो भागीदारी करती रही हैं।
0: ये रही बहुत अच्छी जानकारी उनके बारे में। और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली, और अब जो बातें होंगी वो होंगी पानी के बारे में, पानी की बचत के बारे में।
1: बिल्कुल, पानी, और देखो पानी का जो कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
0: पानी का कोई रंग नहीं है फिर भी हर एक की जरूरत है। कहते हैं कि जिंदगी अगर है तो पानी सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए।
1: और जितनी भी सोचिए सभ्यताएं बसी, जितनी भी हमने प्रगति करी, वो सब कहां, सिर्फ नदियों के किनारे बसी।
0: जी,
1: जिससे कि हमारे देखो जीवन के लिए जरूरी क्या चीज है, पानी। और अभी कुछ रिसेंटली हम लोगों ने अभी

0: खबरें भी सुनी कि किस तरह से पानी नहीं मिलने की वजह से 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये सोचिए, ये एक हमें जागरूकता का विषय भी है कि अभी से हमें चेत जाना चाहिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारे पास कल भी नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही बात है, जल है तो ही कल है। जिस तरह हवा बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन
0: जी
1: ज़रूरी है, वैसे ही पानी ज़रूरी है। और बहुत सारी नदियों में पानी का जल स्तर दिन पर दिन कम होता जा रहा है। कई बार हम पानी को प्रदूषित कर देते हैं,
0: जी
1: जिन जो हमारे पानी के स्रोत हैं उन्हीं को हम गंदा कर देते हैं। वहाँ पर जो कल कारखाने हैं उनसे पानी गंदा हो जाता है, या फिर हम जो प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं। हम
0: बिल्कुल
1: बहुत सारी जगहों पर जब घूमने जाते हैं, झील नदी समंदर के किनारों पर हमें जाकर बैठना तो बड़ा अच्छा
0: बहुत
1: लगता
0: बहुत
1: है,
0: अच्छा लगता है।
1: लेकिन वहाँ पर हम बहुत सारी गंदगी छोड़कर आते हैं।
0: बिल्कुल
1: लेकिन बात अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पानी जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है उसे हम किस तरह से यूं बेकार की चीज समझकर वेस्ट करते रहते हैं, और इसका खामियाजा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना
0: बिल्कुल,
1: पड़ेगा।
0: और लोग भुगत भी रहे हैं। सोचिए, एक जगह हमें अभी यहाँ पे अगर सहूलियत से पानी मिल रहा है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी के लिए लोग कितनी कितनी दूर तक चल के जाते हैं, और मतलब दो दो बूंद पानी के लिए तरसते हैं कि वहाँ पे अगर अगर उनको पानी एक घड़ा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं उस चीज़ को।
1: इसीलिए देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं कि पानी की बचत करना एक अच्छी बात है, फिर वो पैसा हो या पानी, इसके बिना सारी दुनिया है फानी। पृथ्वी पर बसे हर एक जीव के लिए पानी प्राथमिक जरूरत है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है और यही सबसे बड़ा गम है। इन्होंने जो बातें लिखी है ना उसे इस तरह तुकबंदी में जोड़कर बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं ये। इसे बचाने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं कि जल के बिना जल बिन जरूरी उपयोग बिना जरूरी उपयोग के इसे वेस्ट ना करें। पानी के बहते नल को बंद करना जरूरी है। वर्षा का जल का संचयन करना चाहिए जो साल भर तक शुद्ध रह सकता है। यदि
0: बिल्कुल
1: हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो जल बिन मछली जैसे तड़पती है वैसे ही कभी हमें भी तड़पना होगा।
0: बिल्कुल, और कह सकते हैं कि जल की हर एक बूंद में जीवन का विस्तार है। सूखी धरती की प्रार्थना का ये मधुर उपहार है। मत छीनो इसकी सांसें, मत इसका मान हरो, जल बचेगा तो ही जग में मानवता का श्रृंगार है।
1: बिल्कुल सही है आरती, क्योंकि जल ही जीवन है। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है वो कह सकते हैं कि पानी है।
0: जी
1: पीने के लिए, खेती के लिए, बड़े बड़े जो उद्योग चलते हैं उनके लिए, स्वच्छता रखने के लिए, भाई अगर हमें घर को अपने आप को स्वच्छ रखना है तो उसके लिए भी पानी जरूरी है, और
0: बिल्कुल
1: पर्यावरण संतुलन के लिए भी पानी जरूरी है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण और पानी का जो दोहन हो रहा है सबसे ज्यादा, उसके कारण जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल। और चंचल जी, सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है,
1: जी
0: ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। तो ये सोची कि अगर हम यहाँ पे अगर उस जल को ही खत्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहाँ बचेगा। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को जरा सा भी ना बर्बाद करें। जैसे छोटे बच्चे, उनको अकल नहीं है, तो अगर उस चीज को वो कर रहे हैं तो उनको समझाइए, सिखाइए।
1: जी
0: अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे जाके समझेंगे।
1: इसी पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत कैसे ना करें। कपड़े बर्तनों को धोया पानी कप पेड़ों में डालकर नल खोलकर कोई काम ना करें। मग्गे बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें जिससे पानी की मात्रा कम खर्च होगी। और इस समय गर्मी के मौसम में पंछी जानवरों के लिए भी पानी जरूर से रखें। पेड़ पौधे लगाएं, आसपास गड्ढे करें जिससे उनमें पानी का संचय हो सके, और छतरी रखकर टंकी को ओवरलोड किया हुआ पानी सीधा आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह निकासी करे हुए पानी को गड्ढों या पेड़ पौधों में छोड़ सकते हैं और पानी की बचत हम कर सकते
0: बहुत
1: हैं।
0: जरूरी है। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आंखों का पानी और धरा का पानी सूखना बड़ा ही दुखदायी होता है, जो अंदर तक दर्द के रेगिस्तान को जन्म देता है, और जहां फिर प्रेम का अंकुर पनपना मुश्किल हो जाता है, जीवन खतरे में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लोगों को पानी के लिए भटकते देखते हुए मन में टीस सी उठती है, परंतु एक बार बरसात हो गई तो लोग भूल जाते हैं और फिर वही पानी का अपव्यय शुरू हो जाता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है।
1: सही बात है, बारिश का जो मौसम है वो सिर्फ 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 4 महीने रहता है।
0: बिल्कुल
1: इसके बाद के जो 8 महीने हैं उसमें पानी नहीं बरसता। इसी पानी से हमें बाकी के 8 महीने निकालने हैं, इसीलिए बचत बहुत जरूरी है। लेकिन इस समय कार्यक्रम में गीत सुनना भी जरूरी है।
0: जी

0: तो अब हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट से बच सकेंगे। इसीलिए हमें जल है तो कल है के संदेश को अपनाकर पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी की बचत का महत्व तो बहुत ज्यादा है, हम कई तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि घर में नल को खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, मोटर लगाया है तो मोटर बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज सही नहीं है। इस तरीके से हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो कल को ये जल जो हमारा जीवन है ये हमारे आने वाले लोगों को पीढ़ियों को कैसे मिलेगा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमें कई तरीके से अपना सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें। अगर किसी के घर में टंकी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टंकी बंद करना भूल जाते हैं, तो उसको आप बंद करें सही समय पे जैसे करके, टाइमर लगाइए उसमें। और अगर किसी कोई इस तरीके के मतलब जो उन्होंने लिखी है इस तरीके की चीजों का पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं। घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये इन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद जो पृथ्वी का 70% पानी है वो जो 70% पानी है और मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो आप वही वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें, और अगर कोई नल टिप टिप करता रहता है तो उसको भी ठीक कराइए। उसको ऐसे ही नहीं कि आपने इसे छोड़ दिया, अगर कहीं आपको बाहर भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश।
0: बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है जब वो कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं तो नल चालू है, इधर कपड़ों पे वो साबुन लगा रही हैं या बर्तन को साबुन लगा रही हैं और पानी लगातार बह रहा है, तो उतनी देर के लिए जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं, नल का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप नल को बंद कर दीजिए। इसी तरह से कुछ पुरुषों की आदत भी होती है, जब वो सुबह सुबह शेव करते हैं तो इधर नल चालू है, यहाँ
1: चल रहा है,
0: उधर काम चल रहा है उनका, तो उतनी देर के लिए जब तक आप शेव कर रहे हैं आपको अपना रेजर नहीं धोना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं ना नल को। इसी तरह से महिला पुरुष बच्चे ये सबकी जिम्मेदारी है।
1: छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी पीते हैं तो हम पानी थोड़ा सा पानी पिए, दो घूंट पानी पिए और पानी बाकी फेंक दिया,
0: आधा ग्लास पानी पीते हैं और आधा फेंक।
1: पीने लायक पानी होता है, कितना कीमती पानी है उसको हम फेंक देते हैं यूं ही।
0: कई बार जब हम किसी समारोह में जाते हैं, किसी आयोजन में, उत्सव में जाते हैं, तो आजकल पानी की बोतल देने का सबसे ज्यादा चलन है, तो वहां भी आधी बोतल पी के आधी बोतल को हम फेंक देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप बची हुई आधी बोतल पानी को अपने पास ही रखिए ताकि

0: दोबारा जरूरत पड़ने पर एक नई बोतल का इस्तेमाल करने की बजाय आप उसी बोतल के पानी का फिर से इस्तेमाल कर सकें। और इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी पर अगर पानी नहीं होता तो ये अन्य ग्रहों की तरह सूखा और वीरान होता। पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी मांग है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत सीमित है और बढ़ती आबादी के साथ इसका संकट भी गहराता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाना पर्यावरण और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है, जबकि इसकी बर्बादी गंभीर परिणाम ला सकती है। घर में किसी भी नल या पानी से पाइप टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है, तो अगर सभी जागरूक हैं तो जो जागरूक नहीं है उन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि आजकल सभी घरों में वाटर प्यूरिफायर लगे हुए होते हैं और सबसे अधिक पानी की बर्बादी यहाँ होती है, तो कुछ लोग इसे संग्रहित करके पौधों में डालते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
1: बिल्कुल, अगर आप कपड़े धो रहे हैं या इस तरीके का पानी आपका बच रहा है या आपने सब्जियां धोई, तो वो पानी जो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अलग से आपको वहां पे पाइप लगा के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी होती है पाइप लगा के जब हम पानी डालते हैं।
0: इसी तरह से बहुत से लोग एसी लगाकर जब घर में रहते हैं तो उसके पाइप से जो पानी रिस कर धीरे गिरते रहता है और बाल्टी में जमा हो जाता है, तो उसको भी आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार छत या आंगन धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो इस तरीके की आप छोटी छोटी चीजें भी करेंगे ना तो बहुत सारा पानी बचेगा और बहुत जरूरी अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अब अगली जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा
0: क्या बात
1: तो इसलिए हम उस युद्ध को रोक सकते हैं होने से।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो उसके लिए हमें, क्योंकि अब देखिए खरीद के हमें पानी पीना पड़ता है, अगर हमें साफ पानी चाहिए तो जरूरी है पानी की बचत करनी।
0: तो बातें और भी बहुत सारी करनी है, लेकिन इस समय घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि लेते हैं छोटा सा अंतराल।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूं आरती श्रीवास्तव।
0: और हम बात कर रहे थे पानी की बचत के बारे में। तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं श्रोताओं से। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों को भी रोका जा सकता है। पानी की कम खपत से प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झीलों पर दबाव घटता है, जिससे जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जनसंख्या और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने से पीढ़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जब नहाते हैं तो ढेर सारा वो शॉवर चला के नहाने की आदत होती है ना, तो बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। अब तो उससे बाल्टी से नहाइए, मग्गे से नहाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि जो इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, वो भी रुकेगी। और साथ ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, जो वर्षा का जो जल होता है उसको भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिस तरह से वो बना के बताया गया, जिसे हमारे श्रोताओं ने भी बताया। इस तरीके से आप पानी की बचत ज़रूर करिए।
0: और जैसे कहते हैं जो चीज हमें फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कई बार उसकी कदर नहीं होती। जिस तरह से हवा हमें मिल रही है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें जहां से मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह से जब वर्षा का जल हमें कोई बिना कीमत चुकाए वो वर्षा जल हमें मिलता है, हम उसका संचय करते नहीं और बाद में वही पानी हमें खरीद कर लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहां जल संकट अति का बहुत ही ज्यादा है। वहां चाय की कीमत से ज्यादा पानी की कीमत होती है, ऐसा हमारे श्रोता भी लिखकर बता रहे हैं कि चाय या अन्य चीजें वहां सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन पानी वहां पर बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीद कर वो लोग लेते हैं।
1: और जब से मैं बताऊं कि मैंने तो ये चीज खबर सुनी तो सच में अजीब सा ही लगा। अब जब भी पानी

0: इस्तेमाल करती हूँ तो खुद ही एकदम से सचेत हो जाती हूँ, बस सोच के कि सोचो उस समय उन लोगों को सिर्फ एक दो बूंद पानी मिल जाती तो उनकी जान बच जाती। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, पानी का क्या महत्व है। जब तक हमारे पास बहुत पानी आ रहा है, हम पानी पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, और जब जिस समय कहते हैं ना कि अब पानी कटौती होने वाली है या
1: जी
0: पानी 2 दिन नहीं आने वाला, तब लगता है अरे यार अब कैसे होगा, अब का ऐसे काम चलेगा। तो हमें सोचना चाहिए इसी तरह से समय से, आप काम करना चाहिए कि अब पानी नहीं आए तो हम क्या करेंगे।
1: एक दिन की कटौती में अगर हम इतना परेशान हो जाते हैं, अगर ये कटौती पानी को बहुत जल्द स्तर अगर घट गया तो बहुत ज्यादा अगर होने लगी तो कितना हम परेशान होंगे।
0: बिल्कुल
1: उस परेशानी से बचने के लिए महत्व इसका हम बता रहे हैं। और अब सुन लेते हैं गीत।

0: क्या हुआ, जब एक किसान ने आम तो बेचे ही, आम बेचकर पैसे कमाए, लेकिन जो गुठलियां बच गई
1: हाँ।
0: वो एक नर्सरी को बेच दी ताकि नए पेड़ आम के लगाए जा सके। तो यानी कि जो मूल चीज है उससे तो आपने मुनाफा कमाया ही, लेकिन जो बची हुई चीज है उससे भी आपको मुनाफा मिला, दोहरा फायदा, दोहरा लाभ, डबल मुनाफा। इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम।
1: गुठलियों के दाम इसने ले लिए और खाली उसी ने नहीं लिए, पेड़ लगाने से सबको ही फायदा हुआ, तो बहुत अच्छी चीज है ये।
0: तो ये तो हमें कहावत है, लेकिन बहुत सारे इसी तरह से हम काम करते हैं कि दोहरा फायदा हमें मिलता है। तो हमारे श्रोताओं के साथ क्या अनुभव रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता हैं जो

0: कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है जिसका मतलब एक ही काम या किए गए प्रयास का दोहरा लाभ प्राप्त होना है। जैसे कि मैं ठहरा बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे लिए सखी सहेली सुनना और कमेंट लिखना समय जो प्रसार करने के साथ साथ मनोरंजन और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है। मतलब आम के आम और सखी सहेली के नाम।
1: हमारे श्रोता लिखते हैं कि आम दिन दिन हम रोज ही खा रहे हैं और गुठलियों को सहेज कर रख दिया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो इन्हें उगा देंगे। तो हो गया ना आम के आम और गुठलियों के दाम,
0: सच।
1: एक पंथ दो काज की तरह ही होती है ये कहावत।
0: जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और एक और हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि इसमें इसे अंग्रेजी में टू बर्ड्स विद वन स्टोन भी कहा जाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। मतलब एक ही मुहावरा है, उस मुहावरे को बहुत कई
1: हाँ,
0: कई तरीकों से
1: एक
0: कहा
1: पंथ
0: जाता
1: दो
0: है।
1: काज, आम के आम गुठली के दाम और एक तीर से दो निशाने, लगभग एक जैसा ही अर्थ है इन बातों का।
0: बिल्कुल। और व्यवहारिक जीवन में इसको कहा जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पुरानी किताबें अच्छी कीमत पर बेच देता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। और व्यापार की बात करें तो जब कोई किसान आम बेचने के साथ साथ उसकी गुठलियों या छिलकों का उपयोग करके अचार, तेल या अन्य उत्पाद बनाने के लिए करता है, तो आम के आम और गुठलियों के दाम भी तो सच में एकदम सही बैठा कि
1: जी,
0: उन्होंने आम खाया और गुठलियों से उसके छिलकों से अचार भी बना लिया।
1: और आगे एक श्रोता का संदेश है कि ये मुहावरा हमें संसाधनों का सही उपयोग करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सीख देता है।
0: जी
1: दैनिक जीवन में जब किसी व्यक्ति को एक प्रयास से कई फायदे मिलते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुहावरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोकप्रिय भी है।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाषा की सुंदरता वृद्धि में मुहावरों और कहावतों का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ ही है उपभोक्ता के पूरे पैसे वसूल। वार्तालाप या कहानी लेख में विषय संग वस्तु का कोई संबंध नहीं रहते हुए भी वस्तु अपनी उपयोगिता, गुण और महत्वपूर्णता की उपस्थिति दर्ज करा ही देती है।
1: और हमारे श्रोता तैयार हो जाएं भाई अपने बहाने बनाने के लिए, जिन्हें वो अक्सर काम में लेते हैं, लेकिन तब तक एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, अक्सर हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए बहाने का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ बहाने मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी के द्वारा, कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ या 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, या अगर फोन नहीं उठाया तो क्या बोलते हैं, भाई मेरा तो फोन ही साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं देखा, या कहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कहीं अगर समय पे ना पहुंचे तो कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत मिल गया, और अगर समय पे ना पहुंचे या फोन भी नहीं देखा तो अगर मैसेज करने की बात हुई मैसेज करना भी भूल गए, अचानक से बहुत जरूरी काम आ गया, फोन की बैटरी खत्म हो गई, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारे बहाने हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है बहाने के बारे में, अब ये बात है पढ़ने वाली।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बहाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, सभी को उल्लू बनाना ये भी आसान काम नहीं है, अगर बहाने में वफाए हो तो तूफा भी किनारा है, वरना साहब के गुस्से से गिरती बिजली का नजारा ही नजारा है।
0: क्या बात है?
1: सामने वाला आसानी से विश्वास कर सके ऐसा बहाना बनाओ कि हम राहत की सांस ले सकें। ज्यादातर लोग तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहाने का उपयोग कब और कहां करना है ये सोचना चाहिए, नहीं तो आपके योग वियोग में बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये तो बहाना बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने का, जो बच्चे अक्सर बनाते हैं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए।
0: और बहाना जो अक्सर काम करता है, सबसे पहले तो बहाना विद्यालय में बच्चे होमवर्क नहीं करें और कहेंगे कि मैडम कर तो लिया लेकिन कॉपी घर पे रह गई, अब क्या कहें, और शिक्षक बहाना एक्सक्यूज, किसी काम करने के लिए बचने के लिए, अपनी गलती या छिपाने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए, ये एक कारण होता है, यानी कि अलग अलग तरह का बचाव है।
1: जब बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण मिलने लगे तो समझ लीजिए बहाना है।
0: बिल्कुल, बहानों का इस्तेमाल लोग स्थिति से बचने के लिए, टाल मटोल करने के लिए या असफलता को सही ठहराने के लिए करते हैं, जैसे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था, तबीयत खराब हो गई, बैटरी खत्म हो गई, कोई जरूरी काम आ गया, वगैरह वगैरह।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहाने जो अक्सर काम आते हैं, इस विषय पर एक बहाना ऐसा है जो हम सभी ने कभी ना कभी, बहुत लोग अक्सर करते ही हैं, और वो भी सटीक लग भी जाता है, और वो है फोन कॉल से संबंधित। अगर किसी अनचाहे का कॉल अटेंड नहीं करना हो तो सीधा सीधा बहाना होता है, अरे फोन तो चार्जिंग पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है, कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच से चल सकता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहाना ही है।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता तो सबसे बड़ा अच्छा बहाना होता था कि पेट दुख रहा है, और अक्सर बच्चे ये बहाना करते हैं। और आगे श्रोता लिखते हैं कि बहाना जो अक्सर काम आता है, तो ये कहूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दफ्तर ना जाना हो तब भी हम यही बहाना बनाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं जाना आना संभव ही नहीं है।
1: बिल्कुल, अक्सर होता है ऐसा। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहानों में हमारी श्रीमती जी का, हमारे जो श्रीमती जी है वो एक नंबर है, कुछ काम कहो तो बहाना बनाते हैं, तो मैं समझ जाता हूं कि, और वो स्वयं काम कर लेता हूं, और फिर वो कहती है मैडम अरे वाह तनिक थोड़ा धैर्य रखते तो हम कर ही देते, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बहाने, नोक झोंक, प्यार और स्नेह तो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमारी तारीफ भी करती है, भाई आप काम कर देंगे तो तारीफ तो आपकी होगी। वैसे अच्छी चीज है ये, इस तरीके का बहाना, और आप उनकी बात मान के थोड़ा बहुत काम करने का हाथ बटा देते हैं।
0: हमारे श्रोता ने लिखा कि बचपन में स्कूल जाने के नाम पेट दर्द का बहाना बनाया करते थे, पर मैंने एक बहाना अभी भी मारा है, मुझे सोशल मीडिया पर कुछ अटेंड करना था, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दिया कि मेरा पेट खराब है, लेकिन मैं पकड़ी गई और मुझे स्कूल जाना ही पड़ा, और उस समय सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए, वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी आ रहा था और वीडियो पर भी था, लेकिन मैंने ना दे दिया, और इसलिए सोशल मीडिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या किया था।
1: हाँ, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो आपने बहाना बनाया था।
0: जी,
1: एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के अपने अपने बहाने होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार लोग वही बहाना चुन लेते हैं जो उस वक्त उनको सही लगता है। और मेरे साथ भी एक मजेदार घटना हुई, मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसे विश करना था, सुबह तक तो मुझे उसका जन्मदिन याद था, लेकिन दिन भर की व्यस्तता में मैं उसे विश करना भूल गई, शाम को जब उसका फोन आया तो वो मुझसे थोड़ी नाराज थी, तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा अरे यार मुझे याद था, बस दिमाग से निकल गया, सच कहूं तो अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, या मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया, ऐसे बहाने हैं जो

0: से ज्यादा लोग कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं, मैं करती हूँ अक्सर। हालांकि कई बार ये सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच भी होता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कुछ बातें सचमुच दिमाग से निकल जाती हैं।
1: तो चलो अब एक गीत सुन लें।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती, तुमने कभी कोई बहाना बनाया है? बताओ मुझे।
1: बनाए तो बहुत सारे बहाने, मैं अक्सर बना लेती हूँ बहाने, लेकिन अभी मैंने बनाया था कि हाँ यही वाला कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था इसलिए मैं उठा नहीं पाई।
0: हाँ, ये जो है ना, फोन साइलेंट पे था, बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पे लगा था। आजकल क्योंकि जब कहते हैं ना भाई फोन करना भूल गए, तो ये बहाना तो हर कोई बनाता है, या हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई आ गया था,
1: बिल्कुल
0: ये भी
1: बिल्कुल।
0: बहाना बहुत होता है। तो अब बहानों की बात चली है तो बताए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि बहाने यानी दो तरह के होते हैं। इससे हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे किसी से अगर हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और किसी से मिलना चाहते हैं तो बहुत बहाने हम निकाल ही लेते हैं। बस बहाने की ही बात है, मिलना ना हो तो हम बहाने बनाकर मिलने भी जाते हैं, ना मिलना हो तो बहाना बनाकर टाल देते हैं, और यही बता रहे
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और एक हमारी श्रोता है जो लिखती है कि अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, वो लोग कहीं घूमने गए हैं, उनकी देवर की लड़की इतवार को मेरे साथ मेरे ही घर पर लंच करना चाह रही थी अपनी माँ के साथ, इतनी गर्मी हो रही है, मैंने बचने के लिए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ, इस तरह से मैं कहीं गई भी नहीं और घर में इतनी गर्मी में किचन में काम करने से बच गई, ये बहाना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा। लेकिन अब उनको पता चल गया होगा, उन्होंने सुना होगा
0: हाँ,
1: प्रोग्राम
0: अगर वो रेडियो सुनते हैं उन्हें रेडियो पर बात पता लग गई होगी।
1: कि आपने बहाना बनाया था खाना बनाने से बचने के लिए।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, तो एक तो बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल और बहुत खर्च भी वहां पर था, और कई बार बजट डिस्टर्ब ना हो जाए तो कई बार

0: बहाने बनाने पड़ते थे। जैसे एक बार बच्चों ने महंगी साइकिल लाकर देने को कहा तो मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरे मित्र ने अपने बेटे के लिए जो साइकिल खरीदी थी वो 15 दिन में ही टूट गई और वो यहाँ बन भी नहीं पाती है, इसीलिए फैक्ट्री में जाकर चीज़ लानी पड़ती है तो बहुत पैसे लग जाते हैं। और इसी तरह बहाना बनाकर बच्चों ने जब साइकिल मांगने की जो जिद थी वो छोड़ दी।
1: बहुत बढ़िया बात है। और देख, हम इस समय एक थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम पर भी हमारे जो एक सखी उन्होंने लिखकर भेजा है, कहती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें चूसने वाले आम बहुत आते थे, उसमें जब हम आम खा चुकते थे तो गुठली को मेरी दादी एक टीन के डिब्बे में इकट्ठा कर लेती थी। बाहर छत पर रखा डिब्बा बहुत दिन तक रखा रहता था और गुठली इकट्ठा होती रहती थी और फिर बरसात में भी भीगती थी। जब बहुत सी गुठली इकट्ठा हो जाती थी तो उसी डिब्बे में उबाल कर ठंडा होने पर गुठली को तोड़कर उसके बीज को नमक लगाकर खाते थे। यही हमारा मुहावरा बन गया कि मतलब आम तो खाए गुठलियां भी खाएं।
0: अचार में भी कई बार गुठलियों का प्रयोग किया जाता है और गुठलियों में बड़ा अच्छा तो स्वाद होता है लेकिन बहुत मीठा स्वाद होता है। हमारे पुराने फिल्मी गीतों में भी तो सुन लें गाना।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: दिल तो हमारा भी नहीं भरा अपनी सखियों से बातचीत करते करते,
1: बिल्कुल
0: लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें जाना होगा,
1: जाना ही
0: इसीलिए
1: होगा।
0: ये था इस कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत। लेते हैं विदा चंचल वर्मा,
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: की सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
1: सखी सहेली

सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही है जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था।

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
2: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है। अच्छा है
1: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जानना चाहेंगे, और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
2: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
1: अच्छा।
2: तो वहाँ पर मेरे वाले

0: साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदा हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफर है चेन्नई से वहाँ, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
1: अच्छा, लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से।
0: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफर हुआ करता था हर तीन साल, यू नो पोस्टिंग होती थी जो IAS ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज जो थी वहाँ से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। अच्छा। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं ख़त्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी मुझसे तीन बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी, मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूँगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास में। उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगु या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफर आया तो मेरी वालदा कहने लगी नहीं, अभी मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो मैं नहीं इजाज़त दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से ज़मींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है, और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, एक फिल्में कर ले तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया।
1: कुछ बोल याद है उस डांस के, जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
0: पूरे तो याद नहीं है। हेरुवा का साकारो रन्नो चिन्नन्ना आगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, आप तो बहुत सुरीली भी हैं। अच्छा, वो फिल्म कौन सी थी?
0: उसका नाम था रोजुलू माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज, विच लिटरली चेंज माय लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे, आपको पता है जब आपका गाना आता है और ख़त्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं, और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलके देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया, दोबारा फिल्म एक चल रही है कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे, उन्होंने कहा पॉसिबल है, क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड से पहले, मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज़्यादा कामयाब हुआ था वो गाना।
1: क्या कह रहे हैं।
0: और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हम हैदराबाद गए। तो वहाँ इत्तफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो काफ़ी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर। तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी, तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग। अच्छा अच्छा। तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने एक डांस किया है, वो बहुत कामयाब हुआ, और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुस्लिम लड़की होगी। बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो वो उर्दू बोल सकती है। तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं।

0: हालांकि है मुसलमान, केरला उस तरह मलयालम बोलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं। तो बोले आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे, वो स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था, तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूँ? तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके जरिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहाँ मुलाकात हुई। तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे, फिर चुप। कुछ खास कहा नहीं उन्होंने, ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुँचे तो इस चीज़ को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से, यू नो।
1: तो उसके बाद में आपको CID मिली?
0: CID पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो CID और प्यासे की बातें करें, उसके पहले हम वेदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना है और खासतौर से सचिन दा का जो म्यूजिक है उसका जवाब ही नहीं है। आप याद है जब आपने गुरदुत साहब के डायरेक्शन में पहली बार वो कैमरा फेस किया था, हिंदी की अगर हम बात करें, कौन सा दृश्य था, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, पहले तो सीआईडी बनी थी, उसके डायरेक्टर थे राज खोसला।
0: हाँ जी।
1: तो एक महीने दो महीने तो सिर्फ सीआईडी की शूटिंग हो रही थी, उसके बाद उन्होंने साइमल्टेनियसली दो तीन महीने के बाद प्यासा की भी शूटिंग शुरू हुई थी। और दोनों डायरेक्टरों में मैंने फर्क बहुत पाया, क्योंकि राज खोसला जो थे वो अच्छे डायरेक्टर थे फिल्मों में के लिए, मगर नए आर्टिस्ट को हैंडल करना उनको इतना नहीं अच्छा आता था। हालांकि गुरदत्त जी तो वो आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज़ की तकलीफ हो रही है, तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और राज खोसला थे कि ये ऐसे करना है, कर दिया, अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए, और चूंकि मैं नई नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी। यहाँ गुरुदेव जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है लगता है, क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे।
0: गुरुदेव साहब हाँ को कैसा डायरेक्टर मानती थी?
1: डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या का किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ।
0: उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है अपना, कौन सा सीन?
1: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के। ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा।
0: आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाने थे?
1: हाँ, एक्सप्रेशन लाने थे, और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी, मतलब और बढ़िया दिखती थी।
0: आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज के फूल का, ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग
1: हाँ
0: है, और इसकी मेलोडी जो है आज तक
1: हाँ
0: बहुत दिल को छू लेने वाली।
1: बिल्कुल,
0: क्यों नहीं ये गाना सुना जाए?
1: बिल्कुल क्यों नहीं।

0: वहीदा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ, तो आपकी क्या राय है?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं।
0: तो आपने कह दिया?
1: हाँ, मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा, बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज्यादा हेवी है, और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं, तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली,
0: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
1: नहीं, मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद चौदहवीं का चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म, फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहेब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया अप्रिशिएट, और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
0: अच्छा वैसे जी, साहेब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है, डायरेक्टर के रूप में नाम आता है अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शैडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है।
1: अभी देखिए अबरार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना, तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में, क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया जैसे चंद सीन्स थे जहाँ गुरदत्त जी नहीं थे तो उसमें गुरदत्त जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे, मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरदत्त जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए इस तरह से किया जाए।
0: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी।
1: बिल्कुल, जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया बंगाली नॉवल से, तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं, तो गुरदत्त जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल, तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा। तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं? तो बोले नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही, एक मैच्योर औरत का रोल है, जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पती जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत

शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल कर रहे हैं। नहीं बोले वो नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं, कुछ तो कोशिश तो करते हैं। तो उन्होंने वैसा गेटअप दे के स्टिल फोटोग्राफ्स लिए। लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे, वो हमने सब ने स्टिल्स देखी। मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं, गुरुदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप यू नो यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात। तो

0: देखिए मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तो मूर्ति साहब ने कहा, नहीं गुरुदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं आप, यू नो यू लुक वेरी यंग। कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। सो
1: इस फिल्म का शुमार भी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो?
0: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ उसके बाद गुरजीत जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो बात खत्म हो गई। तो जब अब्रार साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आके नहीं, देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करें। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी। तो गुरुदेव उन्होंने जाके गुरुदेव जी को बताया तो उनको ताजुआ, भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं 14वीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है, टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप? तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है जबा का रोल, डिफरेंट है, डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आप सोच लीजिए क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं अब्रार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूंगी, तो इसलिए मैंने किया।
1: तो इसका जिक्र चला है, क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो?
0: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी। मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि ना जाओ सैया छुड़ा के बैया।

0: उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बतौर, जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो एक ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, मायने रखती है, खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के।
1: नहीं, क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरदत्त जी इज मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर। तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करती है, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ। हाँ, इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर गुरदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे, जैसे CID बनाए, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूंगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं, अगर सादिक बाबू करेंगे तो वो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा,
0: क्या कहना
1: यू नो, और खासकर वो लखनऊ के हैं उस तरफ से, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरदत्त जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को।
0: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
1: नहीं, मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय ली जाए, अगर कोई गलत ऐसे लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं, एक चीज होती है फिल्मों में उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा।
0: देव साहब के साथ में कैसी ट्यूनिंग थी आप?
1: देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो CID में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बहुत ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, मगर वेरी नाइस, वेरी डिसेंट, और बहुत अच्छा था उनके साथ।
0: उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का?
1: हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में, तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर के आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो यूनिट पहले जा चुका था, तो देव मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे, देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए। नहीं, एक तो फॉग है, मैंने कहा हाँ फॉग तो है मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है, तो बोले मैं चश्मा लगा था, तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया, तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया, तो मैंने कहा अब क्या होगा, तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ, तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेड्रेस को पीछे बैठने दो, और तुम मुझे बताते रहना राइट में लेफ्ट में जाना है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है, फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। ओह, मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता, मैंने कहा अब तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है, और वो जो ट्रक्स आ रही हैं, तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा। अच्छा, आहिस्ता चलाइए, और कोई और रास्ता ही नहीं था। ओ, इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे तो एक घंटा देर पहुंचे, तो वहाँ यूनिट वाले परेशान, और विजय आनंद जो थे गोल्डी वो डायरेक्टर थे, वो पहुंचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को, तो मैंने कहा विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुंच गए, तो दैट वाज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था।
0: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गाना याद करिए आप?
1: खोया खोया चांद।

अब इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौदहवीं का चांद का, एक बड़ी, वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में थे, तो

0: वेदा जी, गुरली साहब का भी जिक्र आया और इसके पहले हमने बात की गाइड की और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्माए। वैसे गुरली साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना था?
1: या, या, या। आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था। उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया तो वो एकदम परफेक्ट था। तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, कुछ खंडर थे वहाँ पर, वो ऊंची सी दीवार थी, कुछ 6-7 फुट की और ज़्यादा चौड़ी भी नहीं थी और बीच में एक गैप था। तो वो कहने लगे आप इतनी खुश और इतनी, मतलब लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, मगर खुश हैं। तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जप कर जाती हैं। तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर, खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले 2-4 बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना। मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं। वैसा जी, उसमें आपने रोजी का एक करेक्टर किया था और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रूसी एक ऐसा करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी, ट्रेडिशनल इमेज, उसको तोड़ा उसने। वो विद्रोही उसमें रिबेलियस है। तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी।
1: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई, मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा

0: मतलब था, क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने सीएडी का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था. फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है. वो कैरेक्टर वैसा नहीं था, वो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी. रोजी का कैरेक्टर रोल लिया मेरे दूसरे डायरेक्टर्स, उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं. मैंने कहा क्यों? तो बोले एक तो रोजी नाम है और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है व्हाटएवर, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है. फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है. और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनालिटी के हिसाब से लिखी जाती है. ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम ऑब्वियसली. तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, तो सीता का क्या होगा. तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्लीप वॉकर चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया, जो तो इस जन्म में आप कह रहे हैं सीता को तो हर वक्त सीता के राम के साथ ही होना चाहिए. तो ये आर्ग्यूमेंट उनको अच्छा नहीं लगा, चुप हो गए. फिर भी मेरे ख्याल से गलत थी, आपकी गाइड जो है वो चलेगी नहीं और आपको बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा. मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा.
1: और दोनों ही फिल्मों ने इतिहास रचा.
0: Exactly.
1: आपको गाइड के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला.
0: बिल्कुल सही है.
1: कमल के लिए भी मिला.
0: बिल्कुल.
1: कभी आपको ऐसा लगा कि ये दो फिल्मों को अगर हम छोड़ दें, किसी फिल्म में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, कभी अखरा कि नहीं इसके लिए भी मिलना चाहिए था मुझे?
0: मुझे अपना रोल मुझे जीने दो में बहुत अच्छा लगा था. वो भी कंप्लीट कस्म का रोल था, उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के, कि एक तवायफ है उसको किडनैप किया जाता है, फिर उससे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो बच्चे की खातिर. सो देयर द इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन्स थे, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था. मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ. इट्स ओके.
1: डाकू की समस्या पर वो फिल्म थी.
0: हाँ.
1: सुनील दत्त साहब के साथ में.
0: हाँ जी.
1: और सुनील दत्त साहब के साथ में आपने खूब दौरे वाले भी किए फौजियों के साथ में, बीच में जाकर के खूब काम किया. उनके साथ में, उनकी ट्रूप के साथ में जाते रही ना.
0: तो उनका था एक अजंता आर्ट्स ट्रूप एंटरटेनमेंट समथिंग ऐसे तरह का. तो हम लद्दाख गए थे उनके साथ और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहाँ भी जाते जवान थे वहाँ, बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी होता था, यू नो. और काफ़ी प्रोग्राम वगैरह हमने किए. फिर बांग्लादेश वॉर के बाद वहाँ भी गए थे ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए.
1: तो ऐसा है कि कुछ देर पहले ही हमने मुझे जीने दो की बात की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है. उसका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो?
0: उसमें जयदेव जी का म्यूजिक था.

0: एक और आपकी बड़ी ऑफबीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा और शेर, और अमिताभ बच्चन साहब खासतौर से जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं उसमें उनको गूंगा बना दिया गया और इसमें जयवंत भी थे आपके साथ में, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रेशमा शेरा भी बनी, उसके आउटडोर्स खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मजा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे, और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी सात हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी, और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं और सब कहते थे थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से। तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो हैं होंगे ही, और जब पैकअप हो जाता था कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके एक दो शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो वो भागते हैं, तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहा तो बैठे गप्पे मार रहे हैं, मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो बोले कैसे, एक तो डायलॉग नहीं बिचारेगा, तुम किस हिसाब से कह रही हो। मैंने कहा नहीं, इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है, अगर इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डायलॉग साथ में, मैंने कहा उसके बाद उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, जब टॉकिंग डायलॉग आ मेन रोल मिल जाएगा, मेरे ख्याल से विल डू वेरी वेल। तो फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका।
0: मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा, और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से वहीदा जी हैं। और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है और उनकी माँ का किरदार भी अदा किया।
1: हाँ बिल्कुल।
0: कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको, वो जो शुरू में वो जो बात होती थी उस समय, बाद में तो सब कुछ बदल ही गया पूरा, उन्होंने साबित भी कर दिखाया, लेकिन आपका अनुभव कैसे रहा उनके साथ?
1: मेरा अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है आज तक, रेशमा शेरा से लेकर आज तक। और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव जो भी कहिए, उनके बच्चे जया सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है। और वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि बहुत बड़े स्टार हो गए, जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही है, मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही अच्छा है उनका।
0: दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म?

0: रेशमा और शेरा में वो न्यू कमर थे। एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन मतलब अमिताभ की वालदा सेट पे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रीटेक की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहां आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहाँ बैठी हैं आप सेट पे, आप जरा बाहर ताजी हवा खाइए। फिर कह लिए तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो। मैंने कहा क्यों, तुम कस के मारने तो मैंने कहा देखिए अगर मैं एक कस के मारूं तो वो शॉट खत्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक, फिर छह तमाचे पड़ेंगे उसको तो हंसने लगी। बोले नहीं नहीं अच्छा मैं जाती हूँ। फिर मैंने सुनील दत्त को कहा डायरेक्टर को, देखिए अगर तमाचा पड़ने से पहले कोई गलत पोजीशन मेरी या डायलॉग गलत बोल दिया कुछ भी हो तो पहले काट दीजिए, बेचारे को क्यों इतने तमाचे मारूं, पहले तो आंटी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया क्या कस के नहीं मारे, बाद में एक दिया मैंने बहुत कस के।
1: यहाँ हम रेशमा और शेरा जिसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है, कोई गाना हो जाए रेशमा और शेरा का।
0: रेशमा कैसा वो एक मीठी सी चुबन एक हाँ बहुत मीठा गाना बहुत अच्छा है।
2: एक मीठी सी चुबन एक ठंडी सी अगर

0: वहीदा जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, बियॉन्ड इट्स टाइम, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. कभी वो रोल देके ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, यू नो, जस्टिफिकेशन था. और एक था, दे वर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई

0: इंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है। और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज हम अपने लिए करना चाहते हैं। तो रोजी का पैशन था डांस करना, वो उसको मार्को से नहीं मिलता, तो उसको एंकरेजमेंट राजू से मिलता है। फिर एक पॉइंट आता है जहां सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं, अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। राजू कहते हैं नहीं, अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है। ये कहती है नहीं, मुझे बच्चे चाहिए। अरे बच्चे भी हो जाएंगे, इसकी क्या। उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना। वो कहते हैं कहाँ से जिम्मेदारी लें शादी बच्चों की। सो हर एक मौके पे, कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है। अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती, वो बन जाती है, फिर कहती है नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड। फिर उस वक्त राजू कहते हैं नहीं, अभी कहाँ सेटल होंगे। तो ये चीज जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था। सो यू नेवर फील जब आप मूवी देखते हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ए बैड पर्सन। नो, नोबडी इज बैड एंड नोबडी इज गुड।
1: देव साहब के साथ में और जो आपके नाम, क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ और। आपकी मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में, कैसा है उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खास उससे। एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, फिर एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं, कैसे थे वो।
0: जैसे मैंने कहा, वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके। तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए, तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी, तो कहने लगे मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो तुमको तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कर लेंगे।
1: इतना हक
0: हाँ हक जता रहे थे जैसे। तो बड़े कोऑपरेटिव, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती। जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफ़ी केयर लेते थे बहुत अच्छी तरह से। तो ही इज वेरी नाइस एज ए प्रोड्यूसर,
1: और एक एनर्जी से भरे हुए
0: बेहिसाब। मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ क्योंकि वो कभी थके, कभी मैं तो कहती भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर लें, तो वो तो कभी नहीं कहते थे। वो उतने, जब खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे, तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया, ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़, फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे, तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताज़ी शर्ट पहन के आते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के लिए। फिर वो हुआ, फिर उसको सुखाते थे, वो कहते थे, मैं कहते देव आप हमेशा ऑल द टाइम यू आर फुल ऑफ एनर्जी, सो यू आई will call you ever ready battery.
1: अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है, और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं, बेशक वो सफलता मिले ना मिले, लेकिन वो कारवां नहीं रुका है, उनका वो जज्बा अभी भी वैसे ही है, और फिल्में बनाए जा रहे हैं। तो अभी उनसे कभी फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है?
0: नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है, हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है। सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जो जौहर थे बेचारे, उनसे, उनके फैमिली से, वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि उनकी फिल्मों में तो यश जौहर के काम नहीं किया। हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जीनो दो में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम।
2: दोस्तों, वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें। आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया, लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी। भूलिएगा मत, अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम। हम आपको बता दें, वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा के प्रति ध्यान देने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल भू सीमा वाले देश में सीमा प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर बड़े पैमाने की पहली सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और बिजली खर्च में दीर्घकालिक बचत भी करेगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार राज्यों के साथ भी सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्ष में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ देश को मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र

0: बनाने की ओर अग्रसर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। भारत की विदेश नीति में पिछले 12 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें ब्रांड इंडिया और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में विकासशील और अल्पविकसित देशों की आवाज बनकर उभरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वो धार्मिक शब्दावली के जरिए अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना उल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया है। श्रीलंका के दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 36 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

युवाणी कार्यक्रम सुनिए शाम 5:30 पर। शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। भोजपुरी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के पटना केंद्र से हम रिले करेंगे शाम 6:05 पर। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे किसान वाणी।

भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत की प्रस्तुति होगी शाम 6:40 पर। शाम 7:15 पर आप सुनेंगे गुड इवनिंग रोहतास। प्रादेशिक समाचार, जिले की हलचल हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे शाम 7:25 पर। ई मनपसंद कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:50 पर। समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा रात्रि 8:45 पर। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत लोकधारा कार्यक्रम में। गज़ल का प्रोग्राम महफिल हम पेश करेंगे रात्रि 9:15 पर। 9:30 पर सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से रात्रि 10:00 हम प्रस्तुत करेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने का प्रसारण समय होगा रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11:00 हिंदी समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

ये एल्बम का ये टाइटल भजन अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज़ में। रवि चोपड़ा के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी अनूप जलोटा ने। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम में जुबिन नौटियाल के स्वर में ये कबीर अमृत बाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इसी के साथ वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है युवा दोस्तों के लिए हमारा कार्यक्रम युवा वाणी।

दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम में आज हम बातें करने वाले हैं विविधता में एकता का संदेश, बिरसा मुंडा का स्वतंत्रता संघर्ष

दोस्तों आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं विविधता में एकता का संदेश इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग एमोंग सिविलाइजेशंस। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जहां अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां, परंपराएं, वेशभूषाएं और खान पान की विविधताएं देखने को मिलती हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर क्षेत्र की अपनी अलग पहचान है, फिर भी हम सभी भारतीय एक सूत्र में बंधे हुए हैं। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम भारत की भाषाओं को देखें तो यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगाली, कोई तमिल, कोई तेलुगु, तो कोई मराठी या पंजाबी भाषाएं अलग हैं, लेकिन भावनाएं तो दोस्तों एक हैं। हम सभी अपने देश से प्रेम करते हैं और उसकी प्रगति के लिए कार्य करना चाहते हैं। इसी प्रकार हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य सभी समुदाय मिलजुल कर रहते हैं। हम एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेते हैं और खुशियां बांटते हैं। यही है भाईचारा, हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है।

इतना ही नहीं दोस्तों, भारत की सांस्कृतिक विविधता भी अद्भुत है। अलग अलग राज्यों के लोकगीत, लोक नृत्य, कला और परंपराएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाती हैं। राजस्थान का घूमर, पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा, असम का बिहू और झारखंड के आदिवासी नृत्य, ये सब

0: भी भारत की सांस्कृतिक सुंदरता को दर्शाते हैं। विविधता में एकता का अर्थ केवल साथ रहना नहीं है दोस्तों, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करना भी है। जब हम दूसरों की भाषा, संस्कृति और विचारों का सम्मान करते हैं, तब समाज में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनता है। यही भावना हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाती है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। देश के विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और धर्मों के लोगों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। सभी का लक्ष्य एक था, भारत को स्वतंत्र बनाना। यही एकता हमारी सफलता का कारण बनी। आज के समय में इस भावना को बनाए रखने की आवश्यकता है। कभी कभी समाज में भेदभाव, कट्टरता और आपसी मतभेद देखने को मिलते हैं। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि हमारी शक्ति हमारी एकता में है। यदि हम आपस में बंट जाएंगे तो विकास की गति धीमी हो जाएगी, लेकिन यदि हम एकजुट रहेंगे तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। युवाओं की इसमें विशेष भूमिका है। दोस्तों, नई पीढ़ी को यह समझना होगा कि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से सीखना और उनका सम्मान करना ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक के युग में हमें सकारात्मक संदेश फैलाने चाहिए और समाज में सौहार्द बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, विविधता प्रकृति का नियम है और एकता मानवता की शक्ति। भारत की यही विशेषता उसे विश्व में अलग पहचान देती है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहां अनेकता के बीच भी एकता का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। आइए हम सभी संकल्प लें कि जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करेंगे, प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देंगे तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखेंगे। और ये एकता, ये अखंडता मजबूत तभी बनेगी जब हम विविधता में भी एक होंगे। चाहे हमारा धर्म अलग हो, चाहे भाषा अलग हो, चाहे क्षेत्र अलग हो, हमें एक रहना है, तभी हमारा देश मजबूत रहेगा और हम भी।
1: नफरत

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: और अब आइए दोस्तों एक नजर डालते हैं बिरसा मुंडा का स्वतंत्रता संघर्ष विषय पर। आज हम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी आदिवासी समाज के गौरव और जननायक बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों बिरसा मुंडा का नाम भारतीय इतिहास में साहस, संघर्ष और सामाजिक जागरण के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित कर स्वतंत्रता की अलख जगाई। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 को वर्तमान

झारखंड राज्य के उलीहातू गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से संबंधित थे। उस समय अंग्रेजी शासन के कारण आदिवासी समाज अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था। उनकी जमीनें छीन ली जा रही थी, उन पर अत्यधिक कर लगाए जा रहे थे और उनकी परंपराओं तथा संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। श्रोता दोस्तों, बचपन से ही बिरसा अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और नेतृत्व क्षमता वाले थे। उन्होंने अपने समाज की पीड़ा को करीब से देखा और समझा। धीरे धीरे उन्होंने आदिवासी लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना शुरू किया। वे लोगों को एकजुट रहने, अपनी संस्कृति को बचाने और अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा देते थे। बिरसा मुंडा ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अंधविश्वास, नशाखोरी और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया। वे अपने अनुयायियों को स्वच्छता, शिक्षा और नैतिक जीवन का संदेश देते थे। उनके विचारों का आदिवासी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा और लोग उन्हें श्रद्धा से धरती आबा अर्थात धरती के पिता कहने लगे। अंग्रेजी शासन और जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध बिरसा मुंडा ने एक संगठित आंदोलन शुरू किया, जिसे उलगुलान या महान विद्रोह कहा जाता है। यह आंदोलन केवल आर्थिक अधिकारों के लिए नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी था। सन 1899 से 1900 के बीच उलगुलान आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हजारों आदिवासी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़े हो गए। उन्होंने लोगों से अपनी जमीन और अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया। इस आंदोलन ने अंग्रेजी प्रशासन को हिला कर रख दिया। अंग्रेज सरकार बिरसा मुंडा की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव से चिंतित हो गई। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके विचारों को दबाया नहीं जा सका। अंततः फरवरी 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर रांची जेल में बंद कर दिया गया। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में उनका निधन हो गया। हालांकि उनका देहांत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई, लेकिन उनके संघर्ष और बलिदान ने आदिवासी समाज में नई चेतना का संचार किया। उनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने पड़े। बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, अपने अधिकारों की रक्षा और समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि दृढ़ संकल्प और साहस के बल पर बड़ी से बड़ी शक्ति का सामना किया जा सकता है। आज बिरसा मुंडा केवल झारखंड या आदिवासी समाज के नायक नहीं हैं, बल्कि पूरे भारत के प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन युवाओं को राष्ट्रप्रेम, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। हम सभी बिरसा मुंडा के आदर्शों को अपनाने का प्रयास करें और उनके संघर्ष को याद रखने का संकल्प भी लें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। तो आइए, अब हम आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं क्रांति फिल्म का ये गीत।

दोस्तों आइए चलते चलते एक चर्चा करते हैं कुशल युवा कार्यक्रम पर, जो युवाओं को रोजगार योग्य बनाने और उनके कौशल विकास के लिए चलाया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण अभियान है ये। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में केवल शैक्षणिक डिग्री ही पर्याप्त नहीं है दोस्तों, रोजगार प्राप्त करने और कार्यस्थल पर सफल होने के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ साथ संचार कौशल, कंप्यूटर ज्ञान और व्यक्तित्व विकास भी आवश्यक है। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कुशल युवा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को ऐसे कौशल प्रदान करना है जो उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायता करें। श्रोता दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी, संचार कौशल तथा व्यावहारिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से तीन विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला है कंप्यूटर साक्षरता, जिसमें युवाओं को कंप्यूटर संचालन, इंटरनेट उपयोग तथा डिजिटल तकनीकों की जानकारी दी जाती है। दूसरा है संचार कौशल, जिसके माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी में प्रभावी संवाद करना सिखाया जाता है। और तीसरा है व्यावहारिक कौशल, जिसमें आत्मविश्वास, टीम वर्क, समय प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाता है। श्रोता दोस्तों, कुशल युवा कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह कार्यक्रम उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें आधुनिक कार्य संस्कृति के अनुरूप बनाता है। दोस्तों, आज डिजिटल युग में हर क्षेत्र में तकनीकी दक्षता की आवश्यकता है। ऐसे में कुशल युवा कार्यक्रम युवाओं को नई चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है। यह केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है। श्रोता दोस्तों, यदि आप या आपके आसपास का कोई युवा अपने कौशल को विकसित करना चाहता है तो उसे इस प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रमों से अवश्य जुड़ना चाहिए। कौशल ही सफलता की कुंजी है और एक कुशल युवा ही विकसित भारत का निर्माण भी कर सकता है। और अब इसी के साथ युवावाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भोजपुरी लोकगीत।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुआ चाहते हैं। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा।

प्रणाम, ई आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ निखिल आनंदगिरी से भोजपुरी में समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र के एनडीए सरकार के 12 बरिस पूरा हो गया। श्री मोदी आजे के दिन साल 2024 में लगातार तीसरा बेर भारत के प्रधानमंत्री पद के शपथ लिहले रहले। ये अवसर पर प्रधानमंत्री कहले कि सरकार पिछला 12 बरिस में देश के युवा, नारी समुदाय और किसानन के मजबूत बनौले बा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहले कि पिछला 12 बरिस में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित लगातार प्रयासन के माध्यम से आपन देश मजबूत और आत्मनिर्भर बने के राह पर आगे बढ़ रहा बा। गृहमंत्री अमित शाह कहले कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पिछला 12 बरिस से भारत गरीब लोगन के कल्याण आ अभूतपूर्व विकास दोनों के एक साथ सच होत देख रहा बा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहले कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व पिछला 12 बरिस में सेवा भावना के माध्यम से शासन के नया रूप दे रहा बा। प्रदेश में अब नया उद्योग सबके स्थापना खातिर जरूरी मंजूरी मात्र 30 दिन के भीतर दे दिहल जाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एगो सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दिलन। श्री चौधरी बतौले कि निवेशक लोगन के बेहतर सुविधा देवे और प्रक्रिया सबके आसान बनावे के खातिर सिंगल विंडो सिस्टम अपनावल जाए और एकरा खातिर राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद सचिवालय के एकल नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत कैल गेल बा। ई व्यवस्था से अलग अलग विभागन के बीच तालमेल और मंजूरी के प्रक्रिया ज्यादा तेज, पारदर्शी और समय पर पूरा हो सके। राज्य सरकार द्वारा दुनिया भर में रहे वाला वैश्विक बिहारी समुदाय के आपन प्रदेश के विकास, निवेश और नवाचार के मुख्य धारा से जुड़े खातिर एगो खास डिजिटल प्लेटफॉर्म के शुरुआत कैल गेल। सूचना प्रावैधिकी मंत्री नीतीश मिश्रा आज पटना में स्थित टेक्नोलॉजी भवन में आयोजित कार्यक्रम से ई डिजिटल प्लेटफॉर्म के शुभारंभ कैले। ये अवसर पर श्री मिश्रा कहले कि ई प्लेटफॉर्म देश विदेश में बसल बिहार मूल के लोगन के राज्य के विकास यात्रा, निवेश के मौका और ज्ञान साझा करे के पहलन से जोड़े के एगो मजबूत माध्यम बने। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहलन है कि प्रदेश में कोचिंग संस्थानन के कानून के दायरा में लावल जाए। दिल्ली में पत्रकारन के बातचीत में वो बतौलें कि एकरा खातिर सरकार बिहार राज्य कोचिंग नियमावली तैयार कर दिया। आगामी 21 जून के होए वाला नीट यूजी पुनर्परीक्षा के कदाचार मुक्त और सुरक्षित वातावरण में आयोजित करावे के खातिर राज्य सरकार व्यापक तैयारी कैले बिया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और ई पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के संयुक्त समीक्षा बैठक में परीक्षा संचालन खातिर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कई गो निर्देश जारी कैल गेल। राज्य में नया डिग्री कॉलेज सब में अतिथि शिक्षक माने गेस्ट फैकल्टियन के बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिहल गेल बा। बिहार लोक भवन से जारी आदेश में कहल गेल बा कि नया दिशा निर्देश तय होके तक प्रखंडन में स्थापित होके वाला डिग्री कॉलेजन में अतिथि शिक्षकन के चयन चाहे नियोजन के प्रक्रिया शुरू ना कैल जाए। भारत और मंगोलिया के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधन के मजबूत करे खातिर मंगोलिया के राजधानी उलान बटार में नालंदा विश्वविद्यालय के साथ दूगो ऐतिहासिक समझौतन पर दस्तखत कैल गेल। पहला ऐतिहासिक समझौता उलान बटार के मशहूर गंदन मठ के साथ भइल। यही कड़ी में दूसर समझौता नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ भइल। इस समझौता के तहत बौद्ध दर्शन, धर्म अध्ययन, इतिहास, संस्कृति, कला पारिस्थितिकी, संस्कृत और तिब्बती भाषा नियन अलग अलग क्षेत्रन में साझा रिसर्च और छात्र शिक्षक आदान प्रदान कार्यक्रमन में तेजी दिहल जाए। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सा भीषण गर्मी के चपेट में बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान 43.4

0: डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास के डेहरी राज्य के सबसे गर्म जगह रहल। पटना, गया जी और औरंगाबाद के तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल गई बा। मौसम के अनुमान में कहल गई बा कि अगला 48 घंटा के दौरान तापमान में कौनो खास बदलाव के संभावना नहीं है। वही जा राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा में कुछ जगह पर पानी बरसे के अनुमान बा। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एजा समाप्त भइल।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। समय मिला ये शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: किसान और किसान भाइयों और

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता भाई बहन लोग के रज्जू भाई की तरफ से नमस्कार आ रनिया बहन रौरा के भी नमस्कार।
1: नमस्कार रज्जू भाई, साथे साथे सभी श्रोता लोगन के रनिया बहन का नमस्कार।
0: देखी रनिया बहन, कहल जाला हमनी के गांव घर में कि जवन आज के बच्चा लोग बाड़न इहे काल हमनी के देश के भविष्य बाड़न या घर के हमनी के भविष्य बाड़न। जेकरा पर माई बाबू आपन अरमान लगा के बैठल बाड़न कि हमनी के बाल बच्चा पढ़ियन लिखियन, तो हमनी के वो नया सपना हर गार्जियन देखेला ओकरा के साकार करे के फेरा में आदमी पढ़ रहलन कि हमार जौन बाल बच्चा आज पढ़त रहन उ काल हमरा घर के देख रेख करिहन, हमरा देश के नाम रोशन करिहन। लेकिन एकरा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बा कि संस्कार आ अनुशासन आदमी में जरूरी बा। मतलब हमनी के बाल बच्चन में उठे बैठे आ बोले चाले के तरीका भी जरूर हमनी के माई बाप के जिम्मेवारी बा जौन हमनी के सिखावे के चाहिए।
1: देखिए रज्जू भाई, एकदम रुआ सही बात कहनी के सब सिखावे के चाहिए। कहल जाला ना कि जैसे नींव जितने मजबूत होखी ओकरा ऊपर जितने रुआ इमारत ले जाई कोनो फर्क पड़े वाला नहीं है। यही तरीके से रुआ बचपन से ही अगर बच्चन के अपने बढ़िया बढ़िया संस्कार दही, कैसे मान सम्मान बड़ लोग के करे के चाहिए, कैसे इज्जत करे के चाहिए, पढ़ाई कैसे करे के चाहिए, उठना बैठना कैसे करे के चाहिए, लोगन के साथ कैसे व्यवहार करे के चाहिए, मतलब गीत भजन संस्कृति की ओर जाई ले जाई, पेड़ पौधा भी लगवाई, उनका अपने हाथ से लगवाई, उनके जन्मदिन पर लगवाई, या फिर भजन कीर्तन पूजा ध्यान में भी थोड़ा सा उनका के बैठाई, या फिर साथे अपने साथे खाना खियाई, मोबाइल में ज़्यादा उनका के व्यस्त मत रखी। तो देखी कि वो जरूरी बा कि वो लैकन के अंदर संस्कार भरबे करे।
0: देखी ये समाज में मतलब यदि रामायण के हमने के थोड़ा सा ध्यान दिल जाओ तो राम जी जौन रहन इनकर मुख्य भूमिका रहे कि दूसरा के आदर देत रहन ये। तो ऐसा मतलब गुरु के प्रति आदर देखी, उनकर माता पिता के प्रति आदर देखी, या अपना माटी के प्रति आदर देखी कि अपन माटी लेके लंका तक गईनी वहाँ के आ फिर लेके अनी। तो हमनी के भी अपना परिवार में बाल बच्चन के अपना धरती से प्रेम करे के, अपना घर से प्रेम करे के आ लोगन से मीठा वचन बोले के तरीका हमनी के बच्चन के सिखावे के चाहिए।
1: कहे का मतलब श्रोता सब है कि

0: ओहनी के सिखाई बच्चन के कि बच्चा अपने दुख खाली दुख नहीं होखेला, दूसरा के भी दुख के महसूस करे के चाहिए। जैसे कि मान ली कि अगर जब वैसे करता ना तो उनका से कहें कि बाबू जब तुहरा कष्ट होता दुख होता तो उका अपना से नीचे वाला के देखा कि वो कतना कष्ट में बा।
1: मतलब संतोष पाविक हो गए तो अपना से नीचे वाला
0: नीचे के
1: देखे चाहिए, विकास करे के बाद अपना से आगे
0: वाला के देखे के चाहिए।
1: हाँ देखिए कहल गेल बा कि परहित सरी से धर्म नहीं कोई, मतलब दूसरा के भलाई करे से नीमन कौनो एह दुनिया में धर्म नहीं है। मतलब हर धर्म में दूसरा के परोपकार करे के दूसरा के भलाई करे के ही बात बतावल गई बा। तो हमनी के अपना समाज में अपना घर में अपना देश में कोशिश करे के चाहिए कि हमनी के दूसरा के मदद करे के पाठ पढ़ल जाए।
0: कहल जाला ना रजू भाई कि अगर हम करब
1: जी
0: हमार घर के परिवार करी हैं उहे देख करके बच्चा सीखी हैं
1: जी,
0: ऐसे अपने अंदर भी सुधार यही ले आवे के चाहिए। अगर मान लें कि हम दिन भर मोबाइल चलाए तो लड़का भी कही पापा हमहूँ देखब, बाबूजी हमहूँ देखब मोबाइल, या फिर वो जो बैठल रही तो ये सब देखे। अगर रउआ किताब लेके पढ़ा तनी तो लड़का भी लेके किताबें उठाई।
1: या रउरा अपना घर में जैसे बोला तनी यदि प्रेम के भाषा बोला तनी तो राउर बाल बच्चा भी प्रेम के ही भाषा सीखी है। ऐसे हमने के अपना में भी बदलाव करे के चाहिए ताकि हमने के आवे वाला जनरेशन जवन बा तवन कोई सीख सके आ अपन नाम रोशन कर सके।
0: जी जी जी रजू भाई
1: जी
0: हमनी के ये तो बात के निजा अपने बच्चन के भविष्य खातिर के कि हमनी के कैसे हमनी के शिक्षा देहल जाए। अब हमनी के अपने कार्यक्रम पर भी ध्यान देहल जा कि आज के किसान वाड़ी कार्यक्रम में कौना कौना विषय पर हमनी के बातचीत कैल जाए, जानकारी लेहल जाए और श्रोता सभी के भी जानकारी देहल जाए। तो का कौन विषय बाटे ही बताएं तो तनी।
1: देखी रनिया बहन सबसे पहले नू हमनी के अपना कार्यक्रम में अपना किसान भाई खातिर सबसे पहले खबर सुनावल जी आज की खबरों के अंतर्गत, फिर एकरा बाद हमनी की आज की बातों में जवना के विषय बा कि गृह वाटिका से कितना लाभ बा हमनी के घर में हमनी के समाज में। मतलब बहुत सा घर में रउरा गई होकब तो देखले होकब कि उनकरा छत पर कोई फूल लगैले बा, कोई करेली के पौधा लगैले बा, कोई खीरा लगैले बा, बहुत सा आदमी फलदार पौधा भी अपना छत पर लगैले बड़न, मतलब आ फूल भी लगैले बड़न, मतलब घर लागत आ कि उनकर खुशबू दे रहल
0: जवन शौक बाटे कोई
1: गृह वाटिका एक तरह से अभी चल रहल बा। तो हमनी के अपना घर के कितना नीमन सजा सकी न जा एकरा खातिर हमनी के एगो वार्ता सुनल जाई जेकर वार्ताकार बानी डॉक्टर रीता सिंह। फिर हमनी के चलल जी नया दौर की नई बातों के अंतर्गत, कारण कि अभी हमनी के गांव घर में सब कोई जौन किसान भाई लोग बड़न हूँ तो अपन खेत जोते में बिया डाले खातिर धान के लागल बड़न। जब देखब गांव में जाके तो देखब कि अरे भाई हमारा फुर्सत नहीं है हमारा धान के बिया डाले के बा, तो हमनी के धान के बिया जितने नीमन डालल जाए उतने बढ़िया उपज हुई,
0: यानी कि उन्नत प्रभेद के बारे में जानकारी।
1: तो हमनी के नया दौर की नई बातों के अंतर्गत नया प्रभेद कौन बा धान के एकरा पर हमनी के चर्चा कर ली। फिर आज के नसीहत में देखी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा बा तो यह गर्मी में आज
0: बचाव करे पर
1: बातचीत कर ली, कारण कि कहल जला कि आप भला तो जग भला। एक बाद हमनी के मौसम पर आधारित के अभी किसान भाई लोग के का करे के चाहिए ए पर भी हमनी के चर्चा कर ली, या मौसम के पूर्वानुमान पर भी थोड़ा बातचीत कर ली। तो आई हमनी के किसान भाई खातिर कृषि पर आधारित खबर सुनल जाओ आज की खबरों के अंतर्गत।
0: जी देखे खबर ही बाटे किसान भाई लोग श्रोता सब है कि बिहार सरकार जोन बा खरीफ सीजन खातिन के खरीफ महाअभियान आ धान के सीधा बोआई तकनीक के बढ़ावा देवे का फैसला कैले बाटे, जेकरा तहत 10 जून से यानी कि काल्हे से प्रखंड में किसानन के प्रशिक्षण देहल जाई। जेकरा साथे साथे सरकार जोन बा के गेहूँ खरीद का लक्ष्य बढ़ा करके 180 लाख मेट्रिक टन कर देले बाटे। आ काल कैबिनेट बैठक में सासा मुसा चीनी मिल के किसान का माने 43 करोड़ रुपया बकाया चुकावे का भी मंजूरी दे देले बाटे। विस्तृत क्षेत्रीय आ नीतिगत अपडेट यह तरीका से बाटे जैसे कि खरीफ अभियान आ आधुनिक तकनीक ब्लॉक स्तरीय 10 जून से 14 जून तक राज्य के सब प्रखंड मुख्यालय में विशेष प्रशिक्षण का उत्पाद कैले बाटे आ वितरण कार्यक्रम आयोजन एकरा साथे साथे कैल जा रहल बटे। धान के सीधा बुआई कृषि विभाग

0: का मुख्य धान किसान के लागत कम करे खातिर के सीड ड्रिल के जरिए धान के सीधा बुआई कैले पर ड्रोन आ बहुत सारा ऐसा अन्य फसल बाटे किसान के खेत में ड्रोन के इस्तेमाल मोट अनाज जैसे कि मक्का बेबी कॉर्न दलहन प्याज के वैज्ञानिक के खेती के जागरूकता कैल जा रहा बाटे। गेहूं का लक्ष्य बाटे कि 10 गुना बढ़ा करके नया तरह से उकरा के ले आवल। केंद्र सरकार जौन बाकी बिहार में गेहूं के कोटा बना के 180 लाख मेट्रिक टन कर देले बाटे जौन कि पहले बहुत कम रहे। अंतिम तिथि बाटे पैक्स लोगन के व्यापार आ मंडल के माध्यम से 15 जून तक MSP मूल्य जौन कि 2585 प्रति क्विंटल के दर से गेहूं के खरीद जारी कैल जाई। आ भुगतान का जौन गारंटी बाटे वो सहकारिता विभाग जौन बा पैक्स केंद्र के गेहूं खरीद के 48 घंटा के भीतर किसान के भुगतान करे का कड़ा निर्देश देले बाटे। चीनी मिल आ गन्ना किसान के राहत बकाया भुगतान खातिर के काल 8 जून जौन रहे बीत गई काल उमें भइल बैठक जौन बिहार कैबिनेट के बैठक में सरकार जौन बाटे सासा मूसा चीनी मिल के गन्ना किसान के बकाया 43 करोड़ के चुकावे का प्रयास जौन रहे प्रस्ताव जौन रहे के मंजूरी दे दहलस वो काम खत्म हो गई। मूल्य में बढ़ोतरी हाल में ही गन्ना का सरकार जौन बाटे उकरा के कीमत के बढ़ात करके 15 से 20 प्रति क्विंटल का बढ़ोतरी कर देले बाटे जेकरा के उत्तम गुणवत्ता वाला गन्ना का रेट 365 से बढ़ा करके 380 क्विंटल प्रति 10 माने अतिरिक्त बोनस के साथ दे देले बाटे 10%। ई रहल आज का खबर।
1: देखी बड़ा निमन उरा जानकारी देनी कि हमने के किसान भाई यह जानकारी से लाभ भी उठैनी है।
0: जी जी।
1: देखी अभी हमने के जौन पर्यावरण इतना दूषित बा आदमी के पेड़ पौधा भी हमने के धरती पर लगावल कम कर दिले बड़न तो एमे यदि हमने के घर में ही अपन पेड़ पौधा लगावल जाओ पुष्प वाटिका लगावल जाओ तो घर के शोभा भी बढ़ी आ घर में जौन ऑक्सीजन के कमी बा ओकर भी पूर्ति हो जाए आ एकरा से हमनी के निरोग भी रहल जाए। तो आई हमनी के एकरा खाती एगो वार्ता सुनत जा कि हमनी के गृह वाटिका घर में ही पौधा लगा करके कितना उकर लाभ ले सकिन जा कितना अपना घर के सुंदरता बढ़ा सकिन जा तो एकर जानकारी दे रहल बानी डॉक्टर रीता सिंह। तो आई यहाँ से हमनी के सुनल जाओ कि गृह वाटिका जौन बा एकरा से कितना लाभ बा।
0: जी सुनल जा।
2: रोहतास जिले के सभी किसान और किसान भाइयों और बहनों को हमारा प्रणाम। जैसा कि किसान भाइयों और बहनों आप जानते हैं कि गृह वाटिका का मुख्य उद्देश्य परिवार के प्रत्येक सदस्य को ताजे फल एवं सब्जी प्रतिदिन उपलब्ध कराना है जिससे शरीर को प्रतिदिन पौष्टिक तत्व विटामिन और खनिज लवण मिल सके। साथ ही साथ यह प्रतिदिन घर के बजट के लिए भी लाभकारी है। यह एक स्वस्थ परिवार का निर्माण करता है। गृह वाटिका में व्यक्ति अपने अल्पकालीन समय का उपयोग मनोरंजन के रूप में भी करता है। यह वाटिका आजकल समृद्ध परिवार की पहचान बन चुकी है। बाजार के बदलते परिवेश में सब्जी मंडी में सब्जी ताजे दिखने वाले सब्जियों में रंग का व्यवहार किया जाता है जिससे कि बासी सब्जियां भी ताजी प्रतीत होती हैं और तो और उनमें कीटनाशक दवाओं का अवशेष भी मौजूद रहता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गृह वाटिका का मुख्य उद्देश्य आय नहीं बल्कि पारिवारिक लाभ अभिरुचियों का सदुपयोग तथा स्वस्थ मनोरंजन है। किसान भाइयों और बहनों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सब्जी वाटिका में जो उत्पाद प्राप्त होता है वह स्वच्छ और ताजा होता है और उससे पोषक तत्वों की हानि न के बराबर होती है। गृह वाटिका में उगाई जाने वाली सब्जियों में पोषक तत्व विशेष रूप से विटामिन और भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि ले जाने ले आने तथा भंडारण के दौरान पोषक तत्वों की हानि ना के बराबर होती है। साथ ही साथ अगेती और पिछेती सब्जियां की प्राप्ति भी की जा सकती है जो कि बाजार में काफी महंगी मिलती है। इसलिए गृह वाटिका उत्पादों का मूल्यांकन बाजार भाव पर किया जा सकता है किंतु उनके पोषक तत्व के महत्व के आधार पर नहीं। यह नहीं कि जब हम बाजार में से सब्जियां खरीदने जाते हैं तो आने जाने में लगने वाले समय के साथ साथ परिवहन में भी व्यय होता है। यदि आने जाने में लगे खर्च समय के व्यय की तथा पोषक तत्व की हानि को भी ध्यान में रखकर आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जाए तो

गृह वाटिका निश्चित रूप से आमदनी का स्रोत बन सकता है। जैसा कि किसान भाइयों और बहनों जानते हैं कि सब्जी वाटिका मकान के पिछवाड़े में बनाया जाता है, इसमें हर तरह की सब्जियां लगानी चाहिए। वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर कुकुरबिटेसी कुल की फैमिलियां जैसे कि कद्दू, लौकी, करेला, परवल, खीरा, खरबूजा ये सब ले सकते हैं। लिगुमिनस फैमिली की सब्जियां टमाटर, सेम, लोबिया, क्रूसीफेरी फैमिली की सब्जियां जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी ले सकते हैं। उपयोग किए जाने वाले भाग के आधार पर भी आप सब्जियां उगा सकते हैं, जैसे जड़ वाली सब्जियां मूली, गाजर, शलगम, कंद वाली आलू, शकरकंद, शलक,

फैमिली की सब्जियां, टमाटर, सेम, लोबिया, क्रूसीफेरी फैमिली की सब्जियां जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी ले सकते हैं। उपयोग किए जाने वाले भाग के आधार पर भी आप सब्जियां उगा सकते हैं, जैसे जड़ वाली सब्जियां, मूली, गाजर, शलगम, कंद वाली, आलू, शकरकंद, शलकंद जैसे प्याज, लहसुन, पत्तियों वाली सब्जियां, पालक, मेथी, चौलाई, धनिया, फूल वाली, सेम, लोबिया, मटर। कोशिश करनी चाहिए कि जड़ वाली सब्जियां मेड़ पर लगानी चाहिए, गहरी जड़ वाली सब्जियों के साथ उतली जड़ वाली सब्जियां की कतार लगाकर मिश्रित खेती कर सकते हैं। और तो और मौसम के आधार पर भी सब्जियां लगानी चाहिए, जैसे कि जायद की सब्जियां, लौकी, करेला, भिंडी, लोबिया। वर्षा ऋतु में भी सब्जियां जैसे कि आप लेते ही हैं, लौकी, परवल, तोरई, करेला, चौलाई, जाड़े की सब्जियां, मूली, शलगम, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मेथी, मटर, सेम, आलू, प्याज। ये तो बात हुई सब्जी वाटिका के साथ साथ फल वाटिका मकान के पिछवाड़े या दोनों किनारे में बनाया जाता है। इसमें मध्यम ऊंचाई वाले वृक्ष जैसे अमरूद हुआ, अनार, केला आदि लगा सकते हैं। सब्जी वाटिका के बाहरी मेड़ पर पपीता या आंगन में अंगूर की बेल फैलाई जा सकती है। फूल वाटिका घर के किसी भी कोने में बनाई जा सकती है, जिसमें कि आप बेला, चमेली, गुलदावदी, गेंदा लगा सकते हैं। गृह वाटिका में सब्जियों के बीज लगाने के लिए एक पौधशाला होना बहुत आवश्यक है। आप सबों से अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ घर के कूड़े कचड़े तथा घर की रसोई घर के अवशेष तथा फसल अवशेष के सदुपयोग के लिए एक खाद का गड्ढा होना चाहिए। गड्ढे के ऊपर कोशिश करना चाहिए कि पंडाल बनाकर लतर वाली सब्जियां भी लगाई जा सकती हैं। सभी जगह का सदुपयोग करना चाहिए। गृह वाटिका का आकार अपने घर के पास जमीन की उपलब्धता या परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है, जो वाटिका की सही देखरेख कर सकते हैं। उस हिसाब से आप गृह वाटिका का आकार बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आपके परिवार में सदस्यों की संख्या 5 हो तो 250 वर्ग मीटर की गृह वाटिका में सफलतापूर्वक फल एवं सब्जी लगा सकते हैं और साथ ही साथ उसकी सही देखभाल कर सकते हैं। आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर गृह वाटिका सब्जी, फल, फूल तथा फसल प्रदान हो सकती है। जहां तक संभव हो गृह वाटिका रसोई के स्थित हो, ताकि रसोई का पानी आसानी से गृह वाटिका तक पहुँच जाए और सब्जी वाटिका का उत्पाद भी आसानी से रसोई तक पहुंच जाए। गृह वाटिका को अधिक से अधिक फायदेमंद बनाने के लिए पहली बात की सब्जी वाटिका के लिए खुली जगह होनी चाहिए, जिसमें कि अच्छी तरह से सूर्य की रोशनी मिल सके, क्योंकि छायादार जगह पर फल और सब्जियों के लिए अच्छी नहीं होती है। साथ ही साथ सिंचाई जल का निकासी भी अच्छी सिंचाई और जल की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि हमारे किसान भाई कम ध्यान देते हैं इस पर। और तो और कोशिश करनी चाहिए कि सब्जी वाटिका को मुख्यतः दो भागों में बांट दे। एक होता है मेरा स्थायी क्षेत्र, जिसमें कि फसल के लिए यानी अस्थायी फसल चाहे बहुवर्षीय फसलों के लिए होता है, जिसमें मुख्यतः आप फलदार पौधे लगा सकते हैं, जैसे केला, नींबू, अमरूद, पपीता। कुछ बहुवर्षीय सब्जी भी लगा सकते हैं, जैसे कि सहजन, कुंदरी, खेक्सा। दूसरा है मेरा अस्थायी क्षेत्र, इसमें प्राय एक वर्षीय वाली सब्जी लगा सकते हैं, जिसमें कि हम आवश्यकता अनुसार अनेक भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। सब्जी वाटिका की घेराबंदी पर लतर वाली सब्जियां लगानी चाहिए। इस फसल से सब्जी के साथ कुछ हद तक सब्जी वाटिका की सुरक्षा भी होती है, जैसे सेम वर्गीय, खीरा वर्गीय, बरसात और जाड़े में। बरसात में जाड़े में आप मटर लगा सकते हैं। सब्जी वाटिका में दो प्लॉटों के बीच वाली जगह का उपयोग जड़ वाली सब्जियों के लिए करना चाहिए, जैसे मूली, गाजर, बीट लगा सकते हैं। सब्जी वाटिका में के अस्थाई क्षेत्र में दोनों किनारे पर गड्ढा खोदकर वर्मी कंपोस्ट, जिसको केचुआ खाद भी कहते हैं, या सिंपल खाद जो बनाते हैं आप लोग, उसको कोशिश करें कि बना लें। सब्जी वाटिका के स्थायी क्षेत्र को अपने संतुलित पौष्टिक तत्वों को ध्यान में रखकर अलग अलग सब्जियों को अलग अलग प्लॉटों में लगाने चाहिए, ताकि सालों भर आपको सब्जी उपलब्ध हो। विभिन्न तरह की सब्जियां जैसे कि पत्ती वाली सब्जियां, पालक, बंदा गोभी, मेथी, बथुआ, लाल साग लगा सकते हैं। दलहनी सब्जियों में मटर, बोड़ो, सेम वाली सब्जियां ले सकते हैं। सलाद वाली सब्जियां मूली, गाजर, चुकंदर ले सकते हैं। मसाले वाली सब्जियों में आप प्याज, लहसुन, मिर्चा, धनिया। फल वाली सब्जियां तरबूज, खीरा, खरबूजा ले सकते हैं आप। और जो विभिन्न तरह की सब्जियां हैं, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी वर्गीय, गाजर, मूली, सलगम, लतर वाली सब्जियां ले सकते हैं। और साथ ही साथ फल के लिए केला, पपीता, अमरूद, नींबू, ये सब आप अपने
आंग

0: आंगनवाड़ी में लगा सकते। ये जितने भी चीज बताई गई हैं उसको अगर ध्यान में रख के अगर ग्रीवाटिका का निर्माण किया जाए और उचित फल और सब्जियों का चुनाव किया जाए तो हम सभी को प्रतिदिन ताजे फल और सब्जियां मिल सकती हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगा और अपने घर के बजट को कम करने में सहायक होगा। यदि सब्जी वाटिका को सुनिश्चित ढंग से बनाया जाए, सघन फसल चक्र उपयोग किया जाए और बाढ़ पर लतर वाली सब्जियां लगाई जाएं, तो अधिकतम उपज प्राप्त करके 250 से 300 वर्ग मीटर सब्जियों के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 रुपए का शुद्ध लाभ लिया जा सकता है। धन्यवाद।
1: देखिए कितना निमन जानकारी दीनी रीता सिंह कि हमनी के अपना घर में
0: जी
1: मतलब सब्जी के भी खेती कर सकी ना जा, ताजा ताजा सब्जी खाए ले,
2: फल फूल सब्जी सब चीज के अपन खेती कर सकत हन जे। गृह वाटिका का मतलब वे होल कि रुवा अपना शौक से कुछ लगा सकत हन, बस सेवा भाव करत रही होकर आ आसपास घूमत खर रहे, मनोरंजन का मनोरंजन भी होत रही, कुछ ताजा ताजा मिलत रही
1: आ देह आदमी सोच रही काम करे के मिली। देखिए इतना निमन जानकारी दिया लगा दी यहाँ के,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब देखिए आई हमने के थोड़ा संदेश सुन लिया, एक बात हमने के बातचीत कर ली,
2: एकदम सुनल जाओ।

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर

0: क्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है जो फल जो देता है हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वहीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं, मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।
2: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
3: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: राजू भाई,
1: जी
0: अब हमने के अपने कार्यक्रम की ओर चले के खेती बाड़ी की ओर जुटल जाओ। आज के चर्चा का विषय बाटे धान के नवीन प्रभेद। तो देखें, धान का उन्नत जौन किस्म के साथे साथे समय समय पर विकसित कैल गईल नया प्रभेद कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहल बाटे। वैज्ञानिक कई तरह के जलवायु परिस्थिति, माटी के गुणवत्ता, चाहे किसान के आवश्यकता के ध्यान में रख करके कई तरह के नया किस्म विकास कर रहल बाना। यह नवीन प्रभेद का उद्देश्य ई बा कि अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कम अवधि में परिपक्वता आ बेहतर गुणवत्ता प्राप्त कर सक।
1: हाँ, देखी हमनी के किसान भाई के बेहतर लाभ खातिर जरूरी बा कि नया नया प्रभेद के चुनाव करस, तो एकरा खातिर का बा कि कुछ कम समय आ कम पानी में पाके वाला किस्म बा।
0: हाँ।
1: जैसे PR 126 बा, ई धान के जौन किस्म बा ई प्रभेद रोपाई कैला के 93 से 95 दिन में ई पाक के फसल तैयार हो जाला आ पानी भी बहुत कम लागेला। ई हो गई PR 126। एकरा बाद पूसा बासमती 1509 किस्म बा धान के, जौन कि ई किस्म मात्र केवल 115 से 120 दिन में ई तैयार होके पाक जाला। आ ई जौन बा एकरा में यदि पानी के बात कही जा तो अन्य जौन किस्म धान में पानी लागेला ओकरा से 33% कम पानी एकरा में लागेला। आ अब रह गई कि उन्नत किस्म आ हाइब्रिड किस्म कुछ बा धान के, जैसे पूसा DST बा।
0: अच्छा।
1: ई जौन धान के किस्म बा ई किस्म समझी कि सीधा एकर बुआई कैल जा सकेला। आ धान के किस्म सूखल आ लवण युक्त माटी जौन खारा पानी बा ई दोनों में एकरा के ई सहन करे के क्षमता होला। एकरा बाद देखी नया किस्म बा उन्नत आ हाइब्रिड किस्म में पूसा RH 60। ई धान के सुगंधित आ लंबा दाना वाला हाइब्रिड किस्म है, जमुना के खेती बिहार आ उत्तर प्रदेश में एकर काफी नीमन ढंग से कइल जाला।
0: एक गौरी है प्रभेद रजू भाई
1: जी,
0: स्वर्णा सब एक
1: जी।
0: उ का ऐसन प्रभेद बा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र खातिर के बहुत बढ़िया होखेला। तो ये सब हमने के अपनावे के चाहिए आ लाभ लेवे के चाहिए हमने के।
1: देखी अब हमने के आज के समय में अपन बच बचाव भी करे के चाहिए, कारण कि अभी जितना तेज धूप हो रहल बा इसमें हमनी के अपने या अपना घर के बाल बच्चन के भी तोप ढाप के रखे के चाहिए, या घर से जब बहुत जरूरत होके तब हमनी के घर से बाहर निकले के चाहिए।
0: हाँ, जरूरत नहीं है तो का जरूरत बटे, नहीं तो अगर निकलबो करी तो भाई पानी ले लही, तौलिया ले लही, गमछा ले लही,
1: भर पेट खाना खा लही,
0: खाना खा के निकली घर से, नहीं तो भाई लूह लग जाई आ देखते बनी लूह कतना तेज चलत बटे।
1: देखिए सबसे जरूरी बा कि रउरा यदि निरोग रहब, स्वस्थ रहब तो दुनिया रउरा खाती अच्छा लागी। ऐसे कहल भी जाला कि आप भला तो जग भला, तो पहले अपन स्वास्थ्य ठीक ठाक रखी यह गर्मी में मतलब बच के रही। तो अब चले गए हमने के अपना खेती बाड़ी में, मौसम देखल जाओ कमना रंग के अब होखे वाला बात आई एकरा पर बातचीत कही जाओ।
0: देखिए भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पूर्वानुमान ई बाटे कि पहले तो 9 तारीख तक आज समय बीत गई, लेकिन काल तक ऐसा बुझात बा कि जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथे आंधी 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा भी चले से हल्का बरखा होके कभी अनुमान बाटे। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 से

0: तीस डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बाटे। सापेक्ष आर्द्रता सवेरे 70 से 75% और दोपहरिया में 20 से 25% रहे के संभावना बाटे। अगला दो दिन तक 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दक्षिण आ पूर्व हवा चले के अनुमान बाटे।
1: तो देखी अब रनिया बहन, अब हमने के स्टूडियो के घड़ी जौन बा तो और कुछ कहे की इजाजत नहीं दे।
0: यह कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रही संतोष कुमार।
1: तो चलत चलत सब श्रोता भाई बहन लोग के रजू भाई के तरफ से नमस्कार आ रनिया बहन डौरा के भी नमस्कार।
0: नमस्कार रजू भाई, साथे साथे सभी श्रोता लोगन के रनिया बहन का नमस्कार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

भैया दूज इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। लक्ष्मण शाहबादी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

सांझगीत कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं दंगल फिल्म का एक गीत, आवाज आशा भोसले की। नदीम श्रवण हैं गीतकार और संगीतकार हैं कुलवंत जैन।

धरती मैया फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। लक्ष्मण शाहबादी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। सांझगीत कार्यक्रम में श्रोता दोस्तों, अब आइए हम आपको सुनवाएं नदिया के पार फिल्म का ये गीत।

पवन सिंह को सुनने के बाद श्रोता दोस्तों, आइए कार्यक्रम के आखिर में अब हम आपको सुनवाएं दंगल फिल्म का ये गीत।

0: मिश्रा मन ने
1: उपभोक्तन तक पहुंचे के सस्ता असुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार।
1: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
2: काहे की आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान।
1: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
2: डायल करें 8700014242।
1: नंबर फिर लिखी 8700014242।
0: इसी के साथ भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांझ गीत यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। रोज की तरह आज भी गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम में एक नजर डालेंगे स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक लिपिक पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 10 जून 2026 को सासाराम के 17 परीक्षा केंद्रों पर एकल पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 12 बजे तक संचालित होगी तथा अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय पूर्वाह्न 8:30 निर्धारित किया गया है। परीक्षा में कुल 9,360 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के सफल शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संचालन को लेकर आज समाहरणालय के DRDA सभागार में केंद्राधीक्षकों प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। बैठक में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक रोहतास द्वारा जारी संयुक्तादेश का सभी अधिकारियों को आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी परिस्थिति में कदाचार अनुचित साधनों के प्रयोग अथवा सुरक्षा मानकों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी केंद्राधीक्षकों एवं दंडाधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था तथा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देशानुसार परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ डिवाइस कैलकुलेटर अथवा किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री एवं लिखित सामग्री ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के समय अभ्यर्थियों की सघन जांच की जाएगी।

आज दिनांक 9 जून 2026 को कुनकी पंचायत के कर्मा गांव में जिला हब फॉर एम्पावरमेंट एवं ऑफ वीमेन DHEW के द्वारा 181 महिला हेल्पलाइन बाल विवाह रोकथाम भ्रूण हत्या घरेलू हिंसा दहेज हत्या इत्यादि के साथ साथ सरकार द्वारा दी जा रही अन्य योजना जैसे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना पेंशन आयुष्मान कार्ड आधार पंजीकरण शिक्षा रोजगार जीविका इत्यादि को लेकर एक व्यापक सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को महिला सशक्तिकरण स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना तथा जागरूकता कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं और संदेश DHEW

के कर्मियों द्वारा बाल विवाह के कानूनी परिणामों और कम उम्र में शादी से बेटियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर खतरों की जानकारी दी गई। आज दिनांक 9/6/2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास की अध्यक्षता में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का बैठक आहूत की गई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अपर समाहर्ता सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला माप एवं तौल पदाधिकारी, प्रबंधक जिला लीड बैंक एवं श्रीमती इंदु कुमारी नामित सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में जिला पदाधिकारी रोहतास द्वारा उपभोक्ता मामलों से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। उनके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में वर्णित सभी नियमों दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने का निर्देश सभी विभागों एवं पदाधिकारियों को दिया गया। फार्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई। जिला पदाधिकारी महोदय ने 86 ग्राम कचहरी सचिव एवं 118 कार्यपालक सहायकों का मानदेय और वेतन किया स्थगित। जिले में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान को 100% सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी श्री नितिन कुमार सिंह द्वारा कार्यों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई ग्राम कचहरी सचिव एवं कार्यपालक सहायकों द्वारा निर्धारित अवधि में फार्मर रजिस्ट्री कार्य में नियमित प्रगति नहीं की गई। और अब आइए आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में।

लावारिस फिल्म के इस गाने के साथ ही गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, कई परिवारों का दर्द बन जाती हैं। इसीलिए बिहार परिवहन विभाग लेकर आया है एक नई पहल।
3: अब आम जन भी सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर कहीं दिखे 3 सवारी, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन,
2: तो फोटो या वीडियो भेजिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 पर या ईमेल करें commandcontrolcenterbihar@gmail.com पर।
3: आपकी शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई और आपकी पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय।
2: आइए मिलकर बनाएं सुरक्षित बिहार, स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: राज्य सरकार ने सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। श्री मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 सालों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 सालों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को पिछले 12 वर्षों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि युवाओं, किसानों, महिलाओं और उद्यमियों को सशक्त बनाते हुए विकसित भारत की मजबूत नींव रखी गई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि कल 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि श्री मोदी में देश की जनता के विश्वास का प्रतीक है। प्रदेश में अब नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृतियां मात्र 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निवेशकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। इस व्यवस्था से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और अनुमोदन प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। राज्य सरकार ने वैश्विक बिहारी समुदाय को प्रदेश के विकास, निवेश और नवाचार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा ने आज पटना स्थित टेक्नोलॉजी भवन में आयोजित कार्यक्रम से इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म देश विदेश में बसे बिहार मूल के लोगों को राज्य की विकास यात्रा, निवेश अवसरों और ज्ञान साझाकरण की पालों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा।
1: डिपार्टमेंट भी निश्चित तौर पर जो भी मीडियम्स हम लोग को उपलब्ध हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या जहां भी हम लोग आने वाले समय में जाएंगे, हर एक जगह लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आप आइए बिहार के साथ जुड़िए, कि हमारे इस प्रयास से सब लोग जुड़ेंगे और अपने विचार को साझा करें। रोड शोज हम लोग भी करने जा रहे हैं जो आईटी सेक्टर का हमारा डोमेन है, और बिहार सरकार का एक सामूहिक प्रयास भी हो रहा है कि आने वाले समय में जब हम एक बड़ा बिजनेस समिट हम करेंगे तो लगभग 5 लाख निवेश के प्रस्ताव को हम लोग प्राप्त जरूर करेंगे।
0: राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों के संचालन को व्यवस्थित बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। श्री चौधरी ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों के निर्धारित शिक्षण समय के दौरान किसी भी कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं किया जाएगा। हालांकि यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली या कॉलेज शिक्षा पूरी कर ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में नियमावली तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में कोचिंग संस्थानों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार बिहार राज्य कोचिंग नियमावली तैयार कर रही है। इस नियमावली को अगले 3 महीने के अंदर लागू कर दिया जाएगा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति 30 दिनों के भीतर प्रदान करने की घोषणा की। राज्य सरकार ने सभी कोचिंग संस्थाओं

0: कोचिंग संस्थाओं को कानून के दायरे में लाने के हम एक बिहार राज्य कोचिंग नियमावली भी बना रहे हैं जो अगले 3 महीने के अंदर उसे लागू करेंगे और सबको उसके दायरे के अंदर लाएंगे, उनके लिए एक आदर्श आचार संहिता बनाएंगे कि उनको क्या करना क्या नहीं करना।
1: श्री तिवारी ने कहा कि उन्होंने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। श्री प्रधान ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राज्य सरकार ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी पुनर्परीक्षा को कदाचार मुक्त और सुरक्षित वातावरण में आयोजित करने के लिए व्यापक तैयारियां की है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की संयुक्त समीक्षा बैठक में परीक्षा संचालन के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कई निर्देश जारी किए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नीट पुनर्परीक्षा के लिए राज्य के पटना, दरभंगा, मोतिहारी समेत 34 जिलों के 35 शहरों में 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,56,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायुसेना और डाक विभाग के समन्वय से उन्हें विशेष विमानों द्वारा सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा। पुलिस को सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने तथा अफवाह फैलाने या फर्जी प्रश्न पत्र प्रसारित करने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध कोचिंग संस्थानों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदृष्टि का एक कार्यक्रम था, जिसे कहा जा सकता है कि एक लक्षित तरीके से, टारगेटेड तरीके से अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल हुई है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये 10 साल की यात्रा में हमने एक तो सुरक्षित गर्भावस्था में मातृत्व की सुरक्षा की व्यवस्था और सुदृढ़ किया है, स्ट्रेंथन किया है और स्वस्थ भारत की नींव को और मजबूत किया है।
1: इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर गर्भवती माताओं की स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने आज पटना से थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पटना से वेल्लोर रवाना किया। उन्होंने बताया कि अब तक 43 बच्चों का मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत सफलतापूर्वक बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। राज्य का दक्षिणी हिस्सा जहां भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं उत्तरी और पूर्वी हिस्से में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आज खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। इधर राज्य का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना, गया जी और औरंगाबाद का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने भारत और मंगोलिया के बीच शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उलानबटार में दो ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। गंदन मठ और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ हुए इन समझौतों से बौद्ध विरासत और संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। एक रिपोर्ट।
2: नालंदा विश्वविद्यालय का पहला ऐतिहासिक समझौता उलानबटार के प्रसिद्ध गंदन मठ के साथ हुआ है। ये साझेदारी दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत पर आधारित है, जिसके तहत दुर्लभ बौद्ध पांडुलिपियों के संरक्षण, संयुक्त अनुसंधान और प्राचीन नालंदा की ज्ञान परंपरा को सहेजने पर काम किया जाएगा। इसी कड़ी में दूसरा समझौता नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ संपन्न हुआ। इस समझौते के तहत बौद्ध दर्शन, धर्म अध्ययन, इतिहास, संस्कृति, कला, पारिस्थितिकी, संस्कृत और तिब्बती भाषा जैसे विविध क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और छात्र संकाय आदान प्रदान कार्यक्रमों को गति दी जाएगी। समाचार कक्ष से निखिल आनंद गिरी।
0: एशिया कप अंडर 18 हॉकी ट्रॉफी में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के गोलकीपर सावन कुमार का आज पटना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सावन कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिहार का नाम रोशन किया है।
3: बिहार के गौरव सावन ने अंडर 18 एशियन कप में गोल्ड मेडल टीम का हिस्सा बनके हर एक बिहारी को गौरवान्वित करने का एक अवसर दिया। निश्चित रूप से खेल इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। बिहार के बच्चे अब सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते और भारत की जूनियर सीनियर टीम्स में खेले। अब बिहार किसी भी तरीके से अन्य राज्यों में खेल के मामले में पीछे नहीं रहे।
0: पत्रकारों से बातचीत में सावन कुमार ने कहा कि विजेता भारतीय टीम का हिस्सा बनना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि बिहार खेल के क्षेत्र में काफी विकास कर रहा है।
4: एज अ गोलकीपर अभी अंडर 18 इंडिया टीम में सिलेक्ट हुआ था और एशिया कप में हमारा गोल्ड मेडल, काफी अच्छा फील हो रहा है। स्पोर्ट्स को लेकर बिहार में काफी डेवलप किया गया, तो उस चीज को लेकर मैं काफी थैंकफुल करना चाहता हूँ।
0: पूर्वी चंपारण जिले के हरैया थाना क्षेत्र के कस्टम चौक के पास पुलिस ने दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक स्विट्जरलैंड की महिला और एक म्यांमार का युवक शामिल है। दोनों पर बिना वैध वीजा और पासपोर्ट के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप है। शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आज सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को सभी प्रकार की निःशुल्क कानूनी सहायता दिए जाने को लेकर विधिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भौड़ बालूखाट स्थित चालान सेंटर से अपराधियों ने हथियार के बल पर 8 लाख रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने दो कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। सहरसा के जिला शिक्षा विभाग कार्यालय भवन के तीसरे मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। सुपौल के भापटियाई थाना क्षेत्र के बनेनिया कोसी घाट पर एक नाव असंतुलित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी नौ सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति 30 दिनों के भीतर प्रदान करने की घोषणा की। राज्य सरकार ने सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत

0: के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
1: धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास जिले में आगामी खरीफ मौसम की तैयारी तेज हो गई है। इन दिनों किसान धान के बिचड़ा डालने और बीज खाद की व्यवस्था में जुट गए हैं। जिला प्रशासन और कृषि विभाग किसानों की मदद के लिए पूरी तरह सक्रिय है। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर नहरों और वितरणियों में अंतिम छोर तक सिंचाई का पानी पहुँचाने और जल जमाव की समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने सभी किसानों से किसान रजिस्ट्री कराने की अपील की है। इससे पीएम किसान, फसल बीमा, कृषि ऋण, उर्वरक वितरण एवं अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में सुविधा होगी। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। पर्याप्त पानी पीने, हल्के सूती कपड़े पहनने और दोपहर में अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। आपात स्थिति में 101, 112 और जिला नियंत्रण कक्ष के नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। उद्योग के क्षेत्र में रोहतास जिले ने पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, महिला उद्यमी योजना और स्टार्टअप प्रोत्साहन में बेहतर क्रियान्वयन के कारण राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उद्योग विभाग के महाप्रबंधक इंजीनियर आशीष रंजन को पटना में सम्मानित किया गया है। धान अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने 15 जून तक 100% सीएमआर आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को प्रत्येक प्रखंड के लिए लक्ष्य निर्धारित कर निगरानी करने को कहा है। महिला और बाल विकास निगम ने आलमपुर पंचायत में सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में महिलाओं और किशोरियों को सरकारी योजनाओं, बाल विवाह रोकथाम तथा हेल्पलाइन नंबर 181 और 112 की जानकारी दी गई। सहयोग शिविर अभियान के तहत प्राप्त अधिकांश आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। गत दिनों शिविर में पहुंचे प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि किसी भी आवेदन को 30 दिन से अधिक लंबित नहीं रखा जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत चेनारी, नौहट्टा, रोहतास और तिलौथू प्रखंड के 19 गांवों में स्वास्थ्य शिविर और जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं पहुंचाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कम ओपीडी वाले चिकित्सकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। बीजापुर नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए चेनारी प्रखंड के जवान दिलीप कुमार पासवान के परिजनों को राज्य सरकार ने 21 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान की है। जिला प्रशासन ने इसे शहीद परिवार के प्रति सम्मान और संवेदना का प्रतीक बताया। सासाराम में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव में रील प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुशायरा, विचार गोष्ठी और सूफी संगीत की प्रस्तुतियों के माध्यम से युवाओं को इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर जिले के सभी 281 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। सुरक्षित गर्भावस्था, स्वस्थ माँ, सशक्त भारत थीम के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच, फोलिक एसिड वितरण तथा हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान पर विशेष जोर दिया गया, जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रोहतास वन प्रमंडल, मनरेगा और जिला प्रशासन ने जिले में पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैली, क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस दौरान छात्रों और उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और प्लास्टिक उन्मूलन का संदेश दिया गया। सासाराम नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिली है। मेयर काजल कुमारी के अनुसार सड़क, नाली, पेयजल और अन्य जन सुविधा

0: से जुड़ी 1598 योजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसमें से सैकड़ों योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। पूर्व मध्य रेल के अधिकारियों ने सासाराम जंक्शन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत जिले के डेहरी में कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का प्रशिक्षण दिया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों का पर्व बकरीद जिले में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर लोगों ने अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल प्रशासन ने सासाराम में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान लोगों को तम्बाकू और अन्य नशीली पदार्थों से दूर रहने का संदेश दिया गया, साथ ही तम्बाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सासाराम के अंचला अधिकारी, उनके सहयोगी तथा सदर अस्पताल के कर्मी को अलग अलग मामलों में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बाद में गिरफ्तार अधिकारी और कर्मचारियों को पटना लेकर चली गई।
1: अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
2: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है।

प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ई मन पसंद। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले शामिल हो रहे हैं फुटानी चौक नरहान स्टेट समस्तीपुर से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, आराध्या और लल्लू पंडित। आप सबों की पसंद है लव इन टोक्यो फिल्म का ये गीत। तो आइए हम अपने तमाम श्रोताओं के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। और इस वक्त आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित अपनी पसंद के कुछ फिल्मी नगमे।

अब आइए सुना जाए प्यासा सावन फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज और कलेर बिहार से निकहत प्रवीण सदा फारजू और सादिया तस्नीम। इसी गाने को सुनवाने के लिए हमें मेल मिला है संतोष कुमार जी का। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब, गांधी चौक, बाड़मेर, राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डंगरी से बाबूराम जायसवाल और इनके दोस्त।

प्यासा सावन का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। अब आइए हम आपको सुनवाएं गीत गाता चल फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद, कापस हेडा वार्ड बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद, लखमिनिया जिला बेगूसराय से शमी मोहम्मद राइन, अखलाक अहमद और समस्त परिवार के सदस्य।

और अब आइए सुनते हैं अनुरोध फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड से आप हैं हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी।

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों।
1: बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी।

गम्हरिया जमशेदपुर टाटानगर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, बबुरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से आप हैं सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल भी इसी गाने को सुनना चाहते हैं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं इज्जत फिल्म का एक गीत। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, पसंद आप सबों की है। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय कारी, मीना कारी, पुंजराज, आरती आकर्षण और जयश्री।

श्रोता दोस्तों, आइए अब हम आपको सुनवाएं कुर्बान फिल्म का एक गीत। पसंद आप सबों की है। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। इस गीत को सुनना चाहते हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं साकिबा, आलिया, इब्राहिम, कमाल, मेराज, निसार, पंकज कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य।

कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय भी इसी गाने को सुनना चाहते हैं।

अब आइए प्रेम पर्वत फिल्म का एक गीत सुना जाए, पसंद आप सबों की है। गढ़नोखा से मोतीलाल, मोतीमाला जी, चंदन जी, कमलेश कुमार जी, मनोज कुमार गुप्ता और सुदामा साह।

इस गीत को सुनना चाहते हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा।

अब आइए सुनते हैं मेरे सनम फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी और रशीद वारसी।

रुचि कुमारी, मंदेश्वर सिंह, प्रभात पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, हनी, और वीरेंद्र पांडे, जयराम बिंद। श्रोता दोस्तों, कृपया डॉट, कॉमा, फुल स्टॉप और भी कुछ होता है जिससे लिखने से पढ़ने में आसानी होती है ना, तो आगे से ध्यान रखिएगा प्लीज। लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का गाइड फिल्म का ये गीत।

अब आइए सुनते हैं गाइड फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, श्रीमती सुषमा सिंह, जेके मिश्रा, श्वेता रानी पाठक,

इसी गीत को सुनना चाहते हैं कांति निकेतन राजनगर से, कांति गुप्ता, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता, शारदा गुप्ता, एस बाग पीली कॉलोनी लखनऊ से रानी गुप्ता, रश्मि गुप्ता, नीलम गुप्ता, मुकेश गुप्ता और कुसुम गुप्ता और रूपा इलाहाबादी।

0: अब तो सदियों के फासले हैं, यकीन होगा।
1: सुनिए हिंदी में समाचार, समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर

0: इसकी बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम

0: और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
4: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
6: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के

0: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुरेंद्र प्रसाद की गाई इस भोजपुरी लोकगीत से।

अभी आप सुन रहे थे सुरेंद्र प्रसाद के स्वर में भोजपुरी लोकगीत। लोकगीतों के इस कार्यक्रम लोकधारा में अब आइए हम आपको सुनवा रहे हैं बालेश्वर प्रसाद और उनके साथियों को।

अभी आप सुन रहे थे बालेश्वर प्रसाद और उनके साथियों को। अब आइए हम आपको कार्यक्रम के आखिर में सुनवाएं मनोरंजन ओझा के स्वर में ये भोजपुरी लोकगीत।

मनोरंजन ओझा के गए इस निर्गुण के साथ ही भोजपुरी लोकगीतों का ये कार्यक्रम लोकधारा यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हुए हैं। पेश खिदमत है गजल का प्रोग्राम महफिल। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं गुलाम अली की गाई इस गजल से।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो सेट को और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। और इस वक्त आप सुन रहे हैं गजल का प्रोग्राम महफिल। तो आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं अकबर हैदराबादी का लिखा एक कलाम हरिहरन की आवाज़ में।

हरिहरन की गाई इसी गजल के साथ महफिल कार्यक्रम अब यहीं मुकम्मल हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी का यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, कूदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: पेश प्रोग्राम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार असद भोपाली पर।
1: वो जब याद आए

0: वो जब याद आए बहुत याद आए।
1: असद भूपाली का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 जुलाई सन 1921 में हुआ। मुंशी अहमद खान के वो बड़े साहबजादे थे। जब उनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया असदुल्ला खान। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। शहर भोपाल एक अदबी शहर, वहाँ की हवा में शायरी की खुशबू होने से कई शायर इस शहर ने दिए हैं। उन्हीं में से एक जगमगाता नाम है असद भोपाली साहब का।

किया ताकि वो अपने शायरी का फन फिल्मी गानों की शक्ल में उभार सके। भोपाल से मुंबई आने वाले शायरों की फहरिस्त का अव्वल नाम है असद भोपाली साहब का।

कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता, इस बात की जीती जागती मिसाल है असद भोपाली साहब की कैफियत। 1949 के आसपास वो मुंबई आए थे। देश एक नई करवट ले रहा था, हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया भी इससे अछूती नहीं थी। कई कलाकार, फनकार, संगीतकार और गीतकार अपनी अपनी किस्मत आजमाने मुंबई की राह लिए हुए थे। अगर गीतकारों की ही बात करें तो मजरू सुल्तानपुरी, जान निसार अख्तर, खुमार बाराबंकी, प्रेम धवन, राजेंद्र किशन जैसे दिग्गज गीतकार इस दौरान काम पाने की होड़ में जुटे हुए थे। यही नहीं, साहिर लुधियानवी जैसे पाए के शायर को भी असद भोपाली साहब के साथ ही एक हॉस्टल में रहना पड़ा था। तो ऐसे में काम पाना एक बड़ी चुनौती भरा काम था।

असद भोपाली का मुंबई आना किस तरह हुआ, ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दुनिया। निर्देशक थे एस एफ हसनैन साहब। फिल्म के अभी दो गाने ही लिखे गए थे। लिखने वाले थे आरजू लखनवी साहब, जो तकसीम हिंदुस्तान के पेश नजर पाकिस्तान चले गए थे। अब फाजली ब्रदर्स के सामने मुसीबत मुंह बाय खड़ी थी कि बाकी गाने किससे लिखवाएं। इसी दौरान भोपाल के सुगम चंद कपाड़िया, जिनके भोपाल शहर में दो थिएटर थे, मुंबई आए हुए थे। उन्हें जब इस बात की खबर मिली तो फाजली साहब के सामने उन्होंने मदद की पेशकश करते हुए मशवरा दिया कि भोपाल शहर में शायरों की कमी नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं एक मुशायरा भोपाल में करता हूँ, नामी गिरामी शोहरा इसमें भाग लेंगे। आप और आपके निर्देशक साहब जिस किसी शायर से मुतासिर हों उससे बाकी गाने लिखवा लें। तजवीज फाजली ब्रदर्स को पसंद आई, भोपाल में मुशायरा हुआ। फिल्म के प्रोड्यूसर फाजली ब्रदर और एस एफ हसनैन साहब मुशायरे में आए। जो शायर उन्हें सबसे अच्छे लगे वो थे असद भोपाली। फिल्म दुनिया के बाकी गाने फिर उन्हीं से लिखवाए गए। इस तरह से उनकी फिल्मी गीतकारी के रूप में पेश कदमी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हम सब उस्ताद हैं, इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया हुआ ये।

फिल्म दुनिया में असद भोपाली के दो गाने थे, रफी साहब का गाया हुआ रोना है तो चुप चुप के रो, आंसू न बहा आवाज न हो। सुरैया का गाया हुआ गाना था अरमान लुटे दिल टूट गया, दुख दर्द का साथी छूट गया। अगले साल यानी 1950 में फिल्म आधी रात के दो गाने लिखने का उन्हें ऑफर मिला, इधर तो आओ सरकार, किसी की जीत किसी की हार, और दिल ही तो है तड़प गया, दर्द से भर न आए क्यों। ये दोनों गाने लता मंगेशकर ने गाए थे, संगीतकार थे पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। अब आपको सुना रहे हैं आगे बढ़ने से पहले ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना जिसे गाया है आशा भोसले ने।

सन 1950 में ही एक और फिल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे, वो फिल्म थी निर्दोष। अगर आपको याद हो तो मुकेश साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। संगीतकार थे श्याम सुंदर।

सन 50-51 के आसपास बी.आर. चोपड़ा साहब ने एक फिल्म अफसाना का निर्माण किया था। अशोक कुमार और वीणा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीतकार थे पंडित होसन लाल और पंडित भगत राम। कुल 9 गाने थे फिल्म में, इनमें से 6 गाने लिखे थे असद भोपाली साहब ने और काफी मकबूल भी हुए थे।

फिल्म अफसाना एक सफल फिल्म थी और इसका संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ था। असद भोपाली को इसके बदले मिली एक फिल्म राजपूत जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। उन दिनों साल में इक्का दुक्का फिल्में बनती थीं। काम पाने के लिए स्ट्रगल और कंपटीशन बहुत कड़ा हुआ करता था। इसी की एक मिसाल 1954 में असद भोपाली को फिल्म गुलबहार में एक गाना लिखने का मौका मिला जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया था। इस फिल्म के दो संगीतकार थे, एक खयाम साहब और दूसरे धनी राम। दूसरे गीतकारों में थे जानेसार अख्तर, कैफी आजमी और शिवन रिजवी साहब। असद भोपाली का लिखा हुआ गाना था मुबारक बेगम का गाया हुआ, कलियों को चूमूं मैं तारों से खेलूं। दोस्तों 1949 से 1990 तक असद भोपाली ने कुल 100 के आसपास फिल्मों में गाने लिखे, करीब करीब 400 के आसपास गाने हैं। असद भोपाली साहब का लिखा हुआ टावर हाउस फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है।

पंडित हुसन लाल, पंडित भगत राम, सी रामचंद्र, खय्याम, हंसराज बहल, लच्छी राम, धनी राम, दत्ता राम, पंडित शिवराम, श्याम सुंदर, एम दत्ता, नौशाद, ए आर परेशी, चित्रगुप्त, रवि, सी अर्जुन, सोनी कोमी, राजकमल, लाला सत्तार, हेमंत कुमार, मानस मुखर्जी, कल्याण जी आनंद जी, इतने सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा काम उन्होंने गणेश और उषा खन्ना के साथ किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी आनंद बख्शी साहब के साथ साथ असद भोपाली से गाने लिखवाए थे। फिल्म पारसमणि के जो दो गाने हैं, वो जब याद आए, बहुत याद आए, और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये काफी मकबूल हुए थे।

अपने जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब का एक अनोखा शाहकार था फिल्म लव एंड गॉड। इस फिल्म के लिए भी असद भोपाली साहब ने अपनी कलम का सही इस्तेमाल किया। नौशाद साहब का संगीत सब कुछ अमर सा लगता है।

सन 1989 में सूरज बड़जात्या ने बड़ी ही खूबसूरत प्रेम कहानी बनाई, मैंने प्यार किया। इस फिल्म का कबूतर जा ये गाना सुपर डुपर हिट रहा, पर अफसोस इस गाने को जो सर्वश्रेष्ठ गाने का पुरस्कार मिला उसे लेने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे असद भोपाली साहब भोपाल से मुंबई न आ सके।

खुतबे को इस शायर गीतकार असद भोपाली ने बग़ैर किसी अहलो अयाल के अपने शहर भोपाल से दुनियाए फ़ानी को अलविदा कहा।

0: आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार असद भोपाली पर, शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई का प्रसारण विविध भारती के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग। आज कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों से आंखों में सपने लिए एल्बम के इस गीत के साथ।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अब के बरस एल्बम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुनीता राव की आवाज़ में, और अब आइए हम आपको सुनवाएं सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अफसाना एल्बम का एक गीत। आसिफ बिजनौरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं गुलाम अली।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। और इस वक्त आप सुन रहे हैं गज़ल का प्रोग्राम, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग। आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं अलीशा की आवाज़ में ये गीत है।

इसी के साथ गैर फिल्मी हिंदी गानों का ये कार्यक्रम तरसरंग यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

चिलमन के उस पार से जब तेरा दीदार हुआ, वाह। चिलमन के उस पार से जब तेरा दीदार हुआ, दिल को जैसे मोहब्बत का पहला उपहार हुआ। हवा ने भी धीरे धीरे तेरा नाम सुनाया, और मेरा हर ख्वाब तेरे प्यार का हकदार हुआ। चिलमन की ओट से मुस्कुराना तेरा दिल को हर बार दीवाना बना जाता है। नजरें मिले तो वक्त ठहर सा जाता है, तेरा प्यार का हर धड़कन समा जाता है।

चिलमन सर की तो चांद भी शर्मा गया, तेरा चेहरा देखकर मौसम महका गया, हम तो पहले ही खो चुके थे तेरी चाहत में, एक मुस्कान ने हमें पूरी तरह अपना बना लिया।

मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे। महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत था। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो सेट को और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। और इस वक्त आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई, तेरी चाहत मेरी जान बन गई, कुछ इस तरह समा गए हो दिल में कि हर धड़कन तेरा नाम बन गई। मोहब्बत में झुकना कोई हार नहीं होती, सच्चे दिल वालों की कभी तकरार नहीं होती, जो बसा लेते हैं किसी को अपनी रूह में उससे बढ़कर कोई यार नहीं होती। दोस्तों, प्यार में क्या क्या नहीं होता है। लोग दिल से प्यार करते हैं और बहुत चाहत के साथ चाहते हैं, लेकिन फिर भी कह जाते हैं ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम।

श्रोता दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं प्यार और मोहब्बत का सफरनामा, जिसे आप भी प्यार से कहते हैं चित्रपट तराने। और दोस्तों, जब प्यार और मोहब्बत की बात हो और उस सफर में खत का जिक्र ना हो, तो शायद ये मोहब्बत नामा अधूरा रह जाता है, है ना? क्योंकि प्यार की शुरुआत भले ही नज़रों से होती है, लेकिन बात बगैर खत की बनती नहीं है यारों, है ना? खत में लिखे थे जो अल्फाज तेरे, आज भी दिल को सुकून दे जाते हैं। कागज तो पुराना हो गया, मगर तेरे एहसास आज भी महक जाते हैं। तेरा खत जब भी हाथों में आता है, दिल का हर जख्म मुस्कुराता है। लफ्जों में छुपा होता है तेरा प्यार, जो हर पल मुझे तेरे पास ले जाता है।

दोस्तों, प्यार और मोहब्बत में लोग क्या क्या नहीं कह जाते हैं, क्या क्या नहीं सोच लेते हैं और क्या क्या नहीं एहसास में लाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि चाहत हमारी तब तक रहेगी जब तक जिंदगी, और जिंदगी भर ही क्यों, जिंदगी भर भी और जिंदगी के बाद भी। यानी अगर इस जन्म में नहीं तो शायद इस उम्मीद पर दो प्रेमी एक दूसरे को चाहते रहते हैं, शायद अगले जन्म में फिर मिलें, है ना। इसीलिए तो किसी ने कह दिया कि जन्म जन्म का साथ हो तेरा मेरा, हर खुशी में नाम हो तेरा मेरा, रहे न कोई दूरी दिलों के दरमियां, बस बस प्यार का एहसास हो तेरा मेरा। मांगी है दुआ रब से यही हर बार, मिले तेरा साथ मुझे हर जन्म बार बार, तेरी मोहब्बत से ही रोशन है मेरी दुनिया, तू रहे हम सफर मेरा हर जन्म और हर संसार। यानी

जन्म जन्म तक तेरा हाथ थामे रहें, प्यार के हर वादे को निभाते रहें, बदल जाए मौसम बदल जाए जहां, मगर हम एक दूजे के साथ मुस्कुराते रहें।

भेगी पलके फिल्म के इस गाने के साथ ही हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट तराने यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। कल आपकी सेवा में हम एक बार फिर से हाजिर होंगे सुबह 5:53 पर। सुबह 7:30 पर नमस्ते रोहतास कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। समाचार प्रभात आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जिसे रिले हम करेंगे सुबह 8:00। सुबह 8:15 पर देशभक्ति संगीत आप सुन सकते हैं, आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से हम प्रस्तुत करेंगे। सुबह 8:20 पर आप अपने पत्रों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी आप सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले किए जाएंगे सुबह 8:45 पर, 9:10 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका, 9:30 पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। साप्ताहिक कार्यक्रम पुनर्नवा आप सुनेंगे कल पूर्वाह्न 10:05 पर। भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम पूर्वाह्न 10:30 पर और पूर्वाह्न 10:45 पर भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसधार आप सुनेंगे। पूर्वाह्न 11:00 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की सभा से हम रिले करेंगे विविध भारती।

के कार्यक्रम। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से शाम 5:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन की प्रस्तुति होगी कल शाम 5:30 पर। शाम 6:00 सुनिए भोजपुरी लोकगीत। शाम 6:05 पर भोजपुरी बुलेटिन समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले किए जाएंगे। ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर की प्रस्तुति होगी शाम 6:10 पर। भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत का प्रसारण समय होगा शाम 6:40 पर। कल शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। गुड इवनिंग रोहतास रोज की तरह कल भी शाम 7:15 पर प्रस्तुत किया जाएगा। हेलो मनपसंद आप सुनेंगे कल शाम 7:50 पर। शास्त्रीय गायन पर आधारित सुर सौरभ आप सुनेंगे कल रात्रि 9:00। हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसरंग की प्रस्तुति होगी रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर आप रोज की तरह कल भी सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। हिंदी समाचार 11:00 और रात्रि 11:05 पर कल भी अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित बारी बारी से हिंदी समाचार और अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताज़ा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human right abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders, it includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephonic conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Mashal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation.